0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: न होकर के सातों भुवनों को उनका भरण और पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर के सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांग करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय में विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त द्यावा पृथ्वी को अंतर्बाह्य सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन, जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले महाप्रलय में भी विक्रियका को प्राप्त न होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हम सब का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन।

गायत्री इत्यादि छंदों के जानकार, व्याकरण वक्ता, मंत्र दृष्टा, सप्तऋषियां या पूर्वजनों के मार्ग का अनुगमन करने के हम भी इस सृष्टि को उसी प्रकार प्रणाम करें जिस प्रकार पूर्व में विधाता ने किया था।

एकं तन्मे शिव संकल्पमस्तु। जगे हुए मनुष्य का मन इंद्रियों की अपेक्षा दूर जाती है,

दो देदीप्यमान विज्ञात्मा को ग्रहण करने वाला मन जागृत अवस्था की तरह स्वप्न अवस्था में भी दूरतर विषयों को ग्रहण करता है, जो तीनों कालों समीप और दूर के

0: संकल्प वाला हो। जेन कर्माणि पयोमि खानेन यज्ञ कृणवन्तु विदधेकु दिराः जत्पूर्वे जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुः। जिस मन के रहते हुए ही मनुष्य यज्ञ के जानकार और भीर मनुष्य वैदिक कर्म करते हैं, जो सृष्टि से पहले भी था, जिससे पूर्व कोई इंद्रियां नहीं थी, जो सभी यज्ञ कर्म कराने में समर्थ होकर के सभी प्रजाओं में रहता है, वह मेरा मन कर्मजन्य फल से निरक्त होकर शांत संकल्प वाला हो। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत्। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज मंडे 10 अगस्त 2026 के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। माँ सती ने सीता का रूप धारण करके रामचंद्र जी की परीक्षा लेना चाहा। इसको आगे बढ़ाते हुए बालकांड दोहा संख्या 53 में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हम लोग आज की पाठ को आगे बढ़ाए। सत

स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, रामचंद्र जी क्या कहते हैं,

पहले भगवान राम ने हाथ जोड़कर सती माँ को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु भगवान शिव कहाँ हैं? हे माँ, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? राम वचन मृदु गुर सुनी उपजा अति संकोचु, सती सभी तमहेश पही चली हृदय बरसोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। सती को पूर्ण विश्वास हो गई कि रामचंद्र जी कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि का अवतार है। परंतु बात

0: यहाँ नहीं थी। बात बस इतना ही नहीं था, बात यह भी है कि शंकर भगवान को अब क्या जवाब देना पड़ेगा। इसका वर्णन हम लोग कल आगे पाठ करेंगे। आज इसको यही विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यत। आर्यसभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत इस वैदिक मंत्र की व्याख्या मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। मित्रों, श्रोताओं, परमात्मा के बारे में ये बहुत भ्रांत धारणा है लोगों में कि क्या ईश्वर भी चलता है, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं है, निराकार है, अकाय है। तो इस मंत्र में इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। तद एजति, अर्थात वह परमात्मा सब जगत को, एजति का मतलब है एजरी कंपने, एजयति गति देता है, सारे संसार के जड़ और चेतन को अपनी अपनी चाल पर वह चला रहा है। परंतु कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वर में आरोप लगाते हैं कि क्या वह परमात्मा भी चलता है। परंतु वह सब में पूर्ण है, कभी चलायमान नहीं होता, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं है, हमारा जैसा शरीर है।

ना बिना करके कर्म, कर्म माने हाथ, बिना हाथों के ही कर्म करता है, बिना पैरों के ही चलता है। कितनी सुंदर बात कही है वेद के अंदर। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, उसके हाथ पर नहीं है लेकिन अत्यंत वेगवान है ग्रहीता, पूरे जगत को वो गति दे रहा है। इस वेद मंत्र में यही बात कही गई है कि संसार के एक एक कण के अंदर, जगत्याम जगत जो हम प्रार्थना करते हैं ना, उसके अंदर एजति, एजति का मतलब है गति दे रहा है, मोशन दे रहा है। तो पहली बात ये याद रखना है कि ईश्वर कभी चलायमान नहीं होते। और एक मंत्र में और बड़ी बात अच्छी कही है, तन्न एजति, वो परमात्मा कभी चलता नहीं है, एक रस है। इसलिए विद्वान लोग इस तरह से उस ब्रह्म को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। और एक बात और कही, तद्दूरे तद्वंतिके, देखिए कैसी बात कही गई है, वह दूर भी है और बिल्कुल निकट भी है। तो दूर किन लोगों से हैं? परमात्मा तो हमारे शरीर में ही है, जीवात्मा के अंदर भी सूक्ष्म रीति से विद्यमान है। अंतिसंतम न जहाति, अंतिसंतम न पश्यति, श्रोताओं ये अथर्ववेद का मंत्र है, वह हमारे अत्यंत समीप है। लेकिन यहाँ पर जब ये बात कही कि तद दूरे, दूर किन लोगों से हैं, जो अधर्मात्मा है, जो विचार शून्य है, जो ईश्वर की भक्ति से रहित है, जो अजितेंद्रिय हैं, तो ऐसे लोगों से वह दूर है, अर्थात करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। जन्म मरण आदि दुख सागर में हम इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए कहा कि वह दूर उन लोगों से है। और जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, ईश्वर भक्ति प्रतिदिन करते हैं, उनके वह निकट है। तद्वंतिके का मतलब अंतिक कहते हैं संस्कृत में, बिल्कुल निकट होना। तद माने वह परमात्मा, वह ईश्वर किनके समीप हैं? जो हमेशा अपने जीवन में सरलता का व्यवहार करते हैं,

सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, जितेंद्रिय हैं, सब लोगों का भला चाहते हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों के वो बिल्कुल निकट है, समीप है। धन्यवाद आपका।

समं मान एते अनूनं पात्रं निहितं न एतत्पत्तारं पक्वः पुनराविशाति। ओम शांति शांति शांति। समस्त आर्य बंधुओं को पंडिता ज्योति भोलारा कुबेर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, वैदिक धर्म में कर्म का सिद्धांत बड़ा अटल है। कर्म के 3 सिद्धांत हैं। मनुष्य कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म करके कोई उसके फल से बच नहीं सकता। उत्तम श्रेष्ठ कर्मों का फल उत्तम होता है और अशुभ बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, अतः हमें शुभ कर्म करने चाहिए। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें फल भी बुरा ही मिलेगा। इस विषय में एक सत्य घटना प्रस्तुत करते हूँ। 2 व्यापारी कहीं जा रहे थे। मार्ग में सूर्य अस्त हो गया। पास के गांव में जाकर उन्होंने एक पटेल से उसके घर रात्रि बिताने के लिए कहा। जगह मिल गई, परंतु उन व्यापारियों के रुपयों की थैली को देखकर पटेल की नीयत बदल गई। पटेल ने उनके सोने का उचित प्रबंध कर दिया और 2 गुंडों को बुलाया और कहा, मेरे द्वार पर 2 आदमी सो रहे हैं, उन्हें रात्रि में मार दो। पुरस्कार के लोभ में गुंडों ने स्वीकार कर लिया। पटेल के 2 पुत्र खेतों पर सोने गए थे, परंतु वहां पटेल के नौकर पहुंच गए, अतः वे दोनों घर लौट आए। रात्रि काफी जा चुकी थी, अतः उन्होंने बाहर सोना ही ठीक समझा। पलंग पर अपरिचित लोगों को पड़े देखकर उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। व्यापारी तो पशुशाला में चले गए और पटेल के दोनों पुत्र पलंग पर लेट गए। रात्रि में गुंडे आए और एक एक झटके से दोनों का सिर काट चलते बने। प्रातः काल जब व्यापारी चलने को तैयार हुए तो उन्हें बरामदे में रक्त दिखाई दिया। उनके पुकारने पर पटेल बाहर निकला, परंतु अब क्या हो सकता था, उसकी करनी उसके सामने आ चुकी। यह है कर्मों का फल। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। ऊंधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कभी कभी कर्म फल पर संदेह होने लग जाता है। कभी कभी पापियों को फूलते फलते देखकर संदेह होने लगता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: रात्रि छाया के समान अत्यंत कल्याणकारिणी होती है, रात्रि माता के समान सुखदायक होती है। परमात्मा ने रात्रि की रचना की ताकि प्राणी मात्र की थकावट दूर हो और वे शांत भाव से विश्राम कर सकें और अपने शरीर को ऊर्जावान फिर से बना सकें। रात्रि स्वभावतः अंधकार से युक्त रहती है क्योंकि इसमें प्रकाश का अभाव रहता है। रात्रि स्वास्थ्य रूपी धन की रक्षा के साथ शांति को धारण करती है, परंतु गहन अंधकार में चोर एवं कुकृत्य करने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति चोरी व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में प्रबल हो जाती है, जो हमारे अन्न धन एवं मूल्यवान वस्तुओं को चुराता है, सोए हुए लोगों को हानि पहुंचाता है। तो सजग व सावधान रहने वाले राजा व राजपुरुष उस स्थान में पहुंचकर अपराध करने वाले को रोकें और न्याय व्यवस्था से उसे दंडित करें।
1: ओम एतम् ते देवः सवितुर्यज्ञम् प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव।
0: देव स्वरूप अनंत गुणों से युक्त परमात्मा हमारे यज्ञों को दिव्यता से युक्त करता है। उस वेदोक्त यज्ञ से सबको सुख मिलता है। सब ऐश्वर्य का विधान करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर सूर्य के सदृश सबको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है तथा सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखता है। सृष्टि यज्ञ के अंतर्गत वेद वाणी का दाता परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में सर्वाधिक पुण्य आत्माओं के हृदय में वेद ज्ञान को प्रकाशित किया, तभी वेद उपदेश से सबकी रक्षा हुई और यज्ञ करने कराने की परंपरा चलती रही। हे ईश्वर, हमारे यज्ञ और यजमान की रक्षा कीजिए, इसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए।
1: ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भायजते हनः उषतीरिव मातरः।
0: संतान को निरंतर चाहने वाली प्रेममयी माता जिस प्रकार अपनी संतानों को अन्न दूध रस आदि जीवनदायी आहार देकर पालती हैं, उसी प्रकार अमृतमय जल माता के सदृश सबकी रक्षा में अग्रणी है। जल अत्यंत कल्याणकारी सारभूत रस हैं जो सबके जीवन की रक्षा करता है। अतः जल जीवन का प्रमुख स्रोत होने से देवतुल्य है। अत्यंत कल्याणकारी जल से सबकी रक्षा हो।

0: नमस्कार 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। मॉरिशस में आज से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 के तहत ये पाबंदियां 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। देश के उत्तर में लानिकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 83% भरा है। इरिगेशन अथॉरिटी का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। वहीं गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश कारोबार भी प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए CWA भूमिगत जल नदियों और दूसरी जलधाराओं का भी सहारा ले रही है। मॉरिशस में महंगाई की दर बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई जून के 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनक्वा में आज सुने करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं, जिनकी बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच जारी है। विदेश में पश्चिमी कनाडा में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बावजूद आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और अब चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम को भी देश में रह रहकर बरसात होगी। विशेषकर शाम को पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर वर्षा काफ़ी तेज़ हो सकती है। धुंध भी छाई रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर वर्षा जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर पूर्व और दक्षिण में समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:55 पर।
1: RL3 Radio.

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम उसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो, और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो।

और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने तबाह कर डाली जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे, तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे।

तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है, तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो।

और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस के वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है।

उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझको मोहलत दी जाती है। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा।

तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो, और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सदर छुपाने लगे, और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना और इसी में से कयामत को जिंदा करके निकाले जाओगे।

ऐ बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ऐ बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे मां बाप को बहका कर बहिश्त से

निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते।

0: और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा क़िबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेशुमार इरशादात में कुरान हकीम की फ़ज़ीलत व अज़मत बयान की है। इरशाद है, मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत है। एक और इरशाद है, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज़्यादा तिलावत करने वाला है। बहवाला बुखारी मुस्लिम शरीफ।

माल का अस्सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजरों को हिदायत फरमाई, ऐ कारोबार करने वालों, माल के बेचने में लगवियात करने और झूठी कसम खा जाने का बहुत इम्कान रहता है, तो तुम लोग अपने मालों में से सदका ज़रूर अदा किया।

हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो शख्स कर्ज के अंबार में पड़ जाए फिर उसके अदा करने में पूरी कोशिश करे और फिर अदा करने से पहले मर जाए तो मैं उसका मददगार हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के गम और घुटन से बचाए तो उसको चाहिए कि तंगदस्त कर्ज़दार को मोहलत दे या कर्ज का बोझ उसके सर से उतार दे। बहवाला मुस्लिम।

मोहतरम सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला शक अल्लाह ताला खरीदो फरोख्त में और कर्ज़ की अदायगी में रियायत व मुरव्वत करने वाले को दोस्त रखते हैं। बाहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। हज़रत अबू सईद क़द्री रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा और अमानतदार सौदागर अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। बहवाला जामे अल तिर्मिज़ी शरीफ।

मोहतरम सामीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापने और तोलने वालों से इरशाद फरमाया, तुम्हारे हाथ में दो ऐसे काम हैं जिनके सबब से तुमसे पहली कौमें हलाक हुईं, यानी पूरा वज़न ना तोलने और कम नापने के सबब हलाक हुईं, तुम ऐसा ना करना। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताजर को अल्लाह ताला की जानिब से रिस्क दिया जाता है कहत के ज़माने में, गल्ले को गरानी के ख्याल से रोकने और बंद रखने वाला मलऊन है। बहवाला इब्ने माजा शरीफ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला, गिराहें रुकावटें खोल दे, मुश्किलात मुसीबतें परेशानियों को हम पर आसान कर दे, तकदीर की बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी सखावत के समंदर का एक क़तरा हमें माला माल कर सकता है और तेरी बख्शिश की मौजों का एक ज़र्रा हमारे लिए काफ़ी है, सो तू हमें मुआफ़ कर दे, हमारी ज़रूरियात पूरी कर दे, दुख मिटा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

94.6 98.2 MHz మీద RM3

हर हर महादेव। 10:50 हो चुके हैं भक्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम RM3 पर रेडियो मनोरंजन में शो भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों सावन आ गया है, बारिश आई है और महादेव के महीनों में आज कुछ खास बताने वाली हूँ। भक्तों क्या आप जानते हैं सावन में विष्णु जी सो जाते हैं? हाँ सच में, जब वो सो जाते हैं तो ये सारी पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है, यही कहानी आज सुनाऊंगी। पूरी दुनिया का एक प्यारा सा अनोखा सच। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं जय गणेशा और हर हर महादेव।

0: भक्तों, हर साल आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन विष्णु जी क्षीर सागर में यानी कि योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। भक्तों, ये नींद आम नींद जैसी नहीं होती है जैसे हम सोते हैं। इसे कहते हैं योग निद्रा, यानी शरीर विश्राम में है लेकिन आत्मा पूरी सृष्टि को देख रही है। पूरे चार महीने सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक विष्णु जी विश्राम करते हैं। भक्तों, इसीलिए इन चार महीनों में शादी विवाह नहीं होते, क्योंकि जब पालनहार विश्राम में हो तो नए काम शुरू कैसे किए जाए। और जब विष्णु जी सो जाते हैं, ये जिम्मेदारी मिलती है किसको? यस, महादेव को। महादेव उठाते हैं इस जिम्मेदारी को। इसलिए कहते हैं शिव जी का महीना है सावन का महीना, और शिव जी का ध्यान करते रहो, हरि का ध्यान करते रहो, और मुख पे एक ही बात निकलनी चाहिए, हरि और हर हर महादेव।
1: RM3 रेडियो।
0: टाइम चेक, 11 बज रहे हैं।

0: भक्तों 11:04 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ भक्ति में शक्ति के साथ और हम बात कर रहे हैं हरि और हर हर महादेव की यानी कि हमारे शिव शंकर जी की। पूरे साल विष्णु जी इस सृष्टि को संभालते हैं, हर जीव का ख्याल रखते हैं, हर रिश्ता हर प्रेम हर पालन करते हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो विश्राम में जाते हैं तो कोई छुट्टी नहीं होती इस दुनिया की, दुनिया चलती रहती है, बारिश फिर भी होती है, फसल फिर भी उगती है, जीवन मरण का चक्र फिर भी चलता है, जीवों को श्वास फिर भी मिलते रहते हैं। ये सब कौन करता है, ये कौन संभालता है? जी हाँ, जब योग निद्रा में चले जाते हैं विष्णु जी तो ये संभाली जाती है सेवा महादेव। सावन का बारिश शिव जी की कृपा से होती है, हरियाली शिव जी के आशीर्वाद से होती है, इसलिए सावन में महादेव की भक्ति सबसे ज़्यादा फलती है। वो खुद ड्यूटी पर है, कहते हैं भक्तों जब बॉस छुट्टी पर हो और इंचार्ज जो आपकी बात डायरेक्टली सुने तो कहाँ जाना चाहिए, इंचार्ज के पास जाना चाहिए। तो इस समय जो इंचार्ज हैं, जो पूरी सृष्टि का सेवा पालन देख रहे हैं, वो हैं महादेव। महादेव के साथ जुड़े रहो, उनको बस क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 बूंदे जल की, वो भी जो श्री हरि के चरणों से निकलती है, वो ही जल विष्णु जी के पास है और वो ही जल हमारे महादेव के पास है और महादेव का जल हमारे पास आता है। इसलिए पानी का ध्यान रखना और पानी के साथ जुड़े रहना और पानी से ही शरीर की हर संरचना बनती है। ये प्रोग्राम आपका है, इंजॉय कीजिए भजनों को और साथ में भजते रहिए हर हर महादेव।
1: RM3 Radio.
2: आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज शिव पंचाक्षर स्तोत्रम के रचयिता हैं। नमः शिवाय महामंत्र के प्रत्येक अक्षर अनुसार क्रमशः श्लोक की रचना की गई है और प्रत्येक श्लोक के अंत में इस महामंत्र नमः शिवाय को प्रतिस्थापित किया गया है। भौतिक जगत के जितने घातक तत्व हैं

0: सर्व शिवजी के आभूषण हैं। शिवजी कष्टहर कल्याणकारी हैं, वही सत्य हैं और इसीलिए सत्य शिवम भी हैं और सुंदरम भी हैं। शिव और उमा भवानी का तापस परिणय, शिव धूर जटी की प्रखर तपश्चर्या स्व के लिए नहीं सर्व के लिए है। तो इस संसार की माया से विरक्त होकर स्व के अहम को विलीन कर नमः शिवाय के जपन से आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रयत्न करना और जीव का शिव से ऐक्य रूप होना, वही अद्वैत और इस दिव्य स्थित का पवित्रकारी माध्यम वसुंधरा का महामंत्र नमः शिवाय, जो इस पंचाक्षर स्तोत्रम में प्रस्थापित किया गया है।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों 11:15 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों महादेव अकेले नहीं हैं। जब विष्णु जी विश्राम में जाते हैं तो शिव जी के साथ पूरा शिव परिवार काम पे लग जाता है। जैसे कि गणपति बप्पा हर उस इंसान की मदद करते हैं जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और रुकावट ना आए, बप्पा वो हटा देते हैं रुकावट को। कार्तिकेय जी जो कि देव सेनापति हैं, वो देखते हैं कि इस दुनिया में बुराई हावी तो नहीं हो रही। और माँ दुर्गा जो सावन के बाद नवरात्र में आती है, वो इसलिए आती हैं क्योंकि इन महीनों में उनकी भी ड्यूटी है। भक्तों सावन में पूरा देव परिवार आपके पास है। गणपति से मांगो बुद्धि देते हैं, कार्तिकेय जी से मांगो साहस देते हैं, माँ दुर्गा से मांगो शक्ति देते हैं, घर परिवार में प्यार सम्मान आदर देते हैं और महादेव से मांगो तो क्या देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बस उनको कहना होता है हर हर महादेव, महादेव हमारी इच्छाओं को पूरा करें, पर हमारी वो इच्छा जो हमारे शरीर के लिए हमारी ज़िंदगी के लिए ना अच्छी हो उसे कभी पूरा ना करें। हम सबको एक सांत्वना, हमें एक प्यार, एक बुद्धि देते रहें।
1: RM3 Radio.

भक्तों, चार महीने बाद यानी कि कार्तिक महीने की एकादशी को विष्णु जी जागेंगे। इसे कहते हैं देव उठनी एकादशी। और उस समय पूरे देश में शंख बजते हैं, पूरे विश्व में शंख बजते हैं, पूरे ब्रह्मांड में शंख बजते हैं, दीप प्रज्वलित होते हैं, मंदिरों में जय जयकार गूंजती है, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। और उसी दिन से शादी विवाह, नए काम सब शुरू होते हैं। भक्तों, ये कितना सुंदर चक्र है ना। विष्णु जी सोते हैं, शिव जी संभालते हैं, शिव जी के परिवार का साथ मिलता है, फिर विष्णु जी जागते हैं और नई शुरुआत होती है। यही तो सृष्टि का चक्र है। विश्राम भी जरूरी है और वापसी भी जरूरी है। भक्तों, जब आप थके होते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं, फिर उठते हैं, नई ताकत के साथ उठते हैं, उसी तरीके से विष्णु जी भी उठेंगे। अभी भोले बाबा के हाथ में सारे विश्व की, कहते हैं ना कि सारी ताकत है, सारा कुछ उनको संभालना है, उनके परिवार को संभालना है। एक एक करके माता रानी यानी कि दुर्गा माँ के हाथ में आएगी, फिर गणपति जी के हाथ में आएगा और फिर से विष्णु जी उठ जाएंगे। ऐसे करते करते ये विश्व, ये चक्र चलता रहेगा। और ऐसे हमारे इंसानों की जिंदगी, हर जंतु तंतु की जिंदगी, हर कण कण की जिंदगी इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं को संभालनी है। तो हम तो आपको इतना ही कहेंगे, हमेशा उस परमात्मा के साथ, उस विश्व के साथ, उस सृष्टि के पालनहार के साथ, महादेव के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है। इसीलिए मैं तो लेती हूँ इस समय आपके से इजाज़त, पर इसके बाद आप सुन पाएंगे चाइनीज़ प्रोग्राम। और परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, भोले बाबा, विष्णु जी, सभी गणपति, दुर्गा माँ, काली माँ, सबका साथ आप सबको मिलता रहे। हर हर महादेव। RM3 Radio.

लाखों का सहारा ले रही है। इधर मॉरिशस में महंगाई बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई दर जून में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को इसके प्रमुख कारणों में से एक बताया जा रहा है। चीन में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान के बाद 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान रविवार शाम पूर्वी चीन के प्रांत से टकराया, जहां हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। शंघाई में भारी बारिश और बाढ़ के बीच करीब 1000 उड़ानें रद्द कर दी गई और कई पर्यटक स्थल बंद है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सुहाना सफर। सफर के सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का मैं वेदिता स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं और बस हमारे लाइव के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि टिकटॉक पे होने वाला है बस थोड़ी ही देर में। तो मैं आ गई हूँ साथ देने के लिए, साथ रहूंगी मैं 2 बजे तक। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागत करते हैं यहाँ हमारे कार्यक्रम में। बस मंडे हैं और मंडे में मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं थोड़े लेजी फील करते हैं, थोड़े थके थके से लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी थकान को दूर करेंगे हमारे इन गीतों के साथ।
1: You're listening RM Free Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। ये है आपका प्रोग्राम सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र में बस यहाँ हम और आप साथ में मिले हैं, और साथ में मिलकर यहाँ पर गाने गुनगुनाएंगे आपके साथ। पुराने गाने हैं जो ख़ास लेकर आए हैं आपके लिए। हमारे साथ विमला जुड़ चुकी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारा टिकटॉक लाइव हो चुका है। एजे का हम स्वागत करते हैं, नमस्ते, आपका स्वागत करती हैं आपकी प्यारी सी दोस्त, जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ सबके साथ प्यारी, है ना। स्वीटी युवना हमारे साथ, नमस्ते, स्वागत आप सबों का। चलिए जी, यहाँ पर गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे आप सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम, और साथ में ये गाना जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए। और नेक्स्ट जो हमारा गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में, अभिमान फिल्म से है, एंड यही गाना हम डेडिकेट करते हैं हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए जो दुनिया के कोने कोने से निकलकर हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे गीतों को एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ माधुरी आ गई हैं, और साथ में यहाँ पर हमारी और भी दोस्त हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए पुराने गीतों के इस सफ़र में डीवा गल आ गई हैं। गुड मॉर्निंग टू यू, हमारा तो आफ्टरनून हो गया है, 12:19, आज है मंडे 10 अगस्त। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत गाना गुनगुनाते हैं। जिनको उम्मीद नहीं मिला है बहुत जल्द मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। विशाल हरिदास जी, नमस्ते, कैसे हैं आप?

मीत नहीं मिला है तो मिल जाएगा, वैसे ही जैसे हमारे सारे लिसनर्स हमें मिल गए हैं। सलीमा का वेलकम करते हैं, रीता देवी, मिस्टर नुरेदीन, रोशन, पूजा, मनोज पिरतिया, वेदना है कैटरबोन से, अंजू, योगिता, स्वीटी गोकुल, आयशा, नम्रता, शुभ सोमवार आपको, नीलिमा, और साथ में हमारे यहाँ पर हैं कौन भाई, यहाँ पर रोहित यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं, और साथ में वेलकम करते हैं हमारे इन तमाम दोस्तों का, गंगाराम जी आपका वेलकम है। चलिए इसी के साथ अगला गाना जो होगा लेकर आए हैं फ्रॉम द मूवी कालिया आपके लिए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत रेयर चलाती हूँ, लेकिन आज मंडे है ना तो मस्ती तो बनती ही है। चलिए, नीलिमा कहती है गाना कजिन विद्या के लिए, आज वो 32 इयर्स के हो गए हैं, तो उनको हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर
0: जी हाँ, सुहाना सफर बनता है हमारे इन खूबसूरत गीतों के साथ और आपके खूबसूरत साथ के साथ। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना उत्तम, तनवीर, खालिद, नीमा, हेमा, विमी, मालिनी, रामरेखा और साहिल के लिए। साथ में ये गाना जाएगा दोस्त रोशनी के लिए, देविना, चिरंजीत, अमिताभ, बरखा, शमा, नीला जो भी काम कर रहे हैं, और विमला से गुलाम हमारे साथ हैं। सैकवा से गाना जाएगा आपके लिए और गाना होगा फॉर केवा। हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे आपने अपना नाम तो नहीं लिखा, बस केवा लिखा है, सो थैंक यू। मंजुलिका कैसी हो? वैसे ये वो प्यारी मंजुलिका है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती है ना। और चलिए यहाँ पर गंगा तालाब में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके लिए ये गाना होगा। और चलो जी, यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना महेश जी आपके लिए डेडिकेट करेंगे। आपकी वाइफ हैं कीर्ति, बेटी हैं केशा, बेटे कियान के लिए, और कविश ये हैं सेवास्तोपोल से। चलो तो यहाँ पर आ गए हैं साहिल हमारे साथ, अब मस्ती करते हैं। माया रामदोस जी, हर हर महादेव आपको। और यहाँ पर हमारे साथ हैं उमेश जयपोल, और साथ में यहाँ हमारे शवि जुड़ गई हैं, क्या बात है। तो शवि का भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। और रंभा जी, रंभा हो हो हो, रंभा के दिन मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मम्मी कमलाबाई और सिस्टर जया भाई भी है। तो चलिए उनका भी हम, अच्छा तो ये गाना उनके नाम डेडिकेट करते हैं ना। हंसवी, शवि और साथ में यहाँ पर किरण पुरी आ गए हैं फ्रॉम वैंकूवर कैनेडा। जी हाँ, उनके सोने का टाइम होता है, लेकिन कहते हैं कि मैं अभी जब तक आपका प्रोग्राम कम से कम थोड़ा तो सुनता ही हूँ, लेकिन पूरे नहीं सुन पाते हैं बेचारे, आधे घंटे पहले भाग जाते हैं, लेकिन उनको सोना भी तो होता है, लेकिन इतना कीमती समय निकालते हैं हमारे लिए। पता है इंसान की नींद कितनी कीमत होती है, कितनी कीमती होती है, फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू फॉर दैट एंड वी आर ग्रेटफुल। केशनी कुमार का स्वागत करते हैं, एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा आपके लिए, बर्थडे है किसका आपने डाला नहीं, और अच्छा वेनेसडे को तो ठीक है। यहाँ पर करिश्मा जहागी हमारे साथ हैं, नेक्स्ट लवली सिस्टर सिमला आसी साहा के नाम जाएगा। मालिनी जी, आपकी मम्मी का बर्थडे है, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और आयशा के लिए भी, बड़ी खुश लग रही हैं आज, क्या बात है। चलिए रुकैया आ गई हमारे साथ जो गजवी से सुन रही हैं हमें, और साथ में यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं इसको हम हमारे उन दोस्तों के लिए जो अभी गाड़ी चला रहे हैं, साथ में श्रीन राम जो उनके नाम।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, हमारे भी सपनों का रंग कुछ ऐसा ही है जैसे आपके सपनों का रंग है। बस एक ऐसी दुनिया जहाँ बस प्यार ही प्यार हो और एक दूसरे का साथ हो। हम अगला गाना बरखा के नाम डेडिकेट करते हैं, जिनका कल बर्थडे है, जगदीप सिंह, और साथ में यहाँ पर निज़ाम बहादुर, केविन केविना, और साथ में उनके हबी के लिए है शिमला प्रमरमस्तान, रजिंदर सांडो, रेणुका जग्गू, रिया बुदन, गीता शारदा, पूजा वेद, रमरीचिया। साथ में यहाँ पर गाना हम डेडिकेट करेंगे सुल्ताना कांदाई के लिए, और यही गाना जाएगा हमारे प्यारी सी उसना बानो मनारी के नाम, और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए वेमी, जो रहती हैं फ्रॉम इटली, कहती हैं कि ओके यहाँ पर प्लीज़ प्ले नाइस सॉन्ग फॉर माय आंट विमी हु लिव्स इन इटली, इट्स हर बर्थडे। तो विम ने विमी के लिए गाना मांगा है। ओके, यहाँ पर विद्यानंद गोपाल है, नमस्कार जगदीश जी, कैसे हैं आप? चलिए उनके लिए हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं, और साथ में गाना होगा सुल्ताना कहती है मेरी बहन का जन्मदिन है। ओहो, और जन्मदिन और गाना

0: उनके लिए चलो ठीक है। नोवेल फ्रांस में बहुत जोरों की बारिश हो रही है और बहुत सर्दी है, तो इसलिए सबको नीलिमा कहती हैं कीप सेफ एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन
1: RM3 रेडियो।

0: चोरी चोरी नहीं, हम तो सरेआम आते हैं और बस दिल खोल के प्यार बांटते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से भी हमें बहुत सारा प्यार मिले। चलिए आपके होश उड़ाने के लिए कुछ और खूबसूरत गाने आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर,
0: देखते हैं कौन हमारे

हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट गाना जो होगा हम सुनैना मनिक के नाम डेडिकेट करेंगे, साथ में अरविंद के नाम। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बबीता बुला की रेखा, हस्बैंड मनीष के लिए गाना होगा। ललिता के लिए हमारे साथ हैं जानव, जानसु, धानवी, कृति, केशनी, साविया और साथ में है उर्वी और एहिशान। उनके लिए साथ में है इंदु, सुबी, सुबी

चलिए, हमारे साथ हमारे बेफिक्र बॉयज हैं जो एकदम हमारी फिक्र करते हुए आ गए हैं। और गंगाराम जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और चलो जी, किरण पुरी अभी भी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे भाई, हम तो 2 बजे तक ही रहेंगे साहिल, ठीक है। माधुरी कहती है हमारे लिए भी कोई गाना चलाओ, तो चला तो रहे हैं। सरोज जी, आपका भी स्वागत करते हैं, मंडे वाली फीलिंग लेकर आए हैं साहिल, घबराओ मत। श्यामा महराली, आपका भी हम वेलकम करते हैं, नमस्ते जी, स्वागत है। कल्याणी हरी जी का जो साथ दे रहे हैं, और साथ में वो दोस्त जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं हमारे रेडियो मनोरंजन RN3 पर।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर नेक्स्ट किसके लिए गाना डेडिकेट करेंगे। गाना होगा वशीन, कैलाश, रिशान, रजीदा, उर्वशी, नेहा, संगीता सुखारी, नसरीन और फिरोज वजिया के लिए। चलिए यही गाना हम चला रहे हैं आपके लिए। कौन है हमारे साथ भाई? इतने सारे लोगों ने मैसेज किया है, मिथुनदा का गाना सिर्फ मेरे लिए बजाना, ये है माधुरी, इतनी बड़ी फैन है उनकी। चलो जी, तो यहाँ पर रॉटरडम आपके लिए गाना होगा देवी, थैंक यू, स्वीट नमस्कारम करू, हेलो अंजू, थैंक यू सो मच, दानी, पूर्णिमा और डीमू के नाम गाना होगा अभी। हाँ बिल्कुल, छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की और खैर बच्चे तो घूम ही रहे हैं जहाँ उनका मन है, लेकिन बाद में मम्मी पापा को भी थोड़ा सा वीकेंड में टाइम निकालना पड़ता है ना अपने बच्चों को घुमाने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि जितने भी बच्चे इस समय हमें सुन रहे हैं उन सबको भी घलो, वो मम्मी पापा को परेशान न करें। चलिए बच्चों को थोड़ा सा डांस कराते हैं, गाना चाहे पुराना क्यों ना हो, आप शुरू हो जाएंगे तो वो तो फॉलो ज़रूर करेंगे। चलिए जी, हर हर महादेव का खुशिया से मिसेस किरण सिंह हमें याद करी हैं। वैसे तो हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस हो, यूके हो, साउथ अफ्रीका हो, फिजी हो, थैंक यू सो मच।

चलिए गाना हमें लेके जा रहा है 1 बजे के समाचारों की, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे कुछ पुराने गीतों के साथ आपके सेकंड आवर में ऑफ सुहाना सफर। चलते चलते गाना तो होगा ज़रूर, लेकिन ये गाना हम किरण पुरी जी के साथ जी जी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी और काला राम कारीगर के नाम चलाएंगे जो वैंकूवर में हमें सुन रहे हैं। हेलो जी, कैसे हैं जी?

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सोमवार से पीने के पानी के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू हो गए हैं। गाड़ियों की धुलाई, पौधों में पानी देना, स्विमिंग पूल भरना अब गैर जरूरी कामों के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। सूखे की मार सिर्फ जलाशयों पर ही नहीं पड़ी है, भूमिगत जल भंडार और नदियां भी दबाव में हैं। पानी बचाने के लिए व्यापक योजना पर काम शुरू हो गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भूमिगत जल के ये भंडार भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। सूखे के इस मौसम के दौरान पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए कौवाश सेंटरों को भी अब पानी के इस्तेमाल से जुड़े नए प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इन उपायों का उद्देश्य गैर जरूरी कामों में पेयजल की खपत को कम करना और उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण करना है। इसी के तहत कौवाश सेंटरों को पानी के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका दोबारा इस्तेमाल करना इनमें प्रमुख उपायों में शामिल है। पानी की बचत करने वाली टेक्निकों को अपनाने और उपलब्ध पानी का अधिक कुशलता से इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सूखे के इस दौर में अधिकारियों का संदेश साफ है, पेयजल का इस्तेमाल केवल आवश्यक जरूरतों के लिए किया जाए और जहां संभव हो गैर जरूरी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए। समकालीन कलाकार नालिनी त्रिभुवन ने अपने स्टूडियो के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए हैं। 13 से 15 अगस्त तक कला प्रेमियों को उनकी कलाकृतियों के साथ साथ उन जगहों को भी करीब से देखने का अवसर मिलेगा जो उनकी रचनात्मकता और प्रेरणा का स्रोत है। नालिनी त्रिभुवन ने वर्ष 1988 में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने कला के प्रति अपने जुनून को लगातार लोगों तक पहुँचाया है। कला के प्रति समर्पित शिक्षिका के रूप में उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने में भी समर्पित किया है। उन्होंने

0: कई युवा कलाकारों का मार्गदर्शन किया और उनकी कलात्मक सफर में उनका साथ भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की पूर्वी हिस्सों में टाइफून डॉल्फिन की दस्तक देने के बाद अधिकारियों ने वित्तीय राजधानी शंघाई समेत 10 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। टाइफून के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज सोमवार को अकेले शंघाई में करीब 1000 उड़ानें रद्द की गई। हालांकि अधिकारियों ने डॉल्फिन तूफान की स्थिति को घटाकर ट्रॉपिकल तूफान कर दिया है, लेकिन बुधवार तक मूसलाधार बारिश, गंभीर बाढ़ और भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी है। तूफान अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले चीनी अधिकारियों ने डॉल्फिन टाइफून के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इसे इस वर्ष चीन में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार शाम 5:30 बजे स्थानीय समय पर डॉल्फिन ने जेंगजियांग प्रांत के युहुआ इलाके में दस्तक दी। उस समय तूफान की अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। करीब एक घंटे बाद इसने वेंगजू शहर में दूसरी बार लैंडफॉल किया और आज सोमवार को हेनान, हुबेई, अनहुई, जियांगसू, सेंगजियांग और शंघाई में भी भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: North, South, East. You're listening RM Free Radio.

0: और आपकी खुशी के लिए हम गीतों की लाइन लगा देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा लेकर आए हैं आपके लिए हमारे सेकंड आवर में। दिन के 1:08 हुए हैं, आप सुन रहे हैं वेदिता के साथ कार्यक्रम।
1: सुहाना सफर।
0: तो चलिए सुहाना सफर को सुहाना बनाते हैं हमारे गीतों के साथ। यहाँ पर कौन है हमारे साथ जानते हैं। यहाँ पर कहते हैं बोनजियोर्नो फ्रॉम मिलान। हेलो जी, नेक्स्ट गाना जाएगा जेशिका यशिका के नाम, यशिका जगासिया। आज उनका बर्थडे है एंड शी इज ऑन हॉलीडे, सो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे यशिका। ये है निवेदी की तरफ से। एंड ऑल्सो वी हैव नेक्स्ट गाना सुनन के नाम, सरिता चंदन नमस्ते, स्वागत है आपका। राधा सामी आपका भी हम वेलकम करते हैं। बाल कृष्ण कैसे हो जी, कैसे हैं आप। थैंक यू मोहिनी लता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप। और यहाँ पर बारिश हो रही है वाकवा में जोरों की, और यहाँ पर बरसात हो रही है गीतों की जोरों की। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ हैं नेक्स्ट गाना फर्स्ट सिस्टर माला, देविका और कविता। और वहीं पे हमारे मयू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी जादू की झप्पियाँ। हम आपसे बात करेंगे बहुत जल्द। चलो, अंजू पोतिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए भी नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं। विमल बर्टन, नाही दजरीन, और साथ में गाना जाएगा रेखा ताका के लिए, और गाना जाएगा फॉर अहमद मुस्तफ़ा रामजोन। थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सविता रुकैया आपके लिए भी, करुणा थैंक यू आपका साथ है। सुरेखा जी नमस्कार, आनंद के लिए आपने गाना मांगा है। रेखा गोपोल आपको भी नमस्ते। मिस्टर लव कैसे हो, लक्ष्मी कैसे हो, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत सारा प्यार आप सबके नाम। मनीषा का भी वेलकम है, गाना जाएगा उनके प्यार समीर रामदास के लिए। और वसंती मत्तन के नाम भी, संध्या विदुला अंजी अमुगम वनक्कम आपको। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट गाना सुनते हैं, और ये गाना जाएगा फॉर संजू राजेंद्र कोतन के नाम, और साकुन के लिए भी।
2: RL3 Radio
0: चलिए विमला देवी और मायरा के लिए भी यही गाना डेडिकेट करते हैं, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, और शिमला बिजादर के नाम।

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं. गाना हम फैजल जो फ्रांस से हमें सुन रहे हैं उनके नाम डेडिकेट करते हैं. हाय फैजल. जया मुनी, सुरेखा, दुर्गा और अकरम काफ़ी दिनों के बाद बिजी थे लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए. मेहरबानी आपको कहेंगे. और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना आपके नाम.

खाना सफर खाना सफर खामोश साफसाना पानी में लिखा होता न तुमने कहा होता न मैंने सुना होता, लेकिन यहाँ पर मैं तो बहुत कहती हूँ भाई, मैं कहती हूँ तभी तो मेरी आवाज़ पहुँचती है। चलो यहाँ पर रिशान ने श्रावण मास पे बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत। यहाँ पर सन हमारे साथ हैं एंड यहाँ पर किरण जी ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं भेजी हैं, थैंक यू सो मच। बबीता थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर सरिता जो है गुडलैंड से, उनके लिए गाना होगा एंड ऑल्सो ये गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए, आप है ना ही जरीन। ललिता कहती उनकी सिस्टर सीला जो है वो बीमार है, तो गेट वेल सून, आपकी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए इसी के साथ जिम्मी वैदेही विमला देवी सूर्या विमा उनके बेटे अभिलेश के लिए गाना मांग रहे हैं, और साहिल की तरफ से परी माधुरी आयशा सिया और उनके बॉस अनिल के लिए गाना होगा। ओके एंड ज्योति चमन वी हैव हैंसले जिनको हमारा लाइव अच्छा लगता है, थैंक यू हैंसले। रूपा कविता चांदनी माया सभी हमारे साथ जुड़े हैं, और इकराम हुसैन हमारे साथ हैं फ्रॉम टोरंटो। ट्रस्ट मी, हम हमेशा आपको, आपके बेटे को हम हमेशा अपने प्रेयर्स में याद करते हैं और हम सभी मिलकर उनके लिए प्रे करते हैं। ठीक है इकराम, आप निराश मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला गाना होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर शर्मिली जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको हर हर महादेव कहेंगे। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का जो अगला गाना होगा ये गाना डेफिनेटली आप लोग पसंद करेंगे, और ये गाना हम ललिता के नाम, लोलिता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और आप जहां से भी साथ दे रहे हैं हमारे, अगर चाहे तो हमारे टिकटॉक के साथ जुड़ सकते हैं। ये गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस समय दुनिया के किसी न किसी कोने में बैठे हैं, और नाहिद जरीन सऊदी अरबिया से, उनके लिए गाना।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: लो भाई, ये भाई साहब को चिल्ला के ही आना था। आपको पता है कि किशोरदा के गाने कुछ ऐसे होते हैं, चिल्लाना हो ना हो तो हो ही नहीं सकता। रोमांटिक होते तो बड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट गाना रोशन के लिए, एंड वी हैव डीनो फ्रॉम ट्रिनिडाड साथ दे रहे हैं। हाय डीनो। कर्सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाय। पूनम है, मीला रामा सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ अनुराधा नमस्ते, सुमन आपका भी स्वागत करते हैं, और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं आप सबों के नाम।

0: चलिए अगला गाना तैयब और प्रेमिला साथ में अरुणा के नाम डेडिकेट करते हैं। और इस समय आप लोग सुन रहे हैं विनीता के साथ सुहाना सफ़र। सुहाना सफ़र में चलिए जी कल्याणी सिंह हमारे साथ हैं और यहाँ पर अगला गाना होगा पद्मिनी गोविंद के लिए। पौधा साहब से हैं और यह है शक्ति की तरफ से, उनको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ।
1: RM3 Radio.

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: चलिए तो यहाँ पर हमारा जो अगला गाना है वो लेकर आए हैं आपके लिए, और नेक्स्ट गाना हमारा तोहफा फिल्म से लिया गया है। मैं जानती हूँ कि प्यार का ये तोहफा आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये गाना जो है हम चलिए डेडिकेट करती हैं आप सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम, और ये गाना होगा किसके लिए, रेखा कहती है उनके भाई पोपो का जन्मदिन है, और साथ में ये गाना जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए सुरेखा जी आपके हस्बैंड आनंद कतवारू के लिए, और नईम के

कैसे हो नईम, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग गो स्पेशली फॉर यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. और यहाँ पर मनीता कहती है हर हर महादेव. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. थोड़ी बिजी थी लेकिन नेक्स्ट गाना उनकी मम्मी सुमंती से सैजुगे विलेज से हैं और साथ में उनकी बहन आरती, सचिता, बबीता, रेखा, साथ में यादव, केशा, राहुल के नाम.

0: अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। चलिए जी नमस्कार, संजय गौड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। इस समय आप विविता का साथ दे रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए रेडियो मनोरंजन पर, सुहाना सफर।
1: RM3 रेडियो।

अश्विन रामसन और साथ में हैं सेबास्टियन दिलावा एंड प्रेमीला बाई रामजी, शाहिन बुधवा और हसना लक्ष्मण कहते हैं कि पुराने दिन याद दिला दिए आपने, थैंक यू। ये हैं प्रकाश और साथ में हमारे रोहित कहते हैं काम करने जाने का टाइम हो गया है, चलो हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। अभी के लिए एंजॉय करें ये खूबसूरत सा गाना, फिल्म का नाम है पूनम।

रियाज नथू, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और विद्या पाडू भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सपना दन्नू कहती हैं कि आज याशी और अश्वी दन्नू उनकी शादी की उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनके लिए गाना होगा पप्पी उनके पापा और मम्मी की तरफ से, और यही गाना होगा रोशन मोहन और साथ में सभी दोस्तों की तरफ से।

चले जी, ये है खूबसूरत सा गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी पूनम रफी साहब की आवाज में. और इसी मस्ती के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा गाना होगा हमारी सभी ब्यूटीफुल लेडीज के लिए बेबो की तरफ से, और साथ में ये गाना जाएगा आपके लिए. ये है

0: चलिए हम भी जरा बच के ही रहते हैं क्योंकि हमारे भी तो जाने का टाइम हो गया है.
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: और ये गाना सलोनी रामफुल जो फ्रांस से हमें सुन रही हैं, द्रोना सी दयाल, रूही, कृष, मनोज, सूरज, सरोज के लिए और साथ में यश के लिए जो साथ दे रहे हैं. सो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है. सुहाना सफ़र कल भी होगा और यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम अविनाश के नाम डेडिकेट करेंगे जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं. अब आपसे मुलाकात मैं मुलाकात करूँगी वेनसडे को. कल तो प्रोग्राम होगा लेकिन मैं आऊँगी वेनसडे को. तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अगर बारिश हो रही है बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. अब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं परसों. बहुत सारा प्यार आपके लिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी इस छोटी सी फैमिली को और भी खूबसूरत बनाने के लिए. बाय बाय.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था
1: आश्रिता।
0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले वर्ष स्कूल सर्टिफिकेट यानी एसी परीक्षाओं में मॉरिशस के विद्यार्थियों ने 9 विषयों में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि का जश्न आज सुबह मुका MGI में आयोजित एक समारोह के दौरान मनाया गया। समारोह का आयोजन मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से किया गया। इस मौके पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जो इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के युवा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण इस सप्ताह राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 76 प्रतिभागियों ने एक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया जिसकी अध्यक्षता नेशनल असेंबली की अध्यक्ष ने की। इस संस्करण के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के नेता के साथ साथ कई सांसद भी मौजूद थे। यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने का आत्मविश्वास विकसित करना और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारस्तान गणराज्य में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है जबकि 39 लोग अन्य घायल भी हुए हैं। रूसी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन में मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर हुए सबसे घातक एकल हमलों में से एक बताया है। हमले को लेकर यूक्रेन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। ये हमला निज़्नेकात्मस्क शहर में हुआ जो यूक्रेन की सीमा से 1100 किलोमीटर से अधिक दूर है। और स्थानीय सूत्रों के अनुसार ड्रोन हमला रात भर कई घंटों तक जारी रहा और सुबह तक चलता रहा। उधर चीन के पूर्वी हिस्सों में टाइफून डॉल्फिन के दस्तक देने के बाद अधिकारियों ने वित्तीय राजधानी शंघाई समेत 10,00,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। टाइफून के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज सोमवार को अकेले शंघाई में करीब 1,000 उड़ानें रद्द की गई। हालांकि अधिकारियों ने डॉल्फिन तूफान की स्थिति को घटाकर ट्रॉपिकल तूफान कर दिया है लेकिन बुधवार तक मूसलाधार बारिश, गंभीर बाढ़ और भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रही, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। ग्रांड रोजाली डेपिने में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के जनाब मदरन हसन जामिया, जनाब मदरन

0: हसन जामिया, जिन्हें हसन क्वाफिया के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी उनका जनाजा, ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। गौन गुजारी दिपिने में, गौन गुजारी दिपिने में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के जनाब मादरन हसन जामिया, जनाब मादरन हसन जामिया इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 4 बजे इनके मकान गौन गुजारी दिपिने से उठाकर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM रूथ रॉयल यूनियन पार्क में। रूथ रॉयल यूनियन पार्क में 44 साल की 44 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रकाश बौतानी जिन्हें जुल अविनाश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके भाई रोशन बौतानी के घर यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: संस्कृति की बातें,
2: नमस्कार। संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, संस्कृति की बातें कार्यक्रम का प्रसारण होता है MBC और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान देंगे ध्यान पर, यानी मेडिटेशन। हमारी संस्कृति में बहुत समय पहले से, आदि समय से, ध्यान यानी मेडिटेशन पर बहुत जोर दिया गया है। जीवन का यह एक अभिन्न अंग माना गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि समय के साथ धीरे धीरे हम इस संस्कृति, इस प्रक्रिया से छूटते जा रहे हैं। और जितना हम इससे छूटते जा रहे हैं, हमको ख्याल आ रहा है कि जीवन का जो आधार है वही हमसे दूर होता जा रहा है। और यही कारण है कि हमको दिख रहा है एक अवेयरनेस, एक जागरूकता सा जो लहर है वो उठता जा रहा है। और हम अब एक ऐसे समय पर आ चुके हैं जहां ध्यान, जहां योग, जहां मेडिटेशन पर हम एक बार फिर इसके ओर बढ़ रहे हैं। और आजकल बच्चों में मेडिटेशन को निहित करने के लिए, इस संस्कृति को उनमें जागृत करने के लिए, उनमें ये जो अनुशासन है मेडिटेशन करने का, उनमें इसको, इस कल्चर को उनके साथ जोड़ने के लिए एक काफ़ी बड़ी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यह खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अब मेडिटेशन से जोड़ा जा रहा है। और इस परियोजना के बारे में अभी हमें काफ़ी कम जानकारी है, और आज के इस कार्यक्रम में हम यही देखेंगे कि किस तरह से मेडिटेशन को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर बच्चों को सिखाया जा रहा है कि मेडिटेशन उनके लिए कितना ज़रूरी है। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए एक बहुत विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं, और आप हैं सिस्टर रेखा जमन। नमस्कार बहन जी।
3: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया।
2: और आप मेडिटेशन इन स्कूल्स प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। आप लगभग 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में रही हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मतलब कि मूल्य आधारित शिक्षा। और यह वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को निहित किया जाता है। अब ऐसी एक शिक्षिका इस परियोजना के साथ जुड़ी हुई हैं जहां पर बच्चों को मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। सबसे पहले रेखा बहन, आप हमें ये बताइए कि ये जो नई परियोजना है स्कूलों में मेडिटेशन, यह कौन सी परियोजना है, मतलब हमें ज़्यादा जानकारी दीजिए इसके बारे में।
3: बहुत शुक्रिया हमको यहाँ स्टूडियो में निमंत्रण देने के लिए और इस प्रोजेक्ट पर और ज़्यादा जानकारी मतलब
2: देने के लिए
3: ताकि लोग इससे परिचित हो।
2: ज़रूर।
3: तो ये सारा जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, वो तब शुरू हुई जब 2024 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया।
2: जी।
3: तो हमको संकल्प आया कि जब यूनाइटेड नेशन अभी मेडिटेशन को इतना आगे ले जाना चाहते हैं, दैट वी हैव ए इंटरनेशनल डे फॉर इट, तो हमने सोचा कि अभी राइट टाइम है, अभी सही समय है कि हम स्कूलों में भी बच्चों को छोटेपन से ही मेडिटेशन सिखाएं, क्योंकि पूरे विश्व भर में सब

0: अब सबको पता है कि ये कितनी ज़रूरी बात हो गई है, ये कितनी ज़रूरी चीज़ है मेडिटेट करना, ध्यान करना, क्योंकि सब शांति ढूंढ रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: सब शांति की खोज में हैं। और कौन सी शांति? अंदर की शांति, इन अ पीस। और मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रैक्टिस है, सिंपल इजी, जो कोई भी कर सकता है, चाहे किस कोई भी उम्र का हो, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध लोग हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ये जो प्रक्रिया है, ये जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, सिंपल होता है। तो इसलिए कुछ हमारे जो एजुकेशन प्रोफेशन में कुछ एक दो जो भी हमारे दोस्त थे, कॉन्टैक्ट थे, हमने उनसे थोड़ा ये बात चलाई कि कैसे हम इसको स्कूल तक पहुंचा सकते हैं। तो स्कूल में पहुंचने के लिए आपको मिनिस्ट्री से ही अप्रूवल लेकर जाना पड़ता है।
1: ज़रूर।
0: तो हम कुछ एजुकेशनल प्रोफेशनल्स मिल के इस प्रोजेक्ट को बनाया और फिर मिनिस्ट्री को लिखा कि हम चाहते हैं कि मेडिटेशन स्कूल तक आए एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि स्कूल में कितने पीरियड होते हैं एक्टिविटी के लिए, तो क्यों नहीं मेडिटेशन भी एक एक्टिविटी बन जाए, ताकि बच्चे जो इतना स्ट्रेस, उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ाई है, कितना स्ट्रेसफुल होता जा रहा है, और साथ साथ बस बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए, और उनके साथ साथ उनके जो टीचर्स हैं उनका भी जीवन कितना स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि लेट्स ब्रिंग पीस एट स्कूल, लेट्स ब्रिंग पीस इन द क्लासरूम, चाहे वो एक दो मिनट के लिए ही क्यों ना हो।
1: जी हाँ।
0: तो हमने प्रोजेक्ट लिखा और अप्रूवल मिली मिनिस्ट्री से कि हम इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लेवल पर स्कूल में ला सकते हैं। सो वी हैव अप्रूवल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं।
1: जी हाँ।
0: तो अभी हमको अप्रूवल मिला है, 1.5 साल हो गए हैं। तो हमने कई ऐसे अनेक स्कूलों में, ओवर 50 स्कूल गए हैं स्कूल के निमंत्रण पर। वो हमको बुलाते हैं, हमारे जो रिसोर्स पर्सन, हमारा जो टीम है, जाते हैं, और चाहे कितना भी समय हमको देते हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी पीरियड, जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में जाते हैं, जितना भी समय मिलता है 5-10 मिनट, उनको ये मेडिटेशन करवाते हैं। बस करवाते नहीं, सिखाते भी हैं, ताकि हम उधर से निकल जाए तो भी दे हैव द टूल, उनको पता है कि उनको थोड़ी सी मन की शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी विधि है।
1: और रेखा बहन, आप ये मानेंगी कि ये जो ध्यान की वाली प्रक्रिया है, मेडिटेशन की जो बात है, वह हमारी संस्कृति में बहुत पहले से है। मतलब शुरू से ध्यान हमारी संस्कृति का एक अंश है, लेकिन बीच में एक कड़ी आ गई, जहाँ एक ऐसा समय आया जहाँ पर ये कड़ी टूट गई। टेक्नोलॉजी के ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए, जीवन भी एक भागदौड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ पर जीवन का जो आधार ही है ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन है, सांस को नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया है, फिर अपने ध्यान को फोकस करने की प्रक्रिया है, या फिर मन को शांत करने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से फिर से जुड़ने की एक ज़रूरत थी और बात यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची है। तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि किस तरह से मेडिटेशन हमेशा से हमारी संस्कृति का एक आधार रहा है, और आज बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इसके साथ एक बार फिर जोड़ें।
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि इसका हमारी संस्कृति के साथ कैसा जुड़ाव है। और जैसे आपने सही बताया कि हमारी जो संस्कृति है, जब मॉरिशस को मतलब ग्लोबल रूप में देखें, तो कितनी सारी संस्कृतियाँ मिलजुल कर के साथ में रहते हैं, और ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आई है।
1: जी हाँ।
0: हम एक शांत प्रिय देश हैं, शांत प्रिय समाज हैं, हम सबको शांति बहुत पसंद है, और इसके महत्व को भी जानते हैं, और इसलिए हम कितना मेहनत भी करते हैं ताकि हम शांति में रहें, एकता में रहें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, और इसके लिए शांति की बहुत आवश्यकता है, शांति की बहुत ज़रूरत है। इसलिए जितने भी हम अनेक धर्म मिलकर के साथ में रहते हैं, हर एक धर्म के अंदर आप देखेंगे तो उन धर्मों के अंदर मेडिटेशन व साइलेंट सिटिंग व ध्यान ऑलरेडी हैं। सब अपने जितने भी स्थान पर, पूजा के स्थान पर जाते हैं, तो भल मंत्र का जाप करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं अपने रीति से,
1: जरूर,
0: लेकिन

0: साइलेंस में भी बैठते हैं, इसलिए जब भी आप उनके उन पूजा के स्थानों पर जाएंगे तो शांति का अनुभव आपको अवश्य होगा, चाहे किसी भी प्रेयर प्लेस पर जाएंगे। तो माना हर एक धर्म के अंदर ऑलरेडी वो शांति का जो मूल है वो ऑलरेडी है, लेकिन जैसे आपने अच्छी रीति बताया कि आज की दुनिया जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया है, और भल वो संस्कृति वो संस्कार हैं शांति का, लेकिन उनसे थोड़ा अलग हो गए हैं। तो अलग होते होते कितना दूर चले गए, जब हम अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, फोकस गुम हो गया है, कंसंट्रेशन में रहना मुश्किल हो गया है, तब हमको ये रियलाइजेशन हो रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हमारा मन इतना डिस्ट्रैक्टेड है, क्यों अपने संकल्प जो है, जो निगेटिव संकल्प है, क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, इसको ओवर थिंकिंग कहें, निगेटिव थिंकिंग कहें, क्यों वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस तनाव क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, क्यों उसको हम अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, मन कितना इम्बैलेंस असंतुलित हो रहा है, और उस पर हमारे इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, उस पर हमारा जो काबू है, नियंत्रण है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। क्रोध कभी भी आ जाता है, मोहवश या कोई भी नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो जैसे एक धक से ऊपर आ जाते हैं, उसको वश में करना, उसको मैनेज करना कैसे होता है, हमको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये सब जो हमारी जो अंदर की कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही हैं, हमें विचार हमें मतलब पुश कर रहे हैं इस पर विचार करने का कि क्या मिसिंग है, अपने अंदर क्या कमी है। सामाजिक रूप से मतलब सब कुछ है, आज जितना हमारा देश हमारे समाज आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के स्तर पर या कुछ एजुकेशन के, सब बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की जो शांति है, जो संतुष्टि है,
1: वो पीछे रह गई।
0: स्वास्थ्य जो है वो, और हमारा मन का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, हमारे जीवन के अंदर जो डिसिप्लिन है, उस पर तो बहुत पीछे जा रहे हैं
1: जी।
0: तो ये हमको फोर्स कर रहे हैं विचार करने का कि व्हाट इज़ द मिसिंग गैप, अभी क्या करना है ताकि हम अपने जीवन को संतुलित, जीवन में संतुलन ला सकें। तो इस विचार से हमने सोचा कि इट हैज़ टू स्टार्ट विद एजुकेशन। एजुकेशन हमारा एक ऐसा पावरफुल शस्त्र है जिससे हम अपने अंदर की संस्कारों को और समाज में जितने भी वैल्यूज़ की का अभाव है, उस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं। तो इस संकल्प से, इस लक्ष्य से हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया ताकि ये स्कूल तक पहुंच सके।
1: जी हाँ, जैसा कि अभी रेखा बहन ने हमें बताया कि हमारी संस्कृति में मेडिटेशन कहें, ध्यान कहें, इसका बहुत बड़ा स्थान था, लेकिन समय के साथ यह पीछे छूटता जा रहा है, और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें एक बार फिर अपनी संस्कृति की ओर बढ़ने की, वापस शांति को महसूस करने का। और इसके लिए पाठशालाओं, स्कूलों से बेहतर जगह और कहीं नहीं। आजकल हम छोटे छोटे बच्चों से शांति के बजाय स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की शब्दें सुन रहे हैं, जबकि एंजाइटी, डिप्रेशन एक ज़माने में, हमारे समय में जब ये सुनने को मिलता था तो हमको समझ में नहीं आता था कि क्या है एंजाइटी, डिप्रेशन का क्या मतलब है, लेकिन आज बच्चे बच्चे को इस शब्द का अर्थ पता है। लेकिन शांति असल में क्या है, ध्यान मेडिटेशन से क्या अनुभूति होती है, ये उनको नहीं पता। और इसी ओर बच्चों को अग्रसर करने के लिए, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई परियोजना स्कूलों में प्रस्तावित की जा रही है, वह है मेडिटेशन स्कूल्स। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रेखा बहन, जो कि आध्यात्म के साथ बहुत वर्षों के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हैं। आप ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, साथ में 25 से ज़्यादा वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। तो इस विषय पर हम अभी चर्चा आगे करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कूलों में मेडिटेशन का, और ये एक परियोजना है जिस पर एक प्रोफेशनल टीम काम कर रही है, और इस टीम का एक जो प्रोफेशनल है वो हमारे साथ आज उपस्थित हैं स्टूडियो में, और आप हैं रेखा बहन। रेखा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। और अभी हम बता रहे थे कि किस तरह से एक मैनुअल तैयार किया गया है स्कूलों में मेडिटेशन सिखाने का। यह वो मैनुअल है, और इसके आधार पर बच्चों को जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल के हैं उनको मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। तो रेखा जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये कब से शुरू हुआ है, मतलब कब तक चलेगा, कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसा चल रहा है, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं।
2: तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जनवरी 2025, जब हमने प्रोजेक्ट लिखकर मिनिस्ट्री को भेजा था।
1: जी हाँ।
2: फिर कुछ महीने लगे, और फिर मई मास में 2025 में हमको अप्रूवल मिला। फिर हम स्कूल में जाने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हेड्स ऑफ स्कूल हैं उनके साथ मीटिंग चली।
1: जी हाँ।
2: जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट हैं उनके डायरेक्टर्स, फिर जो चार जोन है एजुकेशनल जोन उनके डायरेक्टर से हम
1: प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों,
2: मतलब जो जोन है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की देख रेख करते हैं।
1: जी हाँ।
2: तो जितने भी हेड ऑफ जोन हैं और जितने भी हेड ऑफ स्कूल हैं प्राइमरी सेकेंडरी, सबसे हमारी मीटिंग चली, और हमने ये प्रोजेक्ट मतलब उनको उनके सामने रखा कि ये क्या प्रोजेक्ट है और इसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और बच्चों को और टीचर्स को और स्कूल इन जनरल इससे क्या लाभ उनको प्राप्त होगा। और आज की हमारी स्टेटस है कि हम एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी ये जो योजना है इट्स एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो बच्चों को अपना मेन सब्जेक्ट होता है, फिर एक ऐसा पीरियड होता है जो कोई भी एक्टिविटी हो कनेक्टेड टू देयर डेवलपमेंट उनको हम जाकर कर सकते हैं। तो सभी स्कूल जितने भी रेक्टर्स हैं, हेडमास्टर्स, उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है, और जिसका भी इंटरेस्ट है, माना रुचि है, वो हमको बुलाते हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन जाते हैं, और चाहे टीचर्स के साथ, चाहे स्कूल स्टाफ के साथ, चाहे बच्चों के साथ, हम क्लास में जाते हैं और उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। और ऐसे नहीं कि उनका थोड़ा अनुभव, शांति का अनुभव करा के फिर निकल जाते हैं, इनको बताते हैं वो मैसेज क्या है, ताकि वे घर पर या स्कूल में जब भी मन अशांत है या थोड़ा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, वो कैसे थोड़ा ब्रीविंग एक्टिविटी के साथ, फोकस एक्टिविटी के साथ, थोड़ा साइलेंस सीटिंग के साथ फिर से अपने को, अपने जो पढ़ाई है उसमें अच्छी तरह से लग सकते हैं, और टीचर्स के लिए भी वही सिखाते हैं। तो इस प्रकार से मई 2025 से अभी तक हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम कई चारों जोन में चल रहा है। कई स्कूल ओवर 25 स्कूल तक पहुंच गए हैं जहां अवेयरनेस किया है, स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, सब एज ग्रुप और हेड्स के साथ किया हुआ है। अगले साल मिनिस्ट्री के साथ हम इसका पायलटिंग करेंगे 2 terms, ताकि उस पर कुछ रिसर्च हो सके कि इस मेडिटेशन को स्कूल में लाने से बच्चों का उनके कैपेसिटी टू लर्न, उनका कंसंट्रेशन जो है, उनके बिहेवियर पर इसका क्या असर हो रहा है,
1: ऑब्जर्वेशन,
2: हाँ, जैसे एक असेसमेंट करेंगे, और उसमें जो मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है MIE है वो हमको साथ देंगे उसको प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए, ताकि हम इसको अलग स्तर पर पहुँचा सकें और जास्ती स्कूल में भी इसको पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट ईयर 8 स्कूलों जो SSS हमारे यहाँ, उनमें हम जाकर के इसको पायलटिंग करेंगे, वहाँ के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनको ये सारा मटेरियल दी जाएगी, बुक्स, बच्चों के लिए हम जर्नल भी बना रहे हैं, रिकॉर्डेड मेडिटेशन भी वो रिकॉर्ड हो गया है,
1: मतलब वो अपना जर्नलिंग करेंगे,
2: हाँ, अपना जर्नलिंग भी करेंगे। और अगर अध्यापक को इतना रुचि है, मतलब इतना अभ्यास नहीं है मेडिटेशन करने का,

0: बच्चों को कराने का, तो उसके लिए हमने प्री रिकॉर्डेड मेडिटेशन कमेंट्री भी बना दिए हैं, जो बस उसको चलाना है क्लास में और थोड़ा बच्चों को गाइड करना है, फिर अपने आप वो अपने मेडिटेशन में जा सकते हैं। और छोटे छोटे मेडिटेशन बनाए हैं, 3 मिनट्स 4 मिनट्स, क्योंकि बच्चों के लिए उतना फोकस नहीं है। और अलग अलग टेक्निक्स बनाए हैं, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो कंसंट्रेशन में काम करता है, मन संतुलित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बच्चों का जो मन है ना, बस बच्चों का नहीं, हर एक का यही कंप्लेन होता है, मन बहुत अस्थिर है, चंचल है, उसको इस काम में लगाना चाहते हैं वो 10 काम करता है, उसको उस काम से निकालना चाहते हैं वो निकलता ही नहीं। तो जैसे मन का जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमसे निकलता जा रहा है। तो मेडिटेशन, ध्यान के अनेक अनेक ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं जिससे मन को फिर से वश में कर सकते हैं, कंसंट्रेशन हमारा और बढ़ता है अभ्यास के आधार से। और मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो एक बार करने से वो कैपेसिटी नहीं बनती, वो संतुलन नहीं आता, वो कंसंट्रेशन एक प्रैक्टिस से नहीं आता है, उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार चाहिए। इसलिए जब हम अवेयरनेस करने जाते हैं तो ये बुक्स, जितने भी टूल्स हैं, हम उस स्कूल को, उस विद्यार्थी को या उस अध्यापक के साथ छोड़ देते हैं, ताकि वो जब भी समय मिले अपने एक्टिविटी पीरियड में, या कोई भी आप सिखाते हैं, जो भी आप मैटर सिखाते हैं, उस क्लास के पहले 2 मिनट पहले या क्लास के बीच में बहुत बच्चे अस्थिर होने लगते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हो गया है, तो जब भी उनको चाहिए, ज़रूरत चाहिए, वो छोटे छोटे प्रैक्टिस के आधार से अपने बच्चों के मन को फिर से एकाग्र कर सकते हैं, अपने पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। या स्ट्रेस बढ़ रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, या कोई टेस्ट चल रहा है, तो हाई स्ट्रेस होने से मन काम नहीं करता है, ब्लैकआउट हो जाता है। तो इस प्रकार से टेस्ट के पहले या एग्ज़ाम के पहले या जो भी कोई कठिन सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट में जितने भी सहज टेक्निक हैं इस पुस्तक में या कोई भी हमने सिखाया वो दिया, बुकलेट दिया है, उसके आधार से कभी भी उसको अपनी क्लास में उसको ला सकते हैं, बच्चों के साथ अध्यापक भी उसका अभ्यास कर सकते हैं, और मन संतुलित हो जाता है, मन शांत हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाती है, फोकस आ जाता है, फिर आप अपने कार्य में फिर से लग सकते हैं।
1: मतलब आप लोगों का जो उद्देश्य है वो बच्चों को अपने मन को स्थिर करना है,
0: कंसंट्रेशन।
1: जरा हमको अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हुए ये बताइए कि कौन सा मेडिटेशन आप बच्चों को सिखाते हैं? आजकल मेडिटेशन के बारे में इंटरनेट पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, तो बहुत सारे मेडिटेशन नजर आते हैं, तो हमें जरा मेडिटेशन का जो टेक्निक आपने बताया, कौन सा मेडिटेशन है, इसका उद्देश्य क्या है, और मतलब किस तरह से इसको किसी भी वक्त अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरा इसके बारे में बताएं।
0: सबसे मुख्य हमारा ऑब्जेक्टिव है इस योजना का, इस प्रोजेक्ट का, वो है कंसंट्रेशन। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे संपर्क में हैं, पेरेंट्स भी, माता पिता भी हैं, बहुत उनकी ये उलहना है कि बच्चों के मन को फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि हमको पता है हर एक बच्चे के पास उसका मोबाइल है, वो यूट्यूब पर जाता है, कैसे कैसे प्रोग्राम, गेम्स आदि चलते हैं जो मन को बहुत असंतुलित, स्थिर, एक्टिव, ओवर एक्टिव कर देता है। फिर उस ओवर एक्टिव माइंड को फिर से शांत करना, ताकि पढ़ाई में वो लग सके या अपने प्रोजेक्ट में या अपने रिविजन में लग सके, उसको मुश्किल हो जाता है। हम जो बड़े हैं, हमको इतना मुश्किल हो जाता है, कोई बात मन में बहुत चलने लगती है, उसको शांत करने में कितना मेहनत लगता है। तो इसके लिए छोटे छोटे मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग होता है, और बहुत सहज हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सहज है इसको सीखने के लिए। अपने आप मन शांत हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने ब्रेथ पर, अपने श्वास पर फोकस करने लगते हैं, तो हमारा मन जो है, जो बाहर भागता रहता है, उसको रीडायरेक्ट कर दिया, उसको अंदर केंद्रित कर दिया। जितना मन को बाहर में ले जाएंगे, उसकी चंचलता बढ़ती जाती है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और जितना मन को बाहर से रीडायरेक्ट करके अंदर ले जाते हैं, तो वो ट्रिक है कैसे फिर से मन अपने आप शांत हो जाते हैं। क्योंकि अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अंदर क्या है, अंदर इनर पीस है, अंदर हम शांत स्वरूप हैं। तो अंदर की शांति, जैसे ब्रीदिंग के द्वारा मन उस अंदर की शांति से कनेक्ट हो जाता है, अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सो देयर इज़ ब्रीदिंग टेक्निक फॉर कंसंट्रेशन। फिर दूसरी बात है इमोशनल बैलेंस, क्योंकि जब मन बहुत चलता है तो इमोशन पर भी हम काबू नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रकार के निगेटिव संकल्प आने लगते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, और फिर बच्चों को पता ही नहीं कि ये सब कैसे इमोशंस है, कहाँ से निकल रहे हैं, और अगर मुझे क्रोध आ गया तो उसके साथ मुझे क्या करना है। उस ये जैसे एक शक्ति है लेकिन एक नकारात्मक शक्ति है। क्रोध आ गया, सबके पास क्रोध आता है, कोई बात चल जाती है, कुछ सुन लेते हैं, कुछ व्यवहार के इफेक्ट में हम आ जाते हैं, फिर हमको क्रोध आ जाता है या कोई भी दूसरी इमोशन आ जाते हैं, फिर उनका क्या करना है। What do I do with those negative emotion? What do I do with the negative thoughts? ये तो कभी उनको सिखाया नहीं गया है। तो
1: लोग समझते हैं,
0: यही हम सिखाते हैं।
1: लोग समझते हैं क्रोध स्वाभाविक सी बात है,
0: स्वाभाविक
1: बात है, आना आता है और सभी को आता है और आता रहेगा।
0: हाँ,
1: लेकिन इसको वश में कर सकते हैं नहीं पता।
0: हाँ, ये इसको करना क्या है। अगर मेरे हाथ में कुछ हार्मफुल चीज है, मुझे क्या करना है, उससे मुझे अपने को नुकसान पहुंचाना है या उसको छोड़ना है। ये हम सिखाते हैं बच्चों को कि हमारे अंदर भी संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, इमोशंस फीलिंग आते हैं। कौन से फीलिंग्स विचार शुद्ध हैं, प्योर हैं, और कौन से अशुद्ध हैं, और जो पॉजिटिव हैं उनका इफेक्ट क्या होता है हमारे स्टडी के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे रिलेशन में, पेरेंट्स के प्रति, स्कूल में, साथियों के प्रति। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और अगर हम उस नेगेटिव को चेंज करके पॉजिटिव बनाए उसका इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि अपने आप बच्चे इस पर विचार नहीं करने
1: नहीं
0: वाले
1: कर,
0: ये तो अंदर की बात है, हमको सिखाना पड़ता है,
1: बड़ों को भी नहीं पता।
0: हाँ, क्योंकि हम हमारे एजुकेशन में ये सब हुआ नहीं था, लेकिन अब इन सब बातों की जरूरत पड़ने लगी है।
1: क्या ये जरूरत सिर्फ मॉरिशस में पड़ रही है या देश विदेश में?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है मेडिटेशन इन स्कूल, ये यहाँ नया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि इनऑफिशियली हम भी टीचर कितने साल रहे, इनऑफिशियली हम सब टीचर्स के पास ये ज़रूर ये टूल की तरह रखते हैं कि बच्चों को हमें शांत करना है फिर कुछ सिखाना है, नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम।
1: हम पहले जब छोटे थे तो हिंदी की जो कक्षा थी या कोई भी पूर्वी भाषा की कक्षा शुरू होने से पहले हमको गुरुजी या बहन जी प्रार्थना करवाते थे और फिर कक्षा के बाद भी प्रार्थना करवाते थे। शायद ये एक टेक्निक था मन को शांत करने,
0: ये मन को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो जैसे हमने कहा, बस जब हमारी हिंदी की क्लास नहीं, कोई भी क्लास हो, टीचर पहले सबको शांत कराएगा। टेक्निक अलग अलग, कभी वो अपना आवाज़ ऊंचा करेगा, कभी स्टिक ले लेगा, या कभी यू नो टैपिंग द टेबल, कुछ भी युक्ति से पहले क्लास को शांत कराना है, मन को शांत कराना है, क्योंकि शांत मन ही कैन अब्सॉर्ब इन्फॉर्मेशन, तब वो जो सीख चल रही वो अंदर जाएगी, घुसेगी। तो अभी ये तो इनऑफिशियली करते आए ही हैं, हर टीचर को पता है, और जो बड़े स्टूडेंट उनको भी पता है कि मुझे शांत होना है फिर पढ़ाई शुरू करनी है। ये जब हम थोड़े बड़े हो गए तो अपने आप से सीखा, लेकिन अभी ऐसा समय आ रहा है कि ऑफिशियली अब इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी और ज़रूरत जो है क्लासरूम के अंदर बढ़ती जा रही है। नहीं तो टीचिंग एंड लर्निंग बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसमें अगर हमको 20 मिनट क्लास करना है उसमें तो 10 मिनट से भी अधिक डिसिप्लिन लाने के लिए समय गवा देती हैं, बस आधा ही समय टीचिंग चलता है, तो इसमें बहुत वेस्ट जाता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती जा रही है। और जैसे मैंने बताया, अभी ये ऑफिशियली हमारे देश में आ रही हैं, लेकिन 25-20 साल पहले कई ऐसे बड़े बड़े देश जो US हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे UK हैं, जर्मनी हैं, वो नॉर्थ की कंट्री हैं, स्वीडन है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये तो ओवर 15-20 ईयर्स से करिकुलम के अंदर, हमारा तो अभी एक्स्ट्रा करिकुलर चल रहा है, उनका तो करिकुलम में इंटीग्रेट हो गया है, और उनका पीरियड है, और ये तो जैसे उनके एजुकेशन के सिस्टम के अंदर स्थापित हो गया है, जगह बना लिया है। तो क्यों ना हम भी क्यों पीछे रहें, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी, इतनी आवश्यक टूल है, एजुकेशनल टूल, क्यों ना इसको हम पीछे रखें, क्योंकि इससे बच्चों का भी लाभ होगा, टीचर्स का भी लाभ होगा, पूरे स्कूल का लाभ होगा, और पूरे देश का
1: लाभ होगा ज़रूर। और ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, बच्चों को समाज में उठने बैठने का जो सलीका है वो सिखा सकते हैं, उनको देशभक्त बना सकते हैं।

0: जैसे बच्चों के अंदर जो संस्कार है ना, उनको टच करें, उनको छू रहे हैं
1: जी।
0: जितने भी दूसरी पढ़ाई चल रही है उनके ब्रेन को टच करते हैं, इस जिसको अकादमिक कहते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उनके ब्रेन को एजुकेशन करा है। लेकिन ये तो उनके अंदर की अंतर आत्मा को, उनके अंदर जो छिपी संस्कार है उसके संस्कार को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, उसका परिवर्तन को मोल्ड कर रहे हैं। शांति उनके अंदर है, लेकिन उसको जागृत करना है, उसको एजुकेट करना है और उनको सिखाना है कि इसको प्रिजर्व कैसे करें। और दूसरी जो नकारात्मक बातें हैं अंदर, कैसे ना घुसने दें, अगर घुस भी जाए तो उसको कैसे निकालना है और फिर से अपने अंदर जो शांति है, जो स्नेह है, जितने भी हमारे मूल्य हैं उनको कैसे जगाना है मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रैक्टिस है जिससे जितने भी हमारे अंदर जो वैल्यूज़ है उसे जागृत करती हैं और उसको नर्चर, जैसे उसको खान पान देकर उसको बढ़ाती हैं।
1: ज़रूर
0: जब उसको बढ़ाएं तब वो व्यवहार में आए, नहीं तो हमारा ऑलवेज ये कंप्लेंट रहेगा, बच्चे सुनते नहीं, बच्चों में रिस्पेक्ट नहीं, बच्चों में ये नहीं वो नहीं, लेकिन उसका एजुकेशन चाहिए, उसको जगाना चाहिए, एंड मेडिटेशन इज़ द राइट टूल।
1: ज़रूर, और आजकल एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ पर हमको लगता है अगर शांति चाहिए तो छुट्टी के समय में एक लंबा वैकेशन लें, विदेश जाएं या कहीं घूमने जाएं, फिर हमको शांति मिलेगी।
0: तो फैशन बन गया
1: जी, हाँ फैशन सा बन गया है ये, हम भूल गए हैं कि शांति कहीं और नहीं, वो हमारे ही अंदर है। क्रोध जितना जल्दी आता है उतनी ही ज़्यादा स्थापित हमारे अंदर शांति है। तो हमें ये बताइए कि कौन सा मेडिटेशन आप लोग बच्चों को सिखाते हैं?
0: एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा ब्रेथ जो है श्वास और संकल्प का बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
0: श्वास को स्लो करते हैं तो हमारे संकल्प भी स्लो हो जाते हैं, ब्रेन वर्क, नर्वस सिस्टम सब स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ब्रीदिंग सिखाते हैं, उसमें भी अलग टेक्निक होते हैं। फिर साइलेंट सिटिंग, बस बॉडी को स्टिल कर देना, क्योंकि कई बच्चों में आप देखेंगे उनको कहेंगे शांति में बैठ जाओ, हाथ चलता ही रहता है, पाँव हिलता ही रहता है, तो उनको अभी फिजिकल जो बॉडी ऑर्गन है उन पर अभी नियंत्रण नहीं बना है, तो मन को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज को बॉडी मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कहा जाता है, या बॉडी स्टिलिंग एक्सरसाइज कहा जाता है, या बॉडी स्कैनिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। अलग टेक्निक है सिंपल, जिससे बच्चे पहले अपने कर्म इंद्रियां, अपने फिजिकल ऑर्गन को शांत कर सकें, क्योंकि ये उनके वश में आ जाएगा तो मन को शांत करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। शरीर शांत होता है तो उसका असर मन पर ज़रूर आता है। शरीर ही अशांत, कर्म इंद्रिया चंचल हो जाते तब मन भी चंचल हो जाता, उनका दोनों के साथ गहरा कनेक्शन है। फिर हम म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं मन को शांत करने के लिए, जैसे सिंगिंग बॉल होते हैं, या जैसे चाहे आप जो रिंग बेल यूज़ करते हैं और कहते हैं फोकस करें जब तक कि ये बेल की जो रिंग है उसको फेड ना हो जाए, ताकि जो शांति है थोड़ा उसको लंबा कराते हैं, ताकि लंबे समय तक, इट्स नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू सेकंड, लेकिन 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड तक अपने मन को शांत रख सके। ऐसे धीरे धीरे उनको ट्रेन करते हैं मन को अपने इतने सेकंड में स्थिर करो, फिर इतने सेकंड में स्थिर करो, ऐसे ग्रेजुअली उनको मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ऐसे छोटे एक्सरसाइज के द्वारा ट्रेनिंग देते हैं।
1: और फिर जो फीडबैक है, चाहे वो बच्चों की ओर से हो, माता पिता की ओर से हो, या टीचर्स की ओर से हो, वो कैसा आपको दिख रहा है?
0: हाँ, वैसे पेरेंट्स के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, क्योंकि हम मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं, तो वी आर ऑथोराइज्ड टू गो टू स्कूल, स्कूल में तो पेरेंट्स नहीं होते हैं, फिर भी स्कूल के बाहर पेरेंट्स के साथ हमारा कुछ संपर्क है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को हम जाकर सिखा रहे हैं और उनके साथ टीचर्स भी अवश्य होते हैं, तो उनको वो भी सीख लेते हैं, ये चाहे तो उनको सेपरेट सिखाते हैं, चाहे बच्चों के साथ भी सिखाते हैं, तो वी कैन सी द इंस्टेंट इफेक्ट, तुरंत ही हम उसका शुरू में, क्योंकि बच्चों को ये आदत नहीं है सब करने की, खासकर स्कूल में
1: जी।
0: घर पर भी होगा तो उनको थोड़ा डांट करके कराना पड़ता है, मंत्र का जाप करो या शांतिपूर्वक बैठ के प्रार्थना करो आदि आदि, और स्कूल में तो ये बिल्कुल नहीं चलता है, तो उनके लिए तो जैसे ये क्या चल रहा है, उनके लिए तो जैसे एक सरप्राइज है
1: जी।
0: इसलिए थोड़ा वो रेजिस्टेंस है, अपोज नहीं करते, थोड़ा रेजिस्टेंस है। माना हम शुरू करेंगे उनको बताना कि मेडिटेशन क्या है, इधर उधर देखने लगेंगे, उनको कहेंगे अच्छा एक मिनट शांति में बैठ जाओ, वो अपना मोबाइल देखेंगे या कुछ कुछ करना है उनको, और हम समझ सकते हैं क्योंकि नई बात है ना, तो उनका रिएक्शन तो होगा ही ऐसे। फिर धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस

एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उनको जब सिखाने के बाद, क्योंकि थोड़ा बताना भी पड़ेगा, ये थोड़ा सा थियोरी भी बताना पड़ेगा, फिर जब उनको प्रैक्टिस में लाते हैं, उनको शांत में रिलैक्स बिठा देते हैं, थोड़ा म्यूज़िक बजा देते हैं, थोड़ा वीडियो प्रोजेक्शन से थोड़ा नेचर दिखा देते हैं, तो जैसे उनको तैयार करते हैं, फिर उनको धीरे से मन को शांत, आंखें बंद करके अपने मन को अंदर ले जाना, फिर जो इनर पीस है उनका अनुभव करना,

0: विजुअलाइजेशन कराते हैं, तो शांति में बिठा देते हैं और उनको विजुअलाइज कराते हैं। इमेजिन यू आर एट द बीच, आप समुद्र के तट पर हो, आपके पैरों के तले वो रेत जो है उस पर चल रहे हैं, आपको क्या अनुभव हो रहा है? या आप फॉरेस्ट में हैं, जंगल में हैं, घने जंगल में हैं, आपके अर्ध गर्द कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, कितनी वो फ्रेश एयर आ रही है, आप बैठे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे विजुअलाइजेशन के द्वारा, क्योंकि वो ब्लैंक में कुछ अनुभव नहीं करने वाले, थोड़ा सा कुछ इमेजरी देना पड़ता है, फिर जब वो उस अनुभव में जाते हैं तो उसको वापस लाना कभी मुश्किल हो जाता है। हम कहते हैं ओके इट्स ओवर और वैसे ही बैठे फिर वही एक दो आ करके हमको बताते हैं कि हमको कितनी शांति हुई, आप कब फिर से आएंगे। और टीचर्स तो बिल्कुल हमको वो चाहते हैं कि हम बार बार आए, क्योंकि उनको मतलब उनको क्या चाहिए कि बच्चे शांतिपूर्वक बैठ करके हमारा क्लास सुने। तो ये ऐसी विधि है, तो तुरंत वो शांत हो जाते हैं भल कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर वो हम वो संस्कार हम बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए तो पड़ेगा रोज करने के लिए, सिस्टमैटिक फॉर्म से उसको कंसिस्टेंसी देने के लिए। लेकिन भल एक ही बार करते हैं, उसका असर तुरंत उन पर पड़ जाता है।
1: तो जैसा कि आपने सुना, अभी हम बात कर रहे हैं स्कूलों में मेडिटेशन पर, और ये एक परियोजना है जो स्कूलों में इसको प्रस्तावित किया गया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत। और इस विषय पर हमसे बात कर रही हैं रेखा बहन, जो कि एक शिक्षिका रह चुकी हैं और आध्यात्मिक दुनिया से वह कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं। और हम इस विषय को अभी थोड़ी देर और आगे बढ़ाएंगे, बल्कि समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आज हमारा विषय है स्कूलों में मेडिटेशन। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं बहन रेखा जमन जी। रेखा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। आप हमें बताइए, मेडिटेशन जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उसका मतलब ये किसी धर्म से इसका संबंध है? किसी धर्म से जुड़कर आप लोग बता रहे हैं या ये बस स्पिरिचुअलिटी है, एक यूनिवर्सल बात है? ज़रा इस पर स्पष्टीकरण दें।
2: मेडिटेशन जो है ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। यूनिवर्सल प्रैक्टिस मना इस ये जो मेडिटेशन है, सब धर्म इसको मानते हैं और सब धर्म इसका अभ्यास प्रैक्टिस भी करते हैं अपनी रीति से, अपने तरीके से, अपनी रीति से। और जो ये मेडिटेशन प्रोजेक्ट जो हम स्कूल में रह रहे हैं, उसको हमारे धर्म, हमारे रिलीजन्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है।
1: जी हाँ।
2: इसमें क्या सिखाते हैं बच्चों को, ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर कुछ चलता है, हमारे जो संकल्प और फीलिंग्स और इमोशंस चलते हैं, जो हमारे अंदर की दुनिया की बातें हैं जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इसका हमारे धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। मेडिटेशन इज़ कनेक्टेड विद आवर स्पिरिचुअल सेल्फ, जो हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे अंदर जो हम हैं, जो हमारे अंदर जो वर्च्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, ये इसके साथ संबंध रखता है। तो मेडिटेशन में क्या करते हैं, साइलेंट सिटिंग करते हैं, थोड़ा ब्रीदिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं और मन को अपने अंदर केंद्रित करते हैं, ताकि हम अपने संकल्प, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सके और उसको चेंज कर सके, अगर उनको चेंज करना हो तो।
1: ज़रूर। और मेडिटेशन अभी बच्चों को सिखा रहे हैं बहुत सहज तरीके से, लेकिन हम सबको पता है मेडिटेशन बड़ों के लिए भी आसान नहीं है। भले ही ये हमारी एक प्रवृत्ति है थी कभी, लेकिन हम इससे दूर हो गए हैं। तो हमें ज़रा प्रोग्राम के अंत में मेडिटेशन यानी ध्यान का क्या स्थान है हमारे जीवन में, ध्यान क्यों करना चाहिए, इसका सही अर्थ क्या है, इसके साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे।
2: जी, मेडिटेशन का चाहे हम कैसा भी हमारा जीवन है, चाहे हम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, प्रोफेशनल्स हैं या घर वाले हैं, हम सभी के अंदर हमारी जो जीवन है ना, वो दो पहलू में है, आवर फिजिकल लाइफ एंड आवर इनर लाइफ। लेकिन थोड़ा आज के ज़माने के, आज जैसे समाज चल रहा है, उस अनुसार हम थोड़ा ज़्यादा फिजिकल जो लाइफ है उस पर ज़्यादा उसका झुकाव पड़ गया है, और हमारे जो अंदर की बातें हैं, अंदर के जो समस्याएं हैं, अंदर की जो बातें हैं, उसको थोड़ा उससे थोड़ा दूर हो गए हैं। तो जैसे हमारे जीवन में एक असंतुलन, इम्बैलेंस हो गया है, मोर फिजिकल और कनेक्शन विद द सेल्फ, इनर सेल्फ, वो टूट गया है। तो मेडिटेशन के आधार

0: से हम अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ, जो मैं अंदर जो हूँ, मेरे अंदर जो हैं, मेरे अंदर जो विशेषताएं हैं, मेरा जीवन का जो लक्ष्य है वो मेरे अंदर हैं, मेरे जीवन में जितने भी शक्तियों की ज़रूरत है वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर सोई पड़ी हैं। तो मेडिटेशन के आधार से हम अपने अंदर की ओर जाएं, इट्स एन इनर जर्नी, अपने अंदर के जो रिसोर्सेज हैं, खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, जो अंदर छिपी हुई है, उसको जागृत करके उसको जगाएं और उसको अंदर से बाहर में, अपने बाहरी जीवन में, अपने प्रोफेशनल, सोशल, फैमिली, पर्सनल लाइफ में उसको जगाकर उनको, उसको ले आते हैं अपने जीवन में, ताकि हमारा जो बाहरी का जीवन है वो और आगे बढ़े, क्योंकि उसमें डबल फोर्स आ जाता है। तो बस हमारा जो एक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन है, और हमारा जो शारीरिक एजुकेशन है, बस नहीं, हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है। क्योंकि कितना भी हम अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को अपने जीवन के लिए, आगे जीवन के बढ़ाव के लिए उसको इन्वेस्ट करें, वो बस नहीं होता है। अंदर की, आंतरिक की जो शक्तियाँ हैं, उसकी कमी के कारण जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पाते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, मन में फोकस नहीं रहती है। जब कंसंट्रेशन ही नहीं अपने गोल पर, तो अपने गोल, अपने लक्ष्य को पहुंच कैसे पाएंगे? तो इसलिए हर एक को ये ज़रूरत है कि हम अपने स्पिरिचुअलिटी जो है, अंदर की जो क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं, उसको जागृत कर अपने आधुनिक जीवन में लाएं, तब हमारा जीवन और आगे जा सकता है और समाज के लिए हम अपना, जिसको कहते हैं, बेस्ट सेल्फ दे सकते हैं।
1: ज़रूर। और फिर ये मेडिटेशन, ध्यान जो है, वह अगर एक बुजुर्ग, एक बच्चे को नहीं, अगर हमको मेडिटेशन करना हो तो किस समय करना चाहिए, दिन में कितने बार करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए, जरा हाँ, इस पर हाँ, कुछ कहें।
0: हाँ, मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको थोड़ा सीखना पड़ेगा।
1: ज़रूर।
0: तो जहाँ भी मेडिटेशन सेंटर्स हैं और मेडिटेशन कोर्सेज हैं, थोड़ा बेसिक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो बात चल रही है, अंदर जो मैं हूँ, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए थोड़ा जानकारी जानना, प्राप्त करना है कि मैं अंदर क्या हूँ, एक अंदर की जो मैकेनिज्म है, मेरे संकल्प कहाँ से आते हैं, निगेटिव कैसे बन जाते, पॉजिटिव कैसे बनाना होता है, हमारी जो भावनाएं, इमोशंस हैं, उसको कैसे कंट्रोल, ये थोड़ा बेसिक सीखना पड़ता है, आवर इनर लाइफ, आवर इनर सेल्फ। फिर जैसे सीख लिया, तो मेडिटेशन क्या है, जस्ट बी अवेयर, माना ध्यान करो, अपने जो अंदर की बातें उस पर अपना ध्यान ले जाओ, उस पर फोकस करो और उनको जागृत करो अपने संकल्प के आधार से। और एक बारी करने से उसका इफ़ेक्ट होगा, लेकिन अगर आप उसको हर रोज़ करें, हर रोज़ भी नहीं, टाइम नहीं मिले, सप्ताह में दो तीन बार करें, या टाइम मिले तो रोज़ करें, वो तो और उसका ज़्यादा असर, अच्छा असर पड़ेगा। और दिन में जितनी बारी आप चाहें, मेडिटेशन छोटा छोटा होता है, दो तीन मिनट के लिए होता है, अगर उसको बार बार करें तो उसका असर और ज़्यादा होगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल के आधार पर है, वो कब करना चाहते हैं, आप घर के अंदर करें, बाहर नेचर में जाकर करें, सोफे पर बैठ करके करें, क्योंकि वो अंदर की प्रक्रिया है, उसका बाहरी रूप में आप किधर हैं, शरीर का पोस्चर क्या है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो जिधर भी चाहे आप कर सकते हैं, और कितना समय चाहिए ये आपके अनुसार, आपके इंटरेस्ट अनुसार, आपके समय अनुसार भी इसका आधार रहता है।
1: ज़रूर। तो जैसा कि आपने सुना, आज हमारा प्रोग्राम, आज संस्कृति की बातें थी ध्यान पर, मेडिटेशन पर, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो मेडिटेशन प्रोग्राम, मेडिटेशन प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूलों में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेखा बहन उपस्थित थी। और शायद ध्यान या मेडिटेशन पर पूरे रूप से बात करने के लिए हम कभी एक अन्य प्रोग्राम में मिलेंगे।
0: ज़रूर।
1: आज आपने अपनी उपस्थिति दी रेखा बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: और हमारे सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की शुरुआत अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। ये संस्था बिजली घरों के लिए बायोमास की आपूर्ति, लॉजिस्टिक और भंडारण का प्रबंधन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बायोमास नीति के तहत कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की रणनीति को लागू करने में मदद करना है। शुरुआती चरण में सरकार बिजली उत्पादन में लकड़ी के चिप्स के इस्तेमाल को बढ़ाकर 10-15% करने की योजना बना रही है। ओमनिकेन का लबाक बिजली घर लिस्काली में पहले से ही अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में इस क्रमिक बदलाव में योगदान दे रहा है। पिछले वर्ष स्कूल सर्टिफिकेट यानी एससी परीक्षाओं में मॉरिशस के विद्यार्थियों ने 9 विषयों में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि का जश्न आज सुबह मुका एमजीआई में आयोजित एक समारोह के दौरान मनाया गया। समारोह का आयोजन मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से किया गया। इस मौके पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जो इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के युवा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण इस सप्ताह राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 76 प्रतिभागियों ने एक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता नेशनल असेंबली की अध्यक्ष ने की। इस संस्करण के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के नेता के साथ साथ कई सांसद भी मौजूद थे। यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने का आत्मविश्वास विकसित करना और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कुछ अलग एक मामले के बारे में। अमेरिका के सबसे चर्चित अनसुलझे मामलों में से एक मशहूर रैपर टुपाक शाकूर की हत्या का मुकदमा आज सोमवार को लास वेगास में शुरू हो रहा है। 63 वर्षीय ड्वेन डेविस, जिन्हें केफीडी के नाम से भी जाना जाता है और जो कभी साउथ साइड कैम्पटन क्रीप्स गिरोह के नेता रही हैं, पर टुपाक की हत्या की साजिश रचने और हत्या में इस्तेमाल हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। अभियोजन पक्ष अदालत में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि डेविस ने हत्या की साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। दोषी ठहराए जाने पर उन्हें बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 सितंबर 1996 की रात कैलिफोर्निया के मशहूर रैपर टुपाक शाकूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। टुपाक वेस्ट कोस्ट हिप हॉप संस्कृति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित कलाकारों में से एक थे और उनकी छवि एक बैड बॉय रैपर के रूप में बनी थी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: आज की चर्चा।
3: सबको के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में सब लोगन के स्वागत बाटे। जैसे जनवे करीबा 2 दिन से इतना पानी बरसल, काल तक मम इतना पानी बरसल। आज हमने कौन सी बार बतियाब सा सुखारी ड्रोट एगो व्यंग है। काल इतना पानी बरसल, आज हमने सुखारी पर बतियाब सा देखा। हाँ, सर्दी के मौसम में है नहीं जा, पर ड्राई सीजन वो बाटे। इतना

0: पानी नहीं बरसता और हमने देखा था जा कि कितना जन पाबंदी लगावल गल बातें इगी गाशों के लेके सब कोई की तो परेशानी हुआ था पर हमने का करब से चाहेला जैसे बोली ला जा सैचवा चाहेला सिगे करे के तो हमने के संगे जुड़ल हुआ ध्यान दिया तो आज हो हमने के मेहमान हवन फागे के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी तो चला इनका हमने स्वागत करी ला जा भाई शंभू प्रणाम नमस्ते
1: नमस्ते नीतूषा
0: हम जैसे बोला था काल तक इतना पानी बरसल अच्छा लगल हमने सब बोला था सब मम्मा है जो पानी हुआ बाजे रिजर्वा लगे जाए तक कितना अच्छा रहत पर देखबा तो ड्राइवो सीजन बाटे और उस सुखारी के मौसम पा पानी बा पर कमती पानी बरसता और वो एके में हमने के जितना कोसुमाते है सब पर जितना खेतीहर लोग हवन जा वो लोगों सुफिया हुआ था जा हमें जब हमने देखा था जा जो सुखारी बातें कितना चीज जो पाबंदी लगावल बातें है चाहेला करे कि नहीं चाहेला करे के आगोसास इरीगासों ये सब तब जब हमने बात करत है जा जो खेतीहर हवन जा हबी फजीर के पानी होवेला दिन में इतना गर्म करेला घामा होवेला तो जितना लोग कारों में हवन जा काम करेलन जा वो लोग जब आहोजाज करेलन जा बोलल जाला जब आहोजाज कई बजे चाहेला करे के एकर बारे में तू बोलब जे दिन में करियन जा तो जितना पानी सब होला सब सूख जाला एवापोरे हो जाला तो जितना जना तो हब भी तोहरा सुनत हवन देखत हवन वो लोग के कौन ची बोलब कब चाहेला इस्तेमाल करे के पानी
1: अच्छा जितना लोग हमने के आज सुनत हवन जा सबके भी नमस्ते तो जानेला जब कभी कभार जब दिन में कहूँ पर टहलने जा ब तो लौकेला कि खेत में हो जैसे बोलना सा ताक ताक स्प्रिंकलर चलते रहेला पानी छर छर छर छर चलते रहेला दिन में 10 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे चलते रहेला तो लेकिन यहाँ पर ही हमने के छला सोचे कि जब घमा मारेला तो हो जन माटी के जन ओकर शफास रहेला तो वो जस्ती गरम रहेला तो जब पानी ओकर में जब ओकर में गिरेला तापमान क्योंकि ओकर तनसुन उठल बाते तो वो कैसे बोलना सा एवापोरे हो जाला और एगो पौधा के जो सब्जी हमने बोला था ओकर एगो पौधा के ओके पानी ही चे खाते कौन सी पानी चेला ओकर जड़ी तो जड़ी तो अब एकदम से ऊपर में नहीं रहेला ना उतर एगो 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर नीचे में रहेला तो जब दिन में जब धूप रहेला तो आज हमने सिंचाई करब जा तो ढेर पानी नीचे जाए से आगे जड़ी ओके जड़ी के ओकर जन ओकर जहाँ पर लॉबीमा बातें वहाँ पर आए से आगे वो वापस हो जाला तो ये कारण हमने के जो चाहेला करे के या तो सवेरे अंधारे ही है कैसे 5 बजे 6 बजे 7 बजे ऊपर से बाद नहीं क्योंकि धूप तक निकल देला गर्म करेला तो चला सवेरे ही ऐसे सिंचाई कर दे के ताकि पानी जो उनसे सिंचाई होल ओके समय मिली नीचे गते गते जाके जड़ी के ओकर आसपास ले आई के ताकि जड़ी सकी ओकर प्रयोग करे
0: या तो फिर
1: नहीं लेता ले ओकर पर आएला या तो फिर सवेरे नहीं तो शाम के जब धूप जाता शाम के जब होता धूप ढलता तब तत्व पे अच्छे तापमान जन गिरी ना
0: जी
1: तब जब सिंचाई हुई तब पानी के लेता मिली नीचे ले जाए के अब कितना लेता जैसे बोला कितना समय ले नीचे जाए कि तो वो तो निर्भर बात है कौन इरीगेशन के प्रयोग कर तो आज देखा एक जना एक लौस से एक जगह में इरीगेशन का रहता एक मोटा पानी जाता वहाँ पर ही तो हाल ही से दिशान हुई अब जब स्प्रिंकलर से भी कर रहता तो दीपान कौन प्रेशों से आवा था तब कितना पानी नीचे मारा था तब गते गते भिंजले भिंजले भिंजले भिंजले तब नीचे डाला अब कोई कोई ड्रिप इरीगेशन से भी करता वो तब गुद किसी वाला गुता गुता गुद गुद गुद जाके तब भिंजले जाए लेकिन एक खेती हर सकी जाने कितना पानी बाते खेत में या फिर आज मांगा था सिंचाई करे खाते कि नहीं वो कैसे करी जैसे गल हला बोले रानी उसे कि हम माटी के लेके नीचे नीचे में 20 सेंटीमीटर तक कोड़ के इसे हाथ में पकड़ी सूखल रही था माटी तक गिर जाए पचपच रही था तक गोला बन जाए और अजय इमिद रही तो माटी गिरी लेकिन धूल की तरह नहीं खाली गिरी और हाथ में तनि सुन माटी गल इमिजते से चिपकल रही या फिर खेतिहर अपन जैसे बुत पहने लन जा बुतवे से और माटी हटे से तो लोग तो अनुभव से जान जान जा कि जड़ी के पास अभी पानी बाकी नहीं तो एक में कुछ होता आज हमने दिन के सिंचाई करब जा तो क्योंकि पानी जस्ती एवापोरे हो जाए नीचे निकल तो हमने पानी के तक न जान करते

0: आजे अब पानी के कदम पड़ता खर्चा करेगी तो खर्चा भी ज़्यादा हुई तो दृष्टि अच्छा रहा था हमने कि जितना खेती हर लोग सुनाता या तो अंधारे ही सिंचाई कर लिया जाए ताकि पानी के लेता मिली नीचे जाके या तो फिर शाम की कीजिएगा।
1: तो जैसे बोले तो वह ना चाहे वो फजीर के हो न तो सांझ के वो जस्ती अच्छा भगत पाते और वो जो दिन के रही वो अच्छा नहीं रही। तो ढेर दिन खेतिहर होवन भाई शंभू जी वो लोग जब अपन जो माटी के दिखलन जा कि उस सूखल बाते तो वो लोग के ऐसे में चलावेला कि हौजा जाके जो मटिया बाते चाहिए वो लाटे के एगो एगो शब्द है जा बाते मिनिमम न तो जीरो
0: टिलेज
1: कौन ची है।
0: अच्छा जब एगो खेतिहर माटी के तैयारी करता या फिर जैसे बोला सा आई अर्थिंग अप करता माटी चढ़ावता तो माटी के जब बीने करब तो माटी के तुरंत हो मुठा जुनबा या कुछ हो तो तुरंत हो तो नीचे के माटी थोड़ा लाहो जला लाहो के माटी नीचे चलावेला
1: एगो निमन प्रैक्टिस है।
0: निमन प्रैक्टिस नहीं है उसका तीन बोला जा जीरो या मिनिमम तिलेज करे के लेकिन कभी कभार पड़ेला करे के कैसे देखा गाजर के होकर खेती करब तो गाजर के खेती करब तो बिया पड़ेला है सेमे करे के तो बियावा जब मैं सेमे करब अब जो गाजर बा नीमन से डेवलपे हुए माटी में तो माटीवा के चला बीने करे के तो यहाँ पर ऐसा ने गो खेती में मतलब दूसर दूसरे गो शुआ ने बाते अरे पड़ी करे के लेकिन एगो आदमी गन्न जाता कदुआ रोपी कोहड़ा रोपी टमाटर रोपी तो दरी में रोपल रहा ना तो ओकर खातिन एको गनला एको यजांस ने बातें नेसेसिटी ने बातें कि जाके खेत के नित लेके बीने कर दे ओकर नेसेसिटी ने बातें उसे कि जाके जहाँ पर दरी करके खाली हुए पर दरी करके तब हुआ पर ही अपन अपन आए ट्रांसप्लांटेशन कर दे वहाँ पर ही या तो अपन बिया डाल दे तो इस प्रकार से माटी ने हिलल खाली एगो छोटा सुन जगह में खाली माटी हिलल बा अब माटी हिला तो कौन ची होला जब मटिया के माटी जब घूम जाला नीचे के माटी जब ऊपर चला तो लाहो के तो माटी तो सूखल नहीं रहा बस वहाँ तो क्योंकि घमा लगेला ना तो लाहो के तो माटी तो सूखल बा तो नीचे जब कोरबा तो देखबा तो नीचे तो थोड़ा इमिद रहेला अब माटी लेके जब घुमा दिला तो नीचे के माटी जब ऊपर होल तो नीचे के जो माटी में लिमिजते रहल अभी कुछ ऊपर होगल तो सूखे लगेगा और ऊपर के माटी तो ज़्यादा सूखल रहल आगे से सूखल रहल नीचे चल गल तो इत अच्छा नहीं बात है तो जीरो उ खातिन बोला जा मिनिमम तिलेज या जीरो तिलेज अब एक में गो अंतर बा कौन ची है मिनिमम तिलेज और कौन ची है जीरो तिलेज जो उदाहरण हम देली कि कैसे जहाँ पर ही नेसेसिटी नहीं बात है तो हुआ नहीं चला खेत के नेट बिने करे के खाली जहाँ दरी करे के बा हुआ पर ही कुड़बा और अपन दरी बनेबा और बोबा उ होकर मिनिमम तिलेज ठीक। अब एगो चीज है जीरो तिलेज ओकर खातिन चला प्लानिंग करे के अपन ठीक से खेत के देख रेख करे के ओकर में माटी के ही नहीं कुटल दला
1: अच्छा
0: ऐसे ही खेती कर दला अब कैसे अब बोलबा अजय माटी नहीं कुटल तो कैसे खेती कर दला तो ऐसा नहीं माटी में खेतीहर लोग कुछ कर लंसा ऊपर से आके ओकर पर मल्चिंग कर लंसा एगो एगो कुश है फिमिया कोपोस लापाई वुड चिप वगैरह वगैरह डलते जा लंसा उसे माटी के ऊपर अब एगो कुश होगा तो अब एगो पौधा लगाए के रही तो हम माटी में तो जैसा माचे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक माचा सब बा ना माटी में नहीं हो कुशवा में बात है ना तो खाली हो ऊपर के जो कुशवा बा वो हटा के ओकर में पौधा लगा देवे लंसा माटी तो छुलन सा नहीं
1: जी
0: जड़ी अपने अपने आप जब पौधा बड़ा हुए जड़ी जब निकले लगी जड़ जब निकले लगी वो अपने आप माटी में घुस जाए कैसे घर पे कभी कभार हमने पो में प्लास्टिक के जो पो रहेला वो खरीदला सा एक आगो पौधा लेके रख दिला सा आंगन में माटी के ऊपर कबो कबो दिखले हुआ दो तीन महीना चार महीना जी रख दिले हुआ
1: सूख जाए
0: नहीं नहीं सूखी आज पानी नहीं बता उतर सूख जाए ऐसे कर पोवा रख ले हुआ लेकिन सींचते जाते हुआ तो पौधा तब बात है टेंशन बड़ा होता रेमो के कर वो प्लास्टिकवा के नीचे में फार के वो जड़ी जनबा वो झुक जला माटी में देख लो तो तोहर जन पोआ रहल ओकर में तो जीरो तिलेज होगल क्योंकि तू माटी के नहीं ले रहा तब जड़ी ढुक गल ई करे खातिन और जैसे बोलिए एगो कुछ माचे ऑर्गेनिक आने खातिन ई में बहुत जैसे सारा पैसे वगैरह करे के क्योंकि एगो टेक्निक है ज़्यादातर जो खेतीहर जो बायो फार्मिंग में हो जाए नेचुरल फार्मिंग में हो जाए वो लोग अपनावे लग जा जीरो तिलेज माटी के नहीं हिला माटी के ऊपर एगो

0: की तैयारी हो जरा, जो माचे ऑर्गेनिक से भरल बा ओकर में रोपाई होला, जड़ अपने आप जाके माटी में डूब जाला। और इस कारण से क्योंकि है कुछ बात है तो माटी में जो निमिचते रहला वो बरकरार रहेला।
1: तो अभी जैसे हमने जाने था जब अभी ठंडा के मौसम बा पर सुखारिवो के जो बातें हमने देखा था जब ड्राई सीजन बातें, तो हैसन जो मौसम बात है हैसन जो सीजों बातें खेतिहर लोग के वो लोग के तो चाहेला प्लांटेशन करे के काहे कि जे कुछ नहीं प्लांट बा तो कुछ नहीं मिली खाए के हमियों के कोसो माते सबके। तो तुहर देखे में जब सुखारी आवेला जब ऐसा हमने की माटी हो जाला ड्राई हो जाला निम्ने से सूख जाला जैसे बोलब सब, तो कौन चीज चाहेला करे कि जैसे बोला था वह टीलेज जो बाटे जीरो टीलेज जो बाटे चाहेला करे के उन्नत जो मटिया व चाहेला अस्पेरे करे के कि कब ड्राई सीजन खत्म हो जाए तब फिर से तैयारी करबा।
0: हाँ एक में दो तीन गो चीज बात है। एगो बा गन्ना सुखारी के मौसम से गुजरा था ऐसा देखा ई एगो जैसे बोला से गो फेनोमेन खाली ई बारिश के नहीं है, हर बारिश देखा जा तो हर बारिश हमनी के ई समस्या आवेला सुखारी के, या तो फिर एगो पेयड आवेला जहाँ पर ही वर्षा कम होला या पानी कम होला। तो ई हमनी के चला ई हमनी के अनुभव बातें हमनी के चला एक से सीख मिले के और कोनो कोना कोना योजना अपनाए के। सबसे पहले तो आज एगो किसान जन बातें गन्ना ऐसा एगो मौसम में जाए रोपाई करे तो ओके अब चला एक आध गो प्रश्न अपने आप से पूछे के किसान लगे सकेला दस बीघा हुई गन्ना दस बीघा हुई या पाँच बीघा हुई, तो अपने आप से चला प्रश्न पूछे के देखा आज हमारे पाँच बीघा में हम जब रोपाई करे या दस बीघा में जब रोपाई करे हमार लगे कौन योजना बातें कि हम सकब ई दस बीघा के सिंचाई करे, क्योंकि आजे कठिनाई से गुजरब जा पानी नहीं रहता का करब जा। तो जन आज दस बीघा के जमीन बा ओकर में हम खेती करनी, अब सुखारी जब आवे तो हमें लगे कैपेसिटी बा खाली दो बीघा के सिंचाई करे के तो आठ बीघा तो मर जाए। तो पहला ओके चला सोचे के कि जन एवेस्टिस्मा करा था उसा की वो एवेस्टिस्मा के ओकर देख रेख करे, क्योंकि जैसे बोला अंत में तो चाहला ओके सब्जी उगाई सब्जी मिले के फसल करे के ताकि ओके आमदनी मिले जब बेची तब। तो सबसे पहला ई चला करे के ओके चला एगो निर्णय लेके कितना हमार कैपेसिटी बा सिंचाई करे के ओकर आधार पर ओके चला ओकर खेती बाड़ी करके है एगो। दूसर एगो खेती हर के नहीं चला आतान करे के इंतजार करे के कि कब सुखारी के मौसम आए या कब इरिगेशन अथॉरिटी पानी काटी या शेड्यूल पानी काटी तब जाके इधर इधर इधर उधर दौड़ी हाँ हमारे लगे है निभा चला गो टैंक डाले चला है करे चला गो सिस्टम आसन डाले वगैरह वगैरह है एगो चीज चाहला ओके हाँ और नावास चाहला करे कि क्योंकि एगो प्रिपेयरनेस है ना जब ओकरे प्रॉब्लम नहीं हुए ओकरे समस्या नहीं हुई। तो ई ऐसा एगो निर्णय ओके चला ले ई भी लेके कि चला हम खेती बाड़ी करते हैं तो हम के चला एगो सिस्टम गैसो या एगो सिस्टम स्टोकास पानी के चला हम लगे एगो सुझाव रहे के है दू को होल। अब तीनवा गन्ना है सब योजना कर दिले बा अब ओके अब तो रोपाई करके मान तो अब ओके चला ऐसे सोचे के कि कैसे हम रोपाई करब कि जो हम अब सिंचाई हम तक करत है जितना भी भा ओकर से तक करत है तो कैसे अब हम रोपाई करब जमे जो पानी हम माटी में डालते हैं वो जान नहीं होता वो एवापोए नहीं होता वो माटी में जाता वो जमे जड़ी सकी प्रयोग करे खासिन सकी प्रयोग करे जमे पौधा के लाभ हुए। तो दुगोबा कैसे जान नहीं हुई तो देखो सबसे पहला तो जहाँ हम ही पहले जब जाब गन्ना सुवेनिया एरिया में जब जाब तो देखब कितना जगह हो ड्रिप इरीगेशन टूटल बातें पानी धराधर जाता तो इतना नहीं छावाता ना तो जितना हो जैसे पहले से लीकेज बातें एगो एगो एगो खेतीहर के चला जितना लीकेज बा सब के चला सुधार आने सब में चला सुधार आने के चाहे पानी जानने हुए। हाँ अब जब सिंचाई करे के बाद अब कैसे गन्ना कौन योजना अपनाए ताकि जो सिंचाई का अलग पानी एवाप हो गए नहीं हुए। अभी कल में अनेक प्रकार की योजना बातें जैसे कि जब खेती करी तो चला ओकर जो भी सब्जी की खेती करता है चला जहाँ भीरी भीरी रोपे के जब भीरी भीरी रोपा तो एगो ग्राउंड कवर कहते होला तो जब ग्राउंड कवर कहते होला तो जन धू

0: उपरेला माटी में सीधा नहीं मारेला तो एवापोरेशन कमती हो जाला अब आज दूर दूर रोपा तो बस क्योंकि जैसे टमाटर भा एकदम से भीरी भीरी नहीं रोपा ना तो लगभग एक एंड पॉइंट एमित पाला पर रोपा जाता तो दूर दूर में बाती तो हुआ कुछ सकलाई करे हुआ चला किसान के मल्चिंग करे के तो जब ऐसा जो खेती बाड़ी दूर दूर में बा तो आज मल्चिंग करब तो वही से तो अभी माटी जोन बा तो उ तो आए गला ढक जाए जब ढक जाए तो सूर्य की जो किरण माटी में नहीं मारता माटी के तापमान नहीं भरी जब तापमान नहीं बढ़ी तो एवापोरेशन कमती रही और मल्च भी तो आज नेचुरल मल्च से कर तो ऑर्गेनिक सर की तो ऑर्गेनिक माटी हो जाए तब आई खेत में तो आई माटी में प्रभाव करी दूसर ग्राउंड कवर कर ला लेकिन तुहर माटी ही में कौन सी बातें एगो माटी में आज माचे ऑर्गेनिक नहीं बा तो तू सिंचाई कर बा उ तो माटी माटी में ढुक के चल जाए कहीं रेतनिये नहीं हुई या तो फिर एवापो हो जाए तब माटी में चला कोनो खेती कर बा दरी में रही तो खूब दरी में माचे ऑर्गेनिक डाल दिया फीमिया दिला गाय के फीमिया जैसे हम हमेशा बोला सबसे बेस्ट है
1: तो चाहेला कोनो एनालिस करे के रुपाई से आगे कुछ हो
0: नहीं पानी खातिन पानी खातिन देखा नेसेसरी बातें आज सकल एनालिस करे तो सकल अला करे क्योंकि एगो माटी में जानब जा कितना ऑर्गेनिक माटे बातें लेकिन एगो माटी के देख भी कर बता हम ही कोई जानी कोई जाए जाए एगो माटी में देखे तो जान जाए माटी कैसन बा किसी को माटी के देखब आज काला रंग के भीरी नहीं आवता तो कर में माचो गानी कमती बातें एगो माटी के पकड़ ला सिंचाई कर ला थोड़ी घड़ी में गला सुगल हाथ में पकड़ ला तो धूल कहते गिरेला ओकर में माचो गानी कमती बातें एगो माटी जन बा ओकर में देखा था घास भी नहीं जमाता तो कर में माचो गानी कमती बातें क्योंकि आज घास से जमाता तो सब्जी कहाँ से जमी
1: घास के बात कर रहे घास एगो बड़का प्रॉब्लम है हमने के खेती हर लोग खातिर आजकल बोलल जाला घास के नए उखारे के नए चाहेला कबारे के काहे कि उ लोग मदद करेला तो ऐसा सुखारी के मौसम में जब जो सॉल मॉइस्चर आते तो एक से जो खेती हर हवन जा उ लोग कैसे जूझे लन जा
0: हाँ तो ज्यादातर कौन चुड़ा एगो खेती हर जब घास दिखला तो घास के कबार देवेला हिया हमने के चला देखियो एको सब रूल नहीं बात है जैसे बोले जा चला घास निकालेगी या चाहन घास नहीं निकालेगी हम नहीं सका वैसे बोले खेतीहर के चला अपन खेत खातिन अपन से निर्णय लेके एगो ऐसा जगह में हुआ जहाँ पर ही धूप रहेला एवापोरेशन जैसे बोला सर हाई रहेला बड़ा रहेला ताजे सिंचाई करब तो जो पानी बा उतर एवापोरे हो जाए जैसे अभी अभी बोली हम ग्राउंड कवर चला रहे के तो ग्राउंड कवर अनेक प्रकार के रहला कैसे ग्राउंड कवर हम बोली आज खेती करते सब भीरी भीरी रोपे कैसे लीसू रोप तो गोभी रोप तो भीरी भीरी रोपल तो जो पत्ता बता ओवरलैप
1: हो
0: नीचे माटी के तो ढक दे अब कोई दूसर खेती करे तो जन दूर दूर में बात है तो आज नहीं सकब जैसे बोली पायास नेचुरल करे तो पड़ी एगो दूसर योजना आने के जैसे जिसे माटी के ढकब तो माटी के ढके खातिन सकब जोन घास निमन है थोड़ा लोग घास निमन बाकी से विलबाग के घास जब छुट्टा रहेला तो निमन रहेला बाद में ओके फुलाई से आगे सकब निकाल दे या एक आध गो फुलाई दिया जब फिर से बिया मिली ना नहीं तो नहीं मिली तो अच्छा रहेला तो एगो ग्राउंड कवर रही हाँ घासवा के टेंशन पानी तो ही छी लेकिन धूप से जितना पानी एवापोरे हो आज वो नहीं रहत तो ज़्यादा प्रभाव प्रभावित हो माटी वा तो एक आध गो ग्राउंड कवर तू ही सकब रोपे कैसे एगो उदाहरण के रूप में तू गनला आज अरुई के खेती करते हो या व्यूलेट के खेती करते हो लेकिन थोड़ा आज इस पास ही हुई तब बीच में सब कदवा के रोपाई कर दे या मान्यो के खेती करते हो तब बीच में सब दूसरा चीज रोप दे कोनो खेती हुआ लोग अरुई के खेत में देखब लेकिन कुतुमिली छिट देवल शुरू में तो कुतुमिली जब जमे लगेगा ओकरे तो पानी के कम ही बात है लेकिन ओकरे जो जड़ बात है तो बिल्कुल ऊपर रहला माटी के तो जन पन्या एवापोरे हो जाए तो ओके मिल जाए अब जब वो टेंशन बड़ा हुई तो वही एगो कहने को ग्राउंड कवर कहते माटी पर कर दिलक तो धूप से माटी में से पानी उतना एवापोरे नहीं हुई तो ये खेती हर के छान निर्णय
1: ओकर पर निर्भर बातें जी और हमने जब बात करे थे जैसे सुखारी हमने आजकल हमने देखा था ऐसा जस्ती जन रीजन ली नो के बातें उत्तर क्षेत्र में बातें काफ़ी जना लोग परेशान हुआ जब पर दूसरा जगह वो ये नहीं है कि हाँ प्लेन विलियम्स में है ऐसे तो है जा प्रॉब्लम नहीं बातें प्रॉब्लम हुआ तो सगरों बातें तो कैसे चाहे लाइकर से जूझे कि अब
0: हाँ जैसे अच्छा बोला समझता था सगरों बातें पेन विलियम्स में भी

0: पानी की कमी होला और हम किसान लोग के जानीला जो नभी आई खोजत बोहल के प्रबंध करे त हम बोलती इस शॉर्ट टर्म में सुझाव नहीं निकली मैं लॉन्ग टर्म में हम बोलती जो खेतीहर लोग खासकर उत्तरी इलाका में होता लेनो में होता आज एगो ऐसा इलाका में होता जहाँ पर एक किसी बोला से कंसंट्रेशन एग्रीकल बात है वहाँ खेती बाड़ी ढेर कोई करेला तो हम बोलिए थोड़ा चाहेला जाके रे घोपे हुए के एगो एसोसिएशन या एगो कोऑपरेटिव में रे घोपे हुई काहे क्योंकि एगो रे ग्रुपमा द्वारा सकबा जा एगो बोहोल में एवेस्टी करे अकेले आज एगो बोहोल में एवेस्टी करब तो तोरा लग जाए लगभग 600,000 रुपया लग जाए हाँ 600,000 रुपया लग जाए लगभग तो एवेस्टी में भारी लोग एक जना खाते ना जाए करे तो लेकिन आज एगो के ग्रुप में करवा जाओ एगो कोऑपरेटिव कहते करवा जाओ कम में 10 गो 20 गो 25 गो 50 गो माँ माजे रही तो एवेस आज 600,000 से 10 गो रहता कितना होगा 60 मिल होगा
1: जी
0: तो कमती होगा ना हाँ एगो चीज़ सकल लाई करे तब सब बजा बोहोल में से तब पानी ओकर में चला एप्लीकेशन सब करे के वाटर यूज ड्राइव सब मांगे के वगैरह वगैरह लेकिन पानी तो मिली ना कम से कम थोड़ा बहुत फिर बा सक बजा रिजर्व कैसे आज सक बजा 7 मिल के एगो ओवरनाइट रिजर्व कहते बनाए जब पानी आवता हमने के तरह जन जैसे पौलमा में भी जब बोल रहे हों कि आप लगभग 50% पानी तो पीएचजी हो
1: जाए हो जाए
0: हाँ तो जब बेहतर रहत जन पीएचजी हो कि एगो ओवरनाइट रिजर्व कहते रहत एगो बड़ा सुन तब पन्या आके ओकर में स्टोक की होता उतना पन्या था पीएचजी नहीं होता तब तब मिलात नहीं तब दूसरा दिन या एक दो दिन दूसरा दिन हवे खेतीहर हवे रिजर्व में से सकता ड्रिप इरीगेशन अपना के तो हवे में से सिंचाई करे है दुगो होल अब ऐसे दूसरा दूसरा योजना बात है जैसे कि
1: आजकल तक टैंक को सब मिला था
0: हाँ हवे चलते नहीं बोले हाँ तो एक दूसरा चीज बा ओकर नाम रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ तो जब देखी जाते से पानी बरसेला था देखी जाता सगरो बह के चल जला तो ओके चलना कप्तास करके ओके चलना जमा करे के अब एक दो तरीका बा कर लाई ओकर कप्ते करे के एगो तो खेत में सकबा जागन ल बासे कहते कोड़े तब ओकर में रिटेंशन वॉल डाले जैसे मुठ एपे पे प्लास्टिक रहला ओकर से सकबा बनाए सस्ता है बीतों वही सकबा बनाए लेकिन ऐसे सस्ता है या तो फिर खेत में गन ला तो हर एगो शेल्टर बाते एगो एगो कुछ बाग गन एगो छोटा सुन घर करीते या गोदाम बाते तो ओकर ऊपर तो छत बना तो छत के ऊपर जन कुत्ते में छा दालू डाले के दालू डाल देब तो टैंक बा तो दालू के टैंक में जन जो भी पानी मिले तब कुछ तो मिला था ना तो स्टोकी हो तब ओकर में सकबा ले अब हाय जन बोलिए रेन वाटर हार्वेस्ट स्कीम रेन सॉरी जन बोलिए माफ कीजिएगा जन बोलिए रेन वाटर हार्वेस्ट करके कप्तास दिलू करे के तो एक फिनांसे करे खातिर एगो स्कीम बाते रेन वाटर हार्वेस्ट स्कीम ओकर में से 50% तक पहुँचे के एगो प्लाफो है लेकिन एगो फिनांसमा मिलेला तो एक छाना लाभ उठाए के सबसे तो स्कीम से छाना लाभ उठाए के फाके के दफ्तर में जाइए 16 दफ्तर बाहमनी के देश में तो कोने को दफ्तर में जाइए ओकर पर जानकारी मांगिए
1: जी तो हमने के संगे जुड़ल हवा बहुत बहुत धन्यवाद एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमने वापस आईला जा

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर उनसे आज की चर्चा कार्यक्रम के साथ जुड़ल हुआ और हमने के मेहमान हवन सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी फागेदानी से तभी हमने सुखारी पर बतिया था जब खास तौर से हमने के जो खेतीहर हवन जब कितना परेशान हो जालन जा भाई शंभू अभी तनी देर वाह बोले रहला कि जो खेतीहर हवन जा वो लोग अपन माटी के कैसे जनियन सा कि हाँ सुखल बाते निमन बाते तैयार बाते हाथ से बोले हवा कोनो और तरीका बाते जो न से वो लोग टेस्ट सकियन सा करे।
1: हाँ बिल्कुल एगो एगो छोटा सा डिवाइस है उसका नाम है टोंशोमेट कैसे हमने हमने अपन टोंशो चेक कर ला जा ता एगो दूसरा पानी का तीन टोंशोमेट ता ओके जब उसका में एगो अंग्रेजी में बोला से एगो प्रोब जब माटी में दलबा लेके खोसबा माटी में तरा एज के करी कि माटी के सैचुरेशन कितना बा यानी कि पानी कितना बा ओकर में तरा एज के करी क्रिटिकल बा कोडे निमन बाते कि देर बाते ओकर में तरा लौकी तो हाई यो एगो अच्छा चीज बोला ता क्योंकि हम तब बोले जैसे कैसे अनुभव सकब जा करे हाथ से ना जब बेगो लापाहे के प्रयोग करब जा तो एक द्वारा हम जाते हैं प्रेसिजन फार्मिंग के ओर प्रेसिजन फार्मिंग यानी कि जितना चीज़ हमने निर्णय लेप जा सब कैलकुले बातें सब गलत ऑप्टिमम बातें देखो टोंशोमेट के सकला प्रयोग करें आजकल जैसे बोला सा ढेर चीज़ अब डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज है यही आशों भी एक यही सीमा ले हुआ था टोंशोमेट जो इलेक्ट्रॉनिक रहला इलेक्ट्रॉनिक टोंशोमेट उसकी की तोहर सिस्टम इरीगेशन संगे जुड़ल रहे तब जब टोंशोमेट द्वारा जब पता चली कि माटी के जो मॉइस्चर कंटेंट बा वो गन्ना नीचे हो लाता तो ऑटोमेटिक मग ना इरीगेशन वहाँ सकी डिक्लोसी हो जाए इरीगे करे तब कटा जाए
0: हमें एगो शब्द इस्तेमाल कर ला टोंशोमेट हमने की टोंशो होला तो हमने टोंशो चेक करी ला सा एगो शब्द हमेशा इस्तेमाल कर

0: इलाजा स्ट्रेसे हमें जो सुखारी के जो बकत आवेला जितना प्लान बाते गांची बाते वो लोग स्ट्रेसे होलन सा कैसे स्ट्रेसे होलन सा
1: जैसे हमनी के शरीर में खून बाते पानी बाते वैसे भी जो सब्जी है पौधा उकर उकरो कर सेल्युलर लेवल में गन्ना भीतर में वो पानी है तो 80% गन्ना 80% जो आज एगो सब्जी के लेबा एगो भाजी के लेबा तो 80% तो कर में पानी रहेला तो आज वो पौधा के गन्ना पानी नहीं मिलता तो उकर जो किसी वजह से जड़ी जड़ी में से पानी आए तो वो जड़ी हुए पड़े तो खाइयो के आए ना तो आज जब पानी नहीं रही तो जड़ी नहीं सके ठीक से काम करे जब ठीक से नहीं सके काम करे तब पानी नहीं ले तो साथ साथ भी तब खाइयो के नहीं ले जब खाए के नहीं मिली तो जन पेड़ पौधा बाबरी कुछ ओकर पत्ता में वगैरह वगैरह में तो पानी कम दे
0: हाँ
1: तो देखभा ऐसे ही जब दिन के आज एगो पौधा के देखभा पत्ता देखभा तब मुझे लगा दया फेंक लेबा तो कौन चोला वो गन्ना जाने ला गर्म करता वगैरह तो उतना पानी नहीं जाता तो गन्ना ओकर जितना पो बाकर पत्ता में तब बंद कर देला वगैरह वगैरह प्रेशो अच्छा नालोजी बा हमने कहते टॉशो फेब बोला देखवा पत्ता मुरझाए लगेला टॉशो जब कोगे खोगल सीधा होगल अब एक कुंज सकेला हुई आज एगो पानी की सब्जी पौधा स्ट्रेसे हुई तो देखा जब स्ट्रेस रहला हम ये कहते जब मनुष्य स्ट्रेसे रहला तब भी अनेक प्रकार के बीमारी वगैरह होला तो पौधा के वही हाँ भैया एक को फर्क नहीं बातें जब हमने के सब्जी वगैरह स्ट्रेसे रहला तब भी देखबा बीमारी आवता तब भी देखबा जो पिलुआ नहीं रहा था पिलुआ के अटाके कराता था ऐसे होला
0: तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद अभी बात कर रही रहना जो स्प्रिंकलर्स कर इस्तेमाल होला हमने जानी ला जा ढेर आगे जो ओवरहेड इरिगेशन करत चाहत रहल आज तक ड्रिप इरिगेशन बातें अभी तक कितना हमने टेक्नोलॉजी संगे आगे बढ़ा था जाते और कौन कौन तरीका बातें जो उनसे जो खेतीहर हो जा वो लोग इन्वेस्ट सकें सा करें
1: स्प्रिंकलर अपने आप में एगो मारू चीज नहीं है अच्छा लेकिन जब देखिला जा कि जब पानी की कमी रहेला और जितना पानी स्प्रिंकलर में जाला तब झला की जान होता हाय एगो तो अब एक आध गो चीज़ का नाम है मिनी स्प्रिंकलर जैसे बोला माइक्रोजेट तो वो छोटा छोटा रहेला इसे इतना छोटा नटा रहेला और ऊपर में से जो पानी निकलेला एकदम से फिन रहेला
0: महीन
1: रहेला हाँ तो एगो जेट स्प्रे कहते जला लावा पे कहते जेट स्प्रे कहते चल जला तो वो लेकिन फैम में ज़्यादा तक किसान लोग सके ऊपर प्रयोग करे तो उसमें कमती पानी जला एगो एगो स्प्रिंकलर की तुलना से ऊपर में कमती पानी जाए अब ऊपर से कमती आज जाए पर तो सब बचा ड्रिप इरीगेशन के अपना है तो ड्रिप इरीगेशन में कौन खेती करता है ओकर पर निर्भर रही लेकिन ओकर में जो लॉस रहेला ड्रिप के तो ओकर में एक आध गो एतवाल पर एतवाल कैसा 30 सेंटीमीटर के एतवाल पर या 60 सेंटीमीटर के एतवाल पे या एन मीटर एतवाल पे तो वहाँ पर ही गते गते है पानी निकला गुटा गुट ओकरे गुटा गुट गुट गुट गुट गुट ऐसे गिरते जला बूंद बूंद बूंद बूंद गिरते जला तब माटी में गते गते गते गते ऐसे ओके सिंचाई करेला एक अलावा और एगो सका बोले एगो दूसर टेक्निक बातें ड्रिप ही में गनाला लेकिन ड्रिप की तरह ये गुतागुत नहीं निकला ये जो लॉस रहेला इरिगेशन के वो ट्रांसपीरे होला
0: मतलब
1: या कैसे हमने जब श्रम करब जा एक्सरसाइज करब जा तो हमने ट्रांसपीरे होला सा अब सका सा मुँह से ट्रांसपीरे हुए हाथ से ट्रांसपीरे हुए हमने के दह ट्रांसपीरे होला ना तो हाँ जो चिवा है वो सब्र से ट्रांसपीरे होला चिवा के देखबा तो बुझाए गए एगो बूंद निकलता ऊपर नीचे कोते चिवा के बुतों बुत निकलते रहला तो वो एकदम से धीरे से निकलेला और कौन चोला कि शुरू से अंत तक गन्ना हो पन्या गन्ना गति का जब ट्रांसपीरे के निकलता तो गति गति गति मटिया के भी चले जाला तो एगो एगो नवा टेक्निक है हम मांग करते किसान लोग के अपनाए के खासकर जो मान जो जो खेती का तंत्र वो लोग के पौधा करीब में बातें या लेकिन फैन कर जो वो लोग खाते बहुत अच्छा रहा
0: जी और हमने देख लीजा कि कई जगह पर जो माटी वो सब बातें वो लोग पानी के स्टोकास कर एक लिपो

0: नियन करीला
1: हाँ तो एक आदमी फौजी बेचाला देखा एगो है नेचुरल और एगो है नेचुरल नहीं मानो ऐसे बनावल गलबा तो नेचुरल है हमी के गाय के फिमिया वो तो सबसे बेस्ट मॉइस्चर रिटेंशन एकदम बढ़िया करेला अब कभी कभार होला कि खेतीहर लोग के गाय के फिमिया नहीं मिलेला क्योंकि अब उतना लोग तो गाय के पोषण नहीं करते हैं तो ये लोग जा सकियन जा एगो बेचाला को लामूस कर लेते हम ट्रेडमार्क नहीं बोलब लेकिन जयन जा शॉप जहाँ पर दुकान में जब बेचाला तब बोलन जा ये गाछों के लामूस जनबा ओकर खरीदारी करे तब जरी लगे जब रुपाई के तंजा सकियन जा और लामूस वाले के वहाँ डाल दे
0: परी एक हला हमने अन्य लरीसा स्टूडियो में और दिखाई ले रह जा कि कैसे रहेला वो लामूस वा तेने सुन पानी में डाल के वो भीग जाला और दलबा तो वो कितना दिन ले
1: हाँ, बिल्कुल अब जब जब ओकर में जब लिमिचटी के संगे कॉन्टैक्ट रही तो जब कॉन्टैक्ट में हुई तो वो लिमिचटी के अब्सॉर्बे हुए तो वो गोंफले हो जाए मोटा जाए फूल जाए
0: जी
1: जब फूल जाए तो कुंच होल पन्या अब ओकर में बातें अब देखो जब माटी डिफिशिट हो जाए ओकर में पानी कम रही तो जन पानी गना लामूसा में गने कब्जा हो लहल अब वो निकल के वापस माटी में जाए ताकि जरी सकी ओकर प्रयोग करे ये भी है एक अच्छा तरीका बा अभी कैसे सुखारे के मौसम में बा तो खेतिहर जो खेतिहर लोग सकियन जाए एक भी प्रयोग करे
0: तो अभी हमने बात कर रहे थे अच्छा जब सुखारी आवेला खाली खुला मैदान में नहीं हमने ढेर जना अभी जो शेल्टर फार्मिंग वो करत हवन सा लास्या के इस्तेमाल कर लेलन तो हौजा परी जो टेक्निक बातें एरी गाछों के वो कैसे रहेला हमने देख ली सा ड्रिप इरीगेशन वो होला तो कौन फर्क बातें जब सुखारी आवेला तो
1: हाँ देखा बाहर जब बाहर में ओपन फील्ड में जब खेती बाड़ी होला तो थोड़ा तो सकी थोड़ा वर्षा भी हुई कैसे अभी सुखाड़ी के मौसम में ऐसा में थोड़ा वर्षा होता वो भी सकी मिले शेल्टर में तो नहीं मिले क्योंकि ऊपर में तो
0: प्लास्टिक कवर
1: डालवा ढाकल बाते दूसरा चीज एक वो चीज है बोला था शीत लाश्योर है
0: जी
1: है अंधारे जो गिरेला लाश्योर है शीत गिरेला तो में तो ढेर निमिचते रहला फाजिर के उठबा तो देखबा जा कैसे सब चीज़ भिन जलवाते पत्ता भिन जलवा जमीन भिन जलवा वगैरह वगैरह तो ओपन फील्ड में एगो आदमी जो ऑर्गेनिक मटर के प्रयोग करा था कैसे गाय के फिमिया तो जब शीत आवेला जब मटिया के छुएला तो क्योंकि खेत में माचा ऑर्गेनिक ढेर बा तो वो माचा ऑर्गेनिक बा वो शीत के कहना रिटेंशन मॉइस्चर के रिटेंशन करेला तब शेल्टर्ड फार्म में तो शेल्टर्ड फार्मिंग में इतना नहीं हुई क्योंकि शीत नहीं मिली ऊपर से तो ढंकल बातें तो हिया खेतीहर लोग के चाला जाने के कि जब शेल्टर्ड फार्मिंग में जब एवेसी करता हो जाके से ईद ओपनिंग बात है या फिर माटी में भीतर में खेती बाड़ी करता लेकिन शेल्टर्ड बातें तो तरह पानी के चाहेला पानी चाहेला और वो कारण जब जिस शेल्टर्ड फार्म करेला तो वो मोटा मोटा टैंक बगल में लगा हुए ला किसी 9000 लीटर तक कहना जो टैंक आया 5000 लीटर तक तो लेके डाल दे लेकिन आज इससे डूबे हुआ या इरीगेशन होगी थी पानी काट रहा था नदी में पानी सूखा था तब पानी कहाँ से तब ये कठिन हो जाला एक में चार गो रास्ता नहीं बातें कठिन हो जाला तो हम बोलते खेतीहर लोग के जितना खेतीहर लोग के लाशें या बातें तो वो लोग सबके चंगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करेंगे सबके चला रही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे के ताकि जितना हो सके पानी की सकबा ओकर ओकर स्टोकास करे हाई एगो दूसरा चीज़ है तो ईद ओपनिंग के सिस्टम में जब फेची गाशों होला यानी कि जब पानी जाता ओकर में ओकर ओकर फेची डीजा सब जाता फेची गाशों होता तो लगभग 20% वह पूसा जो फेची गाशों के पानी है यानी ओके बोल सा लीचे वो साग कोकोपीट में से निकल के जानूला
0: अच्छा
1: हाँ अब पर्यावरण खातिर भी नहीं अच्छा है तो एक आज मॉरिशस में एक एन मिलियन में कागे आज लाशे हुई तो आज हाई लीचे तो निकलत हुई अंगना में तो एन मिलियन लीट पानी लीचे के वो हमने के माटी में जाता हमने के एक्वीफेयर में जाता नापसू तेरह में जाता बिल्कुल नहीं अच्छा तो हम बोलती जितना कोई के लाशे है वो लोग के चेहरा हो जो लीचे बाकर रिसिक्लाज भी करेंगे रेसिक्लास अच्छे करियन सा फिल्टर करके तब फिर से हो 20% तब पन्या मिली ना अब ओकर में एगो तेने न्यूट्रियन बातें अभी सकियन जा ओकर से बाहर की सिंचाई करे या फिर ओकर एनालिस करके आज जनियन सा कितना कुंची बा तो सकियन सा ओकर में दूसरा खाद डाल के तब फिर से विदा कर दे

0: फैची गाशों का दिखाते
1: तो अभी जैसे जो समय से हमने गुजरत है ऐसा काफ़ी मुश्किल समय है जब सुखारी की बात करे थे ऐसा और जो क्लाइमेट चेंज हमने देखा था जब अब गर्म जब करेला था जस्ती गर्म कर रहा था ठंडा हाँ। उतना ठंडा नहीं कर लग है जो लिवे हुआ बातें पर हमने नहीं जाना सर आगे कौन चीज हुई पर चाहे ला हमने बोली ला सर मिचिगासों आदा प्लास

0: खेतीहर लोग अपन खेती बारी के पोथी से करियन जा
1: सकियन जा करी देखा कैसे कैसे बोलने सा खामा में इवापोरेशन ढेर हुला ता एगो खेतीहर सकी कैसे बोला सा शेड नेट लगाए जन 30% वगैरह लगभग ओकर से जस्ट 40% मैक्सिमम में ज्यादा नहीं नहीं तो डेवलप प्लान के जन डेवलपमेंट बा उबिगल जाए ता जे 30% के शेड नेट वगैरह जे मिली ता सकियन सा पोटो डाल के ता ओकर में लगा दे बाहरी में ता उसे का होए धूप जन रही वो माटी में ता उतना नहीं मारी ना
0: जी
1: और एक वो ठंडक रही तो उतना एवापोरेशन नहीं हुई ऐसा नहीं कोई टेक्निक सके ऐसा करे
0: तो अब धर ला इतना बीघा जमीन बात है एक बीघा दो बीघा तीन बीघा अब इतना कई जना अब पहुंच
1: अब एक कुत्ते कुत्ते हुला ना कैसे शुरू में बोलनी तो हमने जानी ला जा कि हर साल ये जो सुखारी है क्लाइमेट चेंज से बोला तो हम प्रभाव करता तो एक प्रिपेयरनेस रहेगा नहीं सकला एक निर्णय आज ले जा और उतना है विस्मय करे लेकिन गति गति चाहेला हमने के ऐसा ऐसा योजना अपनाए के जो हमने के जस्ती रेजिलियंट बनाए जस्ती प्रिपेयर बनाए हाई चाहेला करे के गति गति
0: प्लानिंग वा चाहेला हबिये से करे के जैसे बोले
1: जैसे कप्तास पानी के करे के रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब एक उते कुछ सुखारी चला अब रेन वाटर हार्वेस्ट कर
0: माने की प्लानिंग आगे से चाहिला सोच
1: अच्छा आप जेब टैंक खोजे आप जेब दालू खोजे आप जेब चियो खोजे ऐसे नहीं चाहिला ना चला वो प्लानिंग रह के प्रिपेयरनेस रह के जब ऐसे प्लानिंग कर दे बा जब ऐसे घटे घटे योजना आनबा तब अपने आप जैसे बोला सा लागे की जिराब जुनबा अपने आप तोहर अंदर में चलाए अपने अपन तोहर स्वभाव में चलाए कि हम कि चला ऐसा ऐसन योजना अपनाए के जब इस सका अपन खेती खेती बाड़ी निमन से करे सस्टेनेबल करे
0: तो जैसे बोले तो वह चाहेला सस्टेनेबल सोचे के आगे के इसके बारे में सोच के तो आवा जो सीजन आए होला बाटे प्लांटिंग सीजन जब बोला था ऐसा तो खेतिहर लोग के कौन चीज चाहेला करे के जब उ लोग बिया सब कीनत होवन सा जब नर्सरी स्टॉक स्टॉक उ सब उ लोग करत होवन सा तो हबी से कौन चीज चाहेला करे के
1: बिया पर हमें कुछ चीज बोलती जहाँ तो जन हमने सेमोस इब्रिड की खरीदारी करी ला जा गनला अब आम ऐसे मिलेला ना जितना दुकान बातें वगैरह में मिलेला लेकिन चलानी के जाने के कि समझे के चलानी के समझे के कि इस सेमोस इब्रिड जो बाहर से आवेला इब्रिड हो और एगो सेमोस इब्रिड जब मैं अपन पोटेंशियल फुलफिल करी यानी कि जो जहाँ पर बनल गल हल सेमोस बनावल गल बा पोजे कर गल बा तो वो बोले गन्ना हर एगो पौधा कैसे टमाटर के बाद चौरा 10 किलो मिली गन्ना इसे 10 किलो मिली तो ये पोटेंशियल 10 किलो मिले खातिन एगो सेमोस इब्रिड बहुत गन्ना अथी है ग्रीडी है बहुत रिसोर्स डिमांडिंग है तो चला ओकर सिंचाई ऑप्टिमल करेंगे ओकर खाद ऑप्टिमल करेंगे ओकर देख देख ऑप्टिमल करेंगे तब जाके तोरा हो 10 किलो मिली तो ई में अब कितना पैसा खर्चा करे तो कितना कुछ तोरा खेत आके देखे के कितना कुछ चला पिलुआ बीमारी वगैरह आवता तो चला ओकर देख रेख करे के लिपटे के तो ई में तो और खर्चा भी जाता पैसा जाता तो समय भी जाता हम खेती हर लोग के बोलती चला हमने के ऐसा सेमोस के ऐसा बीज के प्रयोग करे के जो यहाँ पर ही लोकल में अडाप्टे हो हमने जैसे बोला सा ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स हमने के अपन यहाँ के मॉरिशस के बीज कैसे लगभग जितना हमने के लिए गेम फिलहाल बाहर के है हमने के अपन करेला छोड़ के जाते हैं सर लंबा लंबा करेला रोपे हमने के अपन पिपंगाए छोड़ के जाते हैं सर इब्रिड पिपंगाए रोपे कोहड़ा भी हाइये में गुजरता हमने के अपन कोहड़ा छोड़ के जाते हैं सर इब्रिड कोहड़ा रोपे तो किसान के चला हिया के लोकल बा क्योंकि वो लोग अडाप्टे हुए सर वो लोग जाने लन सा कैसे ऐसा ऐसा सीजन में लिपटे के हमने के मौसम से लिपटे के अब एक किसान से कि बोले देखा हमके तो मनमार रोपे के तो नहीं मिला था तब ना जाके हम इब्रिड की नाता है तो यहाँ पर ही हमने के सोच में एगो प्रॉब्लम बात है समस्या बात है हमने की चला ऐसे नहीं चला सोचे के तोरा मना करता अपन से बीज निकालेगे देखा तोरा नहीं परत की नहीं के तोरा पैसा बहुत साथ तो एगो किसान जब रोपाई करता दिखाता अपन ओकर खेत में बीमारी नहीं बा तो जन सबसे अच्छा फल है निमन फल बात है तो क्योंकि चला छोड़ के ओके छोड़ दे के ओकर में से अपन बीज निकाले के ऐसे उसका कि फिर से लेके रोपे मॉरिशस में अनेक बहुत ऐसा हम अनेक मतलब बहुत सब्जी बाज जैसा बीज निकाले टमाटर के बाद जैसे लेकिन फिलौत के बोलने बातें है हमने के मिर्च के बातें सोचा कितना चीज की बातें एक आध गो चीज में हाँ कमती रहेला कैसे हमने के जो फूल गोभी भा वो गाना मौसम के आधार पर बीज निकाला और रोपाई वाला ओलिविया की
0: जी
1: तो आज उमय है कर बताई हमने के विंटर सीजन जैसे बुला सा सर्दी के मौसम में हो रही ना तब दूसरा सीजन में सर

0: हरी दे कभी मना नहीं बा मैं लेकिन और जन डिपेंडेंस बात है उत कमती होल और जन रुपए की बात अदापते बा वो मिला था रुपए की
1: और हमेशा एक चीज तू बोले हो वो प्रताप जी वो बोले रलन कि हवे चीज हमने खाए ला जो हमने पोजवा करी ला सा
0: हाँ
1: ये सबसे जस्ती अच्छा बात है
0: चाहे ला और हमने ऐसा नहीं कोई दौर से गुजरा था ऐसा जन ढेर कोई हम ही हम ही तो बोला तू हूँ बोले ला सब कोई बोला सब चीज महंगा होता हाँ सच्चे के सब चीज महंगा होता अब अनेक कारण है सब चीज काहे महंगा होला एगो कारण है जन हमने के पैसा बा ओकर जन मूल्य बात है वो गिरा था अब पैसा एगो काहे गिरेला अनेक अनेक कारण बात है एगो है हमने के जन डेवीज बात है वो कमती हो जाता क्योंकि हम की डेवीज पता बाहर आए पोता छोका दिन पे कर देखे तो देखा आज बीज के कमती है पोते कर अब जा आज फैचलीजा के कमती है पौधे कर अब जा ज़्यादातर कॉम्पोस्ट या फिमिया घरे यहाँ के फिमिया के प्रयोग कर अब जा पेस्टिसाइड कम प्रयोग कर अब जा वगैरह वगैरह तो हमने के डेवीज भी कम जाए हमने के जो इकोनॉमी वा वो रेजिडेंट हुई
1: तो चाहे ला जितना चीज हमने सकब सा पहुँचवा करे हमने लगे लोकली वो सबसे जस्ती अच्छा बात है आज की चर्चा कार्यक्रम हाइजे परी समाप्त होला हमने सुखारी पर बचा लीजा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी आप फागे के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर हुआ और हमने यही आशा करते हैं अभी सुखारी के मौसम बातें चाहेला पानी ज़ाया न करे के तो जितना पानी इस्तेमाल करत हुआ सोच समझ के इस्तेमाल करे चाहे वो इरीगाशों के हो पिए के हो खाए के हो आगोजाज करे के हो मुँह धोए के हो जो चीज करबा निमन से सोच समझ के ओकर इस्तेमाल करिया हमने की टीम डने से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम शुभ दिन
0: शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनी शाश्वताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस इस समय बारिश की कमी का सामना कर रहा है और आने वाले महीनों में इस कमी की भरपाई होने की संभावना कम है। मॉरिशस मौसम विभाग के अनुसार एल नीनो के और मजबूत होने की आशंका के बीच अक्टूबर तक सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का कहना है कि मॉरिशस को अब पानी के संरक्षण के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपायों पर विचार करना होगा। इनमें बारिश के पानी को जमा करने और संरक्षित रखने के लिए छोटे जलाशयों यानी मिनी रिजर्वोयर या का निर्माण भी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम के बीच बारिश के हर स्रोत का बेहतर प्रबंधन करना और उपलब्ध जल संसाधनों को सुरक्षित रखना अब पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। मॉरिशस बायोमास फ्यूअल एग्रीगेशन लिमिटेड की शुरुआत अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। ये संस्था बिजली घरों के लिए बायोमास की आपूर्ति, लॉजिस्टिक और भंडारण का प्रबंधन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बायोमास नीति के तहत कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की रणनीति को लागू करने में मदद करना है। शुरुआती चरण में सरकार बिजली उत्पादन में लकड़ी के चिप्स के इस्तेमाल को बढ़ाकर 10-15% करने की योजना बना रही है। ओमनीकेन कालाबाग बिजली घर लिस्कालिये में पहले से ही अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में इस क्रमिक बदलाव में योगदान दे रहा है। फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनी के नेगोशिएटर आत्मा शांतो ने आज सोमवार से राजधानी के कंपनी गार्डन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों द्वारा सामूहिक समझौते और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर यूनियनों के साथ बातचीत करने में कथित अनिच्छा का विरोध कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन नेता ने सरकार से मांग की है कि इस संबंध में एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट की समीक्षा की जाए ताकि सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिकों के अधिकारों को और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारिस्तान गणराज्य में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है जबकि 39 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूसी अधिकारियों ने इसे यूक्रेन में मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर हुए सबसे घातक एकल हमलों में से एक बताया है। हमले को लेकर यूक्रेन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये हमला निजनेकास्मक शहर में हुआ जो यूक्रेन की सीमा से 1100 किलोमीटर से अधिक दूर है। हमले का वास्तविक निशाना क्या था इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने हाल के दिनों में रूस में उन ठिकानों पर अपने हमले तेज किए हैं जिनके बारे में उसका कहना है कि वे यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए राजस्व और रसद सहायता उपलब्ध कराते हैं।

0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: के सितारे।
1: सोमवार 10 अगस्त घड़ी मिला लीजिए सपेर के 4:05। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और हर मंडे की तरह आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सो हाउ आर यू, आप सभी कैसे हैं? मंडे का दिन कैसे बीत रहा है? ऐसे आज के दिन की बात करें तो आज दिन भर में रह रहकर हमारी ओर तो काफ़ी बरसात हुई है। आप बताइएगा आपके यहाँ आप कैसे हैं, आपका मिजाज कैसा है, आपके यहाँ मौसम कैसा है। और अभी के लिए 2 घंटों का ये जो सफ़र है वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज जिन पर हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक इतने पॉपुलर एक्टर है, एक्टर तो है ही, साथ ही उन पर पिक्चराइज्ड फिल्में, उनके जो गाने हैं वो इतने कमाल के हैं कि क्या कहें। तो चलिए तैयार हो जाइए आपके सितारे के इस सफ़र में हमारे साथ रेडियो मनोरंजन पर अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। और कल 11 अगस्त को जन्मदिन मना रहे हैं 90s के सुपरस्टार्स में से एक सुनील शेट्टी। यस, 11th of August 1961 को ही वॉज बॉर्न। ही इज़ अ पॉपुलर इंडियन एक्टर, साथ में प्रोड्यूसर है, टेलीविजन होस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, और फिल्मों में जो इनका कमाल है क्या कहें, 100 से भी ज़्यादा फिल्में ये कर चुके हैं। और साथ ही अभी से लेकर 6 बजे तक खूबसूरत गाने आपके लिए हम चलाएंगे। तो चलिए बलवान फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

खूबसूरत गाने, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और है ना। तो चलिए, रेडियो मनोरंजन पर आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, सुनील शेट्टी जी का कोई गाना आप किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं तो बेशक आपका स्वागत है ऑन 5250-6200 पर। सुनील शेट्टी जो है, जैसे कि हमने बताया, 11th of August 1961 को इनका जन्म हुआ था, और इनके अगर शुरुआती करियर की दौर की बात करें तो इनका जो जन्म है वो साउथ में हुआ था, और इनके पिता जो है एक रेस्टोरेंट मैनेज किया करते थे, और ये जो है इनकी जो स्कूलिंग है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है, और फिर ये मुंबई आ गए थे, और जहाँ पर इन्होंने अपने हायर स्टडीज़ जो है पूरा किया, और अपने जो है बढ़ती उम्र के साथ जो है ये स्पोर्ट्स में भी इनकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ती गई। क्रिकेट में इनकी काफ़ी दिलचस्पी है, मार्शल आर्ट्स में जो है इनकी दिलचस्पी काफ़ी है। और यहाँ पर सुनील शेट्टी जी की बात करें तो बॉलीवुड में एंटर होने के पहले जो है ये अपने फैमिली रेस्टोरेंट में जो है अपना काफ़ी समय देते थे, और जहाँ पर ये है बतौर एंटरप्रेन्योर काफ़ी उभर कर भी आए थे। और सुनील शेट्टी जो है शुरुआती दौर में ये ज़्यादातर रोमांटिक के साथ साथ एक्शन हीरो के रूप में भी उभर आए थे। बलवान इस फिल्म से इनकी करियर की शुरुआत हुई थी, जो 1992 में आई थी। दिव्या भारती इनके ऑपोजिट नजर आई थी, और वहीं पर 1994 में ब्लॉकबस्टर मूवी मोहरा में ये नजर आए थे, जिसमें इनके साथ अक्षय कुमार थे, रवीना टंडन थी, और इनके एक्टिंग को बहुत ही सराहा गया था। You're listening to RM3 Radio,

0: के सितारे।
1: चलिए, सुनील शेट्टी जी के गाने इतने आइकॉनिक है, क्या कहे। गाने तो आइकॉनिक है ही, साथ ही इनकी फिल्में भी काफ़ी लाजवाब है। 90s के सालों में इन्होंने करियर की शुरुआत की थी और पहले ही दशक में इतनी बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी थी। बलवान तो थी ही, मोहरा अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर रही, गोपी किशन एक एक्शन कॉमेडी थी जहाँ पर गोपी किशन में ये डबल रोल में नज़र आए थे और इस फिल्म के काफ़ी डायलॉग्स जो है उस समय बहुत बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और उसी 90 के सालों में ही इन्होंने अन्य कई बेहतरीन फिल्में दी थी, जैसे कि वक्त हमारा है, अंत, दिलवाले, कृष्णा, बॉर्डर, बॉर्डर इस फिल्म को कौन बोल सकता है, और फिर विनाशक जैसी फिल्में। और 90s का जो साल था वहाँ पर मल्टी स्टारर फिल्में हुआ करती थी जहाँ पर ये अक्षय कुमार के साथ, अजय देवगन के साथ, अपने टाइम के बड़े बड़े सितारों के साथ नज़र आते थे। लेकिन हर एक सितारा, हर एक कलाकार जो है अपने आप में इतना काबिल होता था कि इनकी एक्टिंग को, इनके जो काबिलियत को जो है कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो चलिए, अभी के लिए टक्कर फिल्म की बात हो रही है। टक्कर ये जो फिल्म है ये भी इनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में रही है। टक्कर इस फिल्म में ये नज़र आए थे सोनाली बेंद्रे के साथ और इनका ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था।

0: के सितारे।
1: जी हाँ, दिलवाले फिल्म का ये जो गाना अभी आप सुन रहे थे, ऐसे दिलवाले इस फिल्म जो है, मेनली ये फिल्म जो है अजय देवगन और इसमें रवीना टंडन थे, लेकिन सुनील शेट्टी भी थे और उनका भी किरदार काफ़ी सराहा गया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में वो बहुत सारे जो ऐसे रोल्स निभाते थे जहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए होते थे या कोई एक्शन जो है हीरो के रूप में उभर कर आते थे, रोमांटिक कैरेक्टर ये निभाते थे। और रोमांटिक कैरेक्टर की बात करें तो कृष्णा इस फिल्म को कैसे भूल सकते हैं, कृष्णा इस फिल्म में ये नजर आए थे करिश्मा कपूर के साथ। और इस समय विजया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है नाइस सिलेक्शन और पूछ रही है कि झांझरिया ये गाना क्या आपने चला दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी चलाने वाले हैं और खास कर आपके नाम हम करते हैं। बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है और कृष्णा ये फिल्म का गाना बहुत सारे हमारे लिसनर्स का फेवरेट है, चलिए आप सभी के नाम ये गाना चल पड़ा। कृष्णा फिल्म से लिया गया झांझरिया, अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में ऑब्वियसली जो लवली सा तराना है पिक्चराइज्ड हुआ था सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आपके सितारे
4: चलिए यहाँ पर आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं और रेडियो मनोरंजन प्यार से आप हमारा साथ दे रहे हैं और आज आपके सितारे हम बात कर रहे हैं सुनील शेट्टी जी के बारे में. टुमारो 11th ऑफ अगस्त ही विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. सो इनके सभी फैंस की ओर से, इनके सभी चाहने वालों की ओर से इनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. जी हाँ, और यहाँ पर देखते ही देखते शाम के 5 बज चुके हैं. आपके सितारे के इस सेकेंड आवर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं और सेकेंड आवर की शुरुआत हम करेंगे धड़कन फिल्म के इस गाने के साथ जो साल 2000 में आई थी. इस फिल्म में इन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया था और इस रोल के लिए इन्हें जी सिने की ओर से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था. रेखा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही कि नाइस प्रोग्राम और कह रही हो सके तो धड़कन फिल्म का गाना हो जाए आपके नाम आपके बेटे अंश के लिए. पोंछिए से हमारे साथ जुड़ी हुई है और शिमला जी भी ट्रियोले से हमारे साथ कनेक्ट.

कनेक्टेड है, पूछ रही कि हैव यू ऑलरेडी प्लेड द सॉन्ग तुम दिल की धड़कन में, इफ नॉट देन प्लीज प्ले इट। बिल्कुल, अगला जो गाना है यही तराना है। तो शिमला जी आपके नाम, रेखा जी आपके सभी फैमिलीज के नाम, और जितने हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, ये गाना आप लोगों के लिए भी। सो नॉट टू फॉरगेट, हमारा नंबर है 5250620, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने डेडिकेशंस हम तक पहुँचा सकते हैं।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में इतने प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी जी की बात करें तो 2000 के साल जो है इनकी शुरुआत हुई थी धड़कन इस फिल्म से, और धड़कन ये फिल्म कितनी कमाल की थी, कितनी लाजवाब थी, ये हम भूल नहीं सकते। बॉर्डर फिल्म का गाना भी आपने सुना, बॉर्डर भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इस फिल्म में इनके एक्टिंग को भी खूब सराहा गया था। वहीं एक समय इनके करियर में ऐसा भी आया, एक शिफ्ट जहाँ पर ये मल्टी स्टारर फिल्में करने लगे और ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों में नज़र आने लगे। कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी इस फिल्म को कौन भूल सकता है। अक्षय कुमार जी के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है और हेरा फेरी इस फिल्म में अक्षय कुमार थे, साथ में परेश रावल थे। वहीं पर अन्य कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो ये तेरा घर ये मेरा घर, आवारा, पागल दीवाना, फिर हेरा फेरी, 1, 2, 3, दे दनादन, ये ऐसी फिल्में थी जो लोगों ने बहुत पसंद की थी। एक समय ऐसा था कि कॉमेडी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता था, तो कॉमेडी फिल्मों में भी जो है इन्होंने अपने किरदारों को बखूबी निभाया। और कॉमेडी फिल्म की बात हो रही है तो 90s के सालों में गोपी किशन इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। गोपी किशन ये जो फिल्म है इसमें इन्होंने डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में इनके साथ करिश्मा कपूर थी, साथ में शिल्पा शिरोडकर थी। तो चलिए अभी के लिए हो जाए फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम।

0: आपके सितारे।
1: इस समय काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति जी, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस समय। नमस्ते सुमी जी, आशा जानू को तेज से साथ दे रही है, नमस्ते आशा जी। मेरी माता जी सुनील शेट्टी की बहुत, सुनील शेट्टी को बहुत पसंद करती है। ओके, तो चलिए अगला गाना आपके माता जी के नाम हम करते हैं। जो गाना हमारे लिस्ट में है वो हम चलाएँगे आपके लिए और आपके मामा कुमारी और सभी जानू फैमिलीज़ के नाम। इस समय जो है शोभा जी भी हमारा साथ दे रही हैं, तो थैंक यू सो सो मच। और ऐसे भी सुनील शेट्टी जी के बारे में क्या कहे, उनकी फिल्में ही काफ़ी है जो बहुत

कुछ बोलती है ऐसे सुनील शेट्टी ने साउथ की फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है हिंदी सिनेमा के साथ साथ और अभी तक जो है हम इन्हें आए दिन फिल्मों में देखते रहते हैं रियलिटी शोज़ में देखते रहते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स को भी ये जो है काफ़ी होस्ट कर चुके हैं यानी कि बड़ा पर्दा हो छोटा पर्दा हो हर एक स्क्रीन पर हमने इन्हें देखा है और इनके जो है निजी जीवन की अगर हम अब बात करें तो इनकी जो है दो बच्चे हैं आतिया शेट्टी और आहान शेट्टी और इन दोनों ने भी जो है फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई है।

चलिए आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो सुनील शेट्टी जी पर था. टुमारो 11th ऑफ अगस्त ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. तो इनको इनके सभी फैंस की ओर से, सभी चाहने वालों की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. और दो घंटों का ये सफ़र लगभग समाप्त होने को चला, लगभग दो घंटों का. जी हाँ, क्योंकि इस आखिरी गाने के साथ जो है आप के सितारे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और आपका प्यार भरा साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दिल को हम दिल तो पागल है फिल्म का गाना नहीं चला पाएंगे, लेकिन विल्लोर शिनी जो है बर्थडे विश कर रही है संदानन को. संदानन आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विल्लोर शिनी की ओर से और पूरे परिवार की ओर से. और इस आखिरी गाने के साथ जो है हमारा आज का प्रोग्राम आपके सितारे खत्म होने को चला. लगभग 5:50 पर हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे किरण जानकी की प्रस्तुति में. उसके बाद एक भोजपुरी गीत होगा और फिर 6 जो है हम बढ़ेंगे समाचार की ओर. तो आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे रेडियो मनोरंजन पर. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार आप सभी को. हैव अ ग्रेट लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन.

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने बतियाब जा मैंग्रोव यानी मोंगलिया की विशेषता पर, मैंग्रोव के इकोसिस्टम के सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पिछला महीना 26 जुलाई के मनावल गल। मैंग्रोव जेके मोंगलिया बोलल जला, उस जमीन और समुंदर के बीच एगो लकीर एगो बाउंड्री जैसन काम करेला, जहाँ बहुत ही अद्भुत इकोसिस्टम पावल जला। इकोसिस्टम के मतलब है एगो ऐसन परिस्थिति जहाँ प्राकृतिक माहौल में जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहेलन सा, जेकर से अनेकों जीव जंतु पर्यावरण प्रकृति और मानवतावाद के फायदा होवेला। और दुनिया भर में तटवर्ती इलाका के जन समुदाय के खाना पीना के सुरक्षा होवेला, आजीविका और मानवतावाद की भलाई होवेला। और दुनिया भर में तटवर्ती इलाका के जन समुदाय के खाना पीना की सुरक्षा होला, आजीविका और मानवतावाद के भलाई होवेला। मच्छी और अन्य जल जीव के ई घर मानल जाला। खाली यही नहीं बल्कि मैंग्रोव प्राकृतिक तटवर्ती इलाका के सुरक्षा करेला सुनामी तूफान बाढ़ इरोजन और समुन्दर के पानी के ऊंचाई से बढ़े में रोके में। जहाँ मैंग्रोव बढ़ेला उ जमीन भारी मात्रा में कार्बन के पीले वेला और ये पृथ्वी के प्रदूषण से बचावेला, यहाँ पर जन प्रदूषण होता ओके घटावेला। फिर भी दुख के बाद बाकी मैंग्रोव ये पृथ्वी से बहुत तेजी से गायब होता, जितना तेजी से जंगल तबाह होता ओकर से 5 गुना जस्ती। मैंग्रोव अभी देखत ही जा तो दुनिया भर में लुप्त हो ले जाता और एकर से हमनी के पर्यावरण और हमनी के इकोनॉमी पर बहुत भारी खराब असर पड़ी। यूनेस्को के जो महानिदेशक हवन वो बोले हवन कि हमनी के मैंग्रोव जोन बा वो खतरा में पड़ गल बा और अनुमान बा कि 3/4 मैंग्रोव अब लुप्त होवे के कगार में बा और एकर पर निर्भर सब जीव जंतु भी खतरा में पड़ गल बा। यही खातिर यूनेस्को दुनिया भर में मैंग्रोव के सुरक्षा करता, एकर संगे संगे सब कीमती ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के भी सुरक्षा करता। बड़ा बड़ा प्राकृतिक पार्क, नेचुरल रिजर्व, विश्व विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व के जरिए मैंग्रोव मॉरिशस जैसन ट्रॉपिकल इलाका में बहुत आसानी से जमेला। और भले ही 123 राष्ट्र और इलाका में मैंग्रोव पावल जाला, फिर भी दुनिया भर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ई 1% भाग ही रिप्रेजेंट करेला। ये सब मैंग्रोव पर समुद्री जीव के अलावा प्रवासी चिड़ै, हरिंग, बांदर, कंगारू और मधुमक्खी भी आश्रित रहेला। यूनेस्को विज्ञान पर आधारित समाधान खोज खोज के ये सब मैंग्रोव के सुरक्षा करे पर काम करता। स्थानीय जब जो जीव जंतु बा उ लोग के बचावे खातिर और एकर पर सब कोई के सहयोग के मांग करता। सकब जा बोले कि 1 हेक्टर मैंग्रोव सकेला सड़क पर चले होला 2650 गाड़ी के कार्बन के आप सोबे कर ले हुए। और जे ई बर्बाद हो ले जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा खतरनाक रूप से ई पृथ्वी पर बढ़ जाए। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: You're listening to RM3 Radio Man

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: घड़ी मिलाती चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं।

सोमवार 10 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मॉरिशस को बारिश का पानी जमा करने और उसके भंडारण के लिए छोटे जलाशय बनाने जैसी ठोस उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एल नीनो की स्थिति के और गंभीर होने के साथ देश में मौजूदा बारिश की कमी में अगले अक्टूबर महीने तक कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। देश के ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमास की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के संचालन के वास्ते कुछ महीनों में

0: मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की लॉन्चिंग की जाएगी। मकसद है राष्ट्रीय बायोमास फ्रेमवर्क की सिफारिशों के अनुसार कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति लागू करने में मदद करना। पिछले साल स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मॉरिशस के छात्र 9 विषयों में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर रहे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आज एक खास समारोह का आयोजन हुआ। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि मॉरिशन छात्र दुनिया के बेहतरीन छात्रों को कड़ी टक्कर देते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी प्राप्त इबोला वैक्सीन एवेबो के मूल्यांकन को क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में प्राथमिकता दी जाए। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिशों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। देश के ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमास की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के संचालन के वास्ते कुछ महीनों में मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की लॉन्चिंग की जाएगी। मकसद है राष्ट्रीय बायोमास फ्रेमवर्क की सिफारिशों के अनुसार कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति लागू करने में मदद करना। शुरुआती स्तर पर सरकार बिजली पैदावार में लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल 10% से बढ़ाकर 15% करने की योजना बना रही है। लिस्कालिए में स्थित ओमनिकेन पावर प्लांट पहले से ही ग्रीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव में शामिल हो गया है। माधवी जगन्नाथ, गीता सुनारायण।
1: गन्ने की कटाई का मौसम पूरे जोरों पर है, ऐसे में बिजली केंद्रों को बगास से तैयार होने वाली बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाकर बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इनमें लिस्कालिए स्थित ओमनिकेन लाबाक बिजली केंद्र भी शामिल है। इसके जनरल मैनेजर ऋषि कपूर कहते हैं,
2: En termes de pourcentage, je dirais sur notre production annuelle.
1: वार्षिक उत्पादन 550 गीगावाट के करीब है। 82 गीगावाट बगास से आता है और बाकी कोयले से। हर साल ये बिजली केंद्र बिजली उत्पादन के लिए 2,00,000 टन से ज्यादा कोयला जलाता है। कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए ओमनिकेन ने 4 साल पहले अपने ऊर्जा मिशन में लकड़ी के चिप्स का इस्तेमाल शुरू किया।
2: Avec l'appui donc du gouvernement de la CEB.
1: सरकार और सीबी के सहयोग से कई इंसेंटिव्स कायम किए गए हैं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमने लकड़ी के मिश्रण का प्रयोग शुरू किया है। कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की ये रणनीति राष्ट्रीय बायोमास विकास नीति के तहत भी सुझाई गई है। सीबी के एक्टिंग सीनियर इंजीनियर जनेश किस्तु कहते हैं, कंसल्टेंट्स ने जांच पूरी कर ली है। ये देखा गया है कि बिजली केंद्रों में बदलाव लाए जा सकते हैं। एक नए स्टेशन से ये ज्यादा सस्ता है। इसे बदलने के बाद 4 तरह के बायोमास होंगे, स्थानीय लकड़ी और आयात की जाने वाली लकड़ी के मिश्रण, गन्ने के टुकड़े और बागास। इसी रणनीति का उद्देश्य आयात की जाने वाली लकड़ी के चिप्स का इस्तेमाल बढ़ाकर कोयले की खपत कम करना है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बायोमास फिलहाल कुल जरूरत का केवल 20% ही पूरा कर पाता है।
2: Nous procédons en deux phases. Nous finissons mettre en place une stratégie d'importation du bois. Nous commençons à importer du bois à la hauteur.
1: ये 2 चरणों में होगा। लकड़ी आयात करने की नीति कायम की जाएगी। 10-15% लकड़ियों का आयात किया जाएगा। दूसरे चरण में सभी बिजली केंद्रों को बदलेंगे और मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड संस्था की स्थापना की जाएगी, जो बायोमास के आयात के लिए समर्पित होगी। फिलहाल सभी संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है। 2035 तक ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने का सरकार का लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। छोटे टापू देशों जैसे मॉरिशस के लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनौती है।
0: श्रमिक संघ एफटीयू के नेगोशिएटर आत्मा शांतु ने आज से पोर्ट लुइस के कंपनी गार्डन में भूख हड़ताल शुरू की है। वे सामूहिक नेगोशिएशंस के लिए श्रमिक संघों से मिलने में कुछ निजी कंपनियों की हिचकिचाहट की आलोचना कर रही हैं। इस सिलसिले में आत्मा शांतु एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर फिर से गौर किए जाने की मांग कर रही हैं। एक बार फिर माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
1: आत्मा शांतियों ने इस सोमवार 10 अगस्त को

0: सुबह 11 बजे के कुछ ही समय बाद पोर्ट लुइस के कंपनी बाग में भूख हड़ताल शुरू कर दी। फेडरेशन डी ट्रैवायर यूनी के वार्ताकार ने प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियों द्वारा सामूहिक बातचीत से इनकार किए जाने की निंदा की है।
1: L'employeur passe dans les deux syndicats, impose bonne condition. Premier, bonne travailler, pas gagner droit, gagner augmentation de salaire. Je gagne, bonne mérite une crise. Trois quarts du temps, bonne travailler pénalisé. Je empêche le syndicat pour faire réunion sur le site de travail selon la législation. Mentalité de jour en jour, après changer dans le secteur. Du privé, bien que le gouvernement révise ça de la loi là, Employment Relations Act et Workers Rights Act, pour qu'ils travaillent à la justice.
0: आत्मा शांतो के इस कदम को मॉरिशस लिबरल कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। हनीफ पिगन चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को फिर से मजबूत किया जाए ताकि कामगारों के अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके।
2: संचालन को लेकर कुछ दिक्कतों के बाद फिर से गठित काउंसिल ऑफ यूनियंस अब एक नई शुरुआत करना चाहती है। पोर्ट लुइस में आज जीएसएआ के कार्यालय में लगी एक बैठक के दौरान नई संचालक टीम ने ट्रेड यूनियनों के बीच एकता मजबूत करने और सरकार के साथ बातचीत में कर्मचारियों की आवाज़ को ज़्यादा अहमियत दिलाने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। संताना पोंसिनो की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
0: कई वर्षों तक कामकाज में आई मुश्किलों के बाद अब कोंसेई दी सिंडिका एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस ट्रेड यूनियन संस्था ने नई टीम का गठन किया है और इस मंच को फिर से सक्रिय करने का इरादा जताया है, जिसमें कई फेडरेशंस और ट्रेड यूनियन संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करना और ट्रेड यूनियन आंदोलन को ज्यादा एकजुट होकर अपनी बात रखने में सक्षम बनाना है।
3: Penser tout grand changement qui est bien fait, il est bien fait avec les stakeholders, les syndicalistes. Parce que comment nous redire, nous réitérer encore, nous pas against, nous pas contre la réforme, nous accepter réforme. C'est ma réforme bien fait avec les syndicats. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui ne peuvent pas faire réforme, et dans l'affaire, il y a des affaires positives aussi là-dedans. Le conseil des syndicats est là pour soutenir toute bonne action des syndicats.
0: नई टीम उन बड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में भी फिर से अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है जो कामगारों से जुड़े हैं। ट्रेड यूनियनों का खास तौर पर कहना है कि उनके अनुसार किसी भी सुधार को सामाजिक बातचीत और कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बदलाव के साथ कोंसेई दी सिंडिका अपने काम को नई गति देना और ट्रेड यूनियन आंदोलन के साझा मंच के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है।
2: मॉरिशस अभी बारिश की कमी का सामना कर रहा है और आने वाले महीनों में भी इसी कमी के पूरी होने के कम ही आसार दिख रहे हैं। ऋतु विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि अगले अक्टूबर महीने तक बारिश सामान्य से कम होगी, क्योंकि एलनीनो की स्थिति के और गंभीर होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मॉरिशस को बारिश का पानी जमा करने और उसके भंडारण के लिए छोटे जलाशय बनाने जैसे ठोस उपायों का विचार करना चाहिए। मॉरिशस के दो विशेषज्ञ डॉक्टर, उत्कृष्ट पेशेवर अनुभव और एक साझा लक्ष्य, मॉरिशस में नेत्र चिकित्सा को और आगे बढ़ाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आंखों की बीमारियों की जांच, ग्लूकोमा के इलाज में नई टेक्निक, अत्याधुनिक सर्जिकल टेक्निकें और विदेशों से और विशेषज्ञ डॉक्टरों को मॉरिशस बुलाने की पहल, ऐसे कई प्रस्ताव आज दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सामने रखे गए। दोनों विशेषज्ञों ने पोर्ट लुइस की ट्रेजरी इमारत में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे मुलाकात की। फाइनेंस बिल और पेंशन सुधार आज दोपहर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्लेटफॉर्म को सेंसिकाल के बीच बैठक के मुख्य मुद्दे रहे। ये बैठक शातुजुरेजी में हुई। ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि फाइनेंस बिल को दोबारा संसद में सामने पेश कर उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने ट्रेड यूनियनों की चिंताओं और उनके सुझावों को संज्ञा में लिया है। पिछले साल स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मॉरिशस के छात्र 9 विषयों में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर रहे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने MGI मोका में आज एक खास समारोह का आयोजन किया। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि मॉरिशन छात्र दुनिया के बेहतरीन छात्रों को कड़ी टक्कर देते हैं। इस हफ्ते राष्ट्रीय सभा में यूथ पार्लियामेंट का

0: का पांचवां संस्करण लगेगा। इसमें शामिल होने वाले 76 प्रतिभागियों ने आज सुबह राष्ट्रीय सभा की स्पीकर की अध्यक्षता में एक ट्रेनिंग सत्र में भाग लिया। उद्घाटन के दौरान विपक्ष नेता और कई सांसद उपस्थित हुए। यूथ पार्लियामेंट का मकसद है नौजवानों को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना और उनकी बोलने की प्रतिभाएं बेहतर करना, साथ ही उन्हें लोकतंत्र और शासन के सिद्धांतों की बेहतर समझ भी प्रदान करना। अनवेल वुल्वे, याचना मिश्रा।
1: इनकी उम्र 14 से 23 साल के बीच है और एक सत्र के लिए ये प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद की भूमिका निभाने जा रहे हैं। सांसदों की भूमिका में ये सभी राष्ट्रसभा में अपनी जगह लेते ही अपनी आवाज बुलंद करने, अपने विचारों और मान्यताओं का बचाव करने और सबसे बढ़कर कानून बनाने वालों की भूमिका को करीब से समझने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुझे राजनीति का शौक है। मेरा मानना है कि युवाओं की आवाज, उनकी राय जरूरी है क्योंकि ये देश हमारा भी है। ये हमारे लिए एक मंच है अपनी राय देने का, मॉरिशस को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए। हमेशा से राजनीति में मेरी दिलचस्पी रही है। नौजवानों को इस मंच के जरिए ये मौका मिल रहा है। सभी युवतियों को मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। जी हाँ, भले ही इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन युवाओं की राजनीति में आज भी दिलचस्पी है। इसका प्रमाण है लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 76 युवाओं का चयन यूथ पार्लियामेंट के पांचवें संस्करण में भाग लेने के लिए किया गया। ये अनुभव उन्हें न केवल संसदीय प्रक्रिया को करीब से जानने का अवसर देगा, बल्कि उन्हें बहस करने, अपने विचारों का मजबूती से समर्थन करने और हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
2: Quand ils sont chez nous, surtout assis dans l'hémicycle, ils sont déjà dans leur tête.
1: यहाँ बैठकर ही वे जान गए हैं कि उन्हें कौन सी भूमिका निभानी है। आशा यही है कि वे अपनी सभी प्रतिभाएं दिखाएंगे और मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ राजनीति को भी अपनाएंगे। 13 और 14 अगस्त को हमारे युवा सांसद यूथ पार्लियामेंट के सत्रों में भाग लेंगे, लेकिन सदन में अपनी बात रखने से पहले उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। इसके लिए मेंटर्स के मार्गदर्शन के साथ उन्हें संसदीय कार्यवाही और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। इनमें पिछले संस्करण के प्रतिभागी और वास्तविक सांसद भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को संसद के कामकाज को समझने के लिए जरूरी जानकारी और अनुभव देना है और सबसे बढ़कर युवाओं की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का अवसर देना है।
0: इस साल के प्रथम 6 महीनों के दौरान नेशनल कैंसर सेंटर में कैंसर के 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। संकेत स्पष्ट हैं, ऑर्गन में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? हेरिडिटरी, अस्वस्थ जीवन शैली या पश्चिमी जीवन शैली जिसमें फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन शामिल है या फिर ज़्यादा कीटनाशक वाले उत्पादों का इस्तेमाल। विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी मोर्शनों में अलग अलग तरह से कैंसर की वजह बन रहे हैं। और इसी के साथ हमारी सहयोगी ने उनकी टीम ने नेशनल कैंसर सेंटर का दौरा किया, जहां फरवरी 2025 से अब तक कैंसर से जुड़ी 600 से ज़्यादा सर्जरीज की जा चुकी हैं। स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपराओं को आगे बढ़ाना। 15 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले लगभग 50 लोगों ने भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाने की एक कार्यशाला में भाग लिया। मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस पहल का मकसद मूर्ति बनाने की कला और मराठी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना रहा। इस पर कृष्ण सिचिया की रिपोर्ट पर गीता सोरेन का विवरण।
3: हाथों में मिट्टी लेकर सुबह से ही इन प्रतिमाओं को आकार देने का काम जारी रहा। धीरे धीरे हाथों के हुनर में निखार आता है और मिट्टी से आकृतियां उभरने लगती हैं। इलियाना पहली बार इस तरह की कार्यशाला में

0: भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना रही हैं। मिट्टी से काम करना आसान नहीं है। एक मूर्ति में कई छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। वहीं छोटे कियान दूसरी बार इस तरह की कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने में उनके पिता भी उनका साथ दे रहे हैं। इसे बना सकते हैं, इस बार अंदर से बाती लगाए हैं। पहले से सीखना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। बाद में मैं खुद अपनी मूर्ति बना सकता हूँ और अपने यहाँ पूजा कर सकता हूँ। दो दिनों तक चली इस कार्यशाला में करीब 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए वर्षों का अनुभव रखने वाले कृष्ण अप्पा मौजूद रहे। पचास वर्षों से गणपति की मूर्तियां बना रहा हूं। मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। इस कार्यशाला में मैं इन लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को खुद मूर्तियाँ बनाने का हुनर सिखाना और बाहर से आयात की जाने वाली मूर्तियों पर निर्भरता कम करना है। मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के अध्यक्ष धनीराव बिवाजी कहते हैं,
1: Nous avons vu en Saint-Eustache dans notre formation comment faire une murti, ce qu'on appelle environment friendly Ganesh murti, eco-friendly Ganesh.
0: हम लोगों को पर्यावरण प्रिय इको-फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाना सिखाना चाहते हैं। मराठी संस्कृति के अन्य पहलुओं को भी सामने लाया गया, जिसमें झांकरे भी शामिल हैं। ये एक पारंपरिक नृत्य है जो उत्सव के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य इन सांस्कृतिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी प्राप्त एबोला वैक्सीन एवेबो के मूल्यांकन को क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में प्राथमिकता दी जाए। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिशों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और उधर जोरदार चक्रवाती तूफान डॉल्फिन ने आज पूर्वी चीन पर प्रहार किया। भले ही उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई है, फिर भी उससे जुड़े बादलों के कारण काफी बारिश पड़ी है। सुरक्षा कारणों से वहां अलर्ट जारी किया गया है। बटे हैं अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर गीता सुनारायण के साथ।
0: हमारे इलाके पर सामान्य अस्थिर हवाओं का असर पड़ रहा है। आज रात बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। कल सुबह ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दोपहर बाद को पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। पूर्व में 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पूर्व और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:34 पर सूरज निकलेगा।

किसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी लुडोविक का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मोसलमा ओकीदे रोजबेल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी मरीराम पैदाशना बंधु और जिन्हें धर्मो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी बेटी सोना नरीराम के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। आउट ऑफ लिविंग लेन रुकुवान दुलोरेट क्यूपिप रोड में आउट

of Living Lane, Rue Couvent de Lorette, Cupid May, Ikiasi Sal, Ki 81 years old, Ki Shri Pulbihari Nikit Singh, Shri Pulbihari Nikit Singh, Jinhe Indar ke naam se bhi log zyada jante the, Ki mrityu ho gayi hai, Unki arthi, Kal subah 11 baje, Unke ghar, Rue Couvent de Lorette, Cupid Road se uthakar antim sanskar ke liye, Biga ki shamshan bhumi li jayegi, Cremation tomorrow at 11 a.m. Route 16, Providence, Kochimlitiame, Route 16, Providence, Kochimlitiame, Navasi Sal, K 89 years old, K Shivalaidon Kupama, jinhen Sami ke naam se log zyada jante the, ki mrityu ho gayi hai, unki arthi, unki beti ke ghar kal subah 9:30 baje, Brinda Kupama ke ghar, Providence, Kochimlitia se uthakar antim sanskar ke liye, Majin Kodivas ki shamshan bhumi le jaya jayegi, cremation tomorrow at 9:30 a.m. Balzac Street, Bois Marchand, Pamplemousses में, Balzac Street, Bois Marchand, Pamplemousses में, 25 साल के, 25 years old के, श्री बीडीसी क्रिस्टोफर अर्सन, श्री बीडीसी क्रिस्टोफर अर्सन, जिन्हें अर्सन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर Bois Marchand, Pamplemousses से उठाकर सबसे पहले La Chapelle de Bois Marchand गिरजाघर ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए Bois Marchand का कब्रिस्तान, फ्यूनरल टुमारो एट 2:30 p.m. अलीगढ़ मेबर्ग में 68 साल की 68 years old की श्रीमती मुनियामा वानापिली आपिया, श्रीमती मुनियामा वानापिली आपिया, जिन पैदाशी नाम लचेगादू और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके दामाद विश्वानंद रामाना के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बोलेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन टुमरो एट 11 एएम। डॉक्टर पेपेन स्ट्रीट बोबासे में, डॉक्टर पेपेन स्ट्रीट बोबासे में 68 साल के 68 years old के श्री लक्ष्मी विजय सुंदयाल, श्री लक्ष्मी विजय की सुंदयाल, जिन्हें शेखर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे La Chapelle Ardente de Mourat, Petite Rivière से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 p.m. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 11 अगस्त 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक बेलोम्ब और आसपास के इलाकों में सैमौता बेजुकाप में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल 11 अगस्त मंगलवार को दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हाइलैंड्स रोज में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल मंगलवार 11 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक गांबे और आसपास के इलाकों में गांबे जिम, WW अथॉरिटी रिजर्वर रोड और ले कैपिटन गांबे में भी मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सोमवार 10 अगस्त घड़ी मिला लीजिए शाम के ठीक 6:30 बज रहे हैं। हमारे सभी लिसनर्स का, हमारे सभी श्रोताओं का वेलकम है ऑन रेडियो मनोरंजन नई सोच। इस प्रोग्राम को लेकर मैं सुमी आ चुकी हूँ आप सभी का साथ देने के लिए, और ऐसे तो 4 बजे से हम आपके साथ साथ हैं, और अभी से लेकर फिर रात के 9 बजे तक ये जो सफ़र है साथ हम मिलकर हम बिताएंगे। और चलिए, जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को।

0: चलिए शाम का वक्त है, ऐसे में अगर हम कामकाज से घर की ओर लौट रहे हैं या लौट चुके हैं तो थोड़ा आराम करते करते हमारा साथ दे रहे हैं या डिनर की तैयारी करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं या तो फिर बस कहीं घूमने निकले हैं फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए हमारे साथ कनेक्टेड है, जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हैं आप सभी के इस प्यार भरे इस साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नई सोचे जो प्रोग्राम है अभी से लेकर 7 बजे तक चलने वाला है और फिर जो है 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो साथ देते रहिए हमारा ऑन रेडियो मनोरंजन टिल 9 PM।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

Nejsou. यकीनन ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी के इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखने का और जानने का मौका हमेशा हमें मिलता है। बस नज़रिया हमारा होना चाहिए कि हम ज़िंदगी को किस नज़रिए से देख रहे हैं। और ज़िंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। ज़िंदगी के हाँ कुछ पल होते हैं जहाँ पर चैलेंजेस होते हैं, कठिनाइयाँ होती है, लेकिन इसके पार ज़िंदगी अपने आप में बहुत ही हसीन है, खूबसूरत है। और आप लोगों का साथ मिलता है तो ये सफ़र हमारे लिए और भी खूबसूरत हो जाता है।

0: नई सोच।
1: यकीनन कहते हैं ना कि जिंदगी के सुर से सुर मिलाकर हमें चलते रहना चाहिए, और जिंदगी से कदम मिलाकर जब हम चलते हैं ना, तब जिंदगी का ये सफर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिंदगी

0: का हर पल हर लम्हा हमारे मुताबिक हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो माइंडसेट है वो भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी हम नेगेटिव बातें सोचते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में होते हैं और वहीं अच्छी बातों को सोचते हैं तो नेगेटिविटी दूर रहती है और अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हम करते हैं तो निर्भर हम पर करता है कि हम ज़िंदगी में क्या सोच रहे हैं क्या चाहते हैं कैसा चाहते हैं कहते हैं ना कि जो कुछ चाहते हैं वो हमें मिल जाता है बस हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए हमें अपने आप पर जो विश्वास है उसे कभी खोना नहीं चाहिए और लाइफ को और भी खूबसूरत बनाने की हर पल हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। चलिए हमारी भी यहाँ पर ऐसी ही कुछ कोशिश होती है कि यहाँ पर हम आए आपका साथ दें खूबसूरत गाने तराने आपके लिए चलाए और इन पलों को हम यादगार बनाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर और इस अगले तराने के साथ जो है नई सोच ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी आपकी मुलाकात वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जी हाँ हम आपके साथ रहने वाले हैं रात के 9 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन।
1: नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: मंडे 10th of August, घड़ी मिला लीजिए, शाम के 7 बज रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर दिलों की आवाज़। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर हम आपके साथ साथ हैं और साथ रहने वाले हैं रात के 9 बजे तक। सो दिलों की आवाज़ ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आपको पता है फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है जहाँ पर आपके डेडिकेशंस भी हम इंक्लूड करते हैं। सो कोई रोमांटिक सा तराना सुनना चाहते हैं, किसी के नाम करना चाहते हैं, बेशक यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे इन प्रोग्रामों से जुड़ते हैं और प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, गानों का सिलेक्शन आपको अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं आज का ये जो सफ़र है दिलों की आवाज़ का ये भी बहुत ही लवली होने वाला है आप लोगों के साथ। तो चलिए, देर किस बात की है, 4028070 है नंबर हमारा। यू कैन इवन सेंड योर मैसेज ऑन 5250620 पर। थोड़ी देर में विल बी लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज आल्सो। अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: चलिए जो भी आप कह रहे हैं यहाँ पर हम बिल्कुल उन्हें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके प्यार भरे डेडिकेशंस, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हुई है यहाँ पर दिलों की आवाज़ की, और इसे आगे ले जाते हैं और राइट अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। 15 अगस्त फिल्म का ये जो तराना है ये होगा कुमार सानू एंड अलका जी की आवाज़ों में दिल के करीब। तो चलिए जो गाना है जाता है सचिन जी आप के नाम पॉम्पलिमस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी गाने को हम आप सभी लवली लिसनर्स के नाम भी करते हैं जो इस समय हमें जो है सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं।

0: की आवाज़ की
1: आवाज़। चलिए देखते ही देखते यहाँ पर रात के 7:25 ऑलरेडी होने को है दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में। एक के बाद एक हमारे लिसनर्स और साथ ही इस समय हमारे फॉलोअर्स जो है टिकटॉक के पेज पर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं। जितने भी फॉलोअर्स इस समय हमारे इस टिकटॉक लाइव से कनेक्ट हो चुके हैं, आप सभी का स्वागत है ऑन रेडियो मनोरंजन। दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। दिलों की आवाज़ ये जो प्रोग्राम है चलता है हर रोज़ शाम के 7 to 9 के बीच, और जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, खूबसूरत गाने की जो है डेडिकेशंस कर सकते हैं। और अब बारी है इस अगले तराने की, और अगला जो गाना है खामोशी फिल्म का ये गीत होगा, और ये गाना खास कर स्वेनल आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से गाना जाता है आपके भाई श्रवण के लिए, आपकी भाभी कीर्ति के लिए। वी हैव अभिनव, खियान, नव्या, होल तिलक फैमिली जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, और साथ ही आंटी श्राम सरन। ये गाना खास कर आपके लिए भी इस समय स्विट्ज़रलैंड से हमें सुन रहे हैं। गाना जाएगा सभी राम सरन फैमिलीज़ के लिए भी। तो चलिए, जितने भी लोग मॉरिशस से साथ दे रहे हैं, जितने लोग विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे फॉलोअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इस टिकटॉक लाइव के ज़रिए, आप सभी का भी वेलकम हम करते हैं। एंड वी हैव ऋषि यहाँ पर। ऋषि जी नमस्ते, आपको यूके से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नीलिमा जी नमस्कार, थैंक यू नीलिमा जी फॉर लाइकिंग द प्रोग्राम। ऋषि सिंह बालगोबिन, यस, यूके से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड देन वी हैव राजीव उपाध्याय जी, कैसे हैं राजीव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो भाऊ, कैसे हैं आप भी हमारे साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच भाऊ। हाय कुसुम, हाउ आर यू। वी हैव लालचंद, आपका भी वेलकम हम करते हैं। ऑलराइट, अभी ना अगला गाना आपके लिए हम चलाएंगे, और यहाँ पर ये गाना चल पड़ा है, और यही गाना आप सभी लिसनर्स के साथ साथ हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम भी जो इस समय हमारे टिकटॉक से जुड़ चुके हैं।

0: दिलों की आवाज़।
1: चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हैं। 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, डिनर करते करते साथ दे रहे हैं आप सभी को पुनः पीछे हम कहेंगे। और अगला जो तराना है परदेश फिल्म का ये गाना होगा सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और साथियों की आवाज़ों में। और ये गाना खासकर वेदना जी आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से हमारे तमाम सुनने वालों के नाम, हमारे तमाम फॉलोअर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, साथ में भी

We have Tilak Kumar ji, we have Rajkumar Durga ji, Nizam Bahadur ji, aap bhi saath de rahe hain. Bilnua se Ramba ji hamare saath connected hai. Gana jata hai Ajay, Kavilesh, Isha aur sabhi Pritya parivar ke liye. UK se Sunny bhi hamare saath jud chuke hai. Thank you so much Sunny. Australia se Kursi ji hamare saath de rahe hai. We have Jagdeep, Rishi, Shobha ji Wakwa se hamare saath judi hui hai. Rumita ji, thank you so much. And then yahi gana jayega Rishi ji aapki aur se aapki lovely wife Devita ke liye and sabhi Balgobin parivar ke naam aur chaliye jitne bhi log connected hai. Thank you so much. We have Devins collection. Thank you. Agla gana aapke love Pranand ke liye. Aur chaliye, thank you Kusum is message ke liye. We have Manisha. Manisha, main bilkul theek hu. Umeed karte hai ki aap bhi theek hai. Agla gana aapki pyari beti Bhumi ke liye. और चलिए ज्योति जी जो गाना आपने मांगा है थोड़ी देर में हम इसे चलाएंगे जरूर. शवि भी हमारे साथ जुड़ चुकी है. हेलो शवि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक है. और चलिए परदेश फिल्म का ये गाना चल पड़ा.

0: RM3 Radio.
1: चलिए, बड़ा ही खूबसूरत सा तराना था, परदेश फिल्म से लिया गया। ऐसे परदेश फिल्म की बात करें तो फिल्म अपने आप में बहुत ही एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म के गाने भी कमाल के थे, शाहरुख खान थे, महिमा चौधरी थी, एक मल्टी जो है एक बड़ी सी स्टार कास्ट थी। और आज भी जो है इस फिल्म को कभी देखने का मौका मिलता है तो बड़े ही प्यार से हम सभी देखते हैं, है ना, और गानों को तो सुनते ही हैं। चलो, अभी के लिए अगला गाना गोपी किशन फिल्म से लिया गया, छतरी न खोल बरसात में। इनफैक्ट 4-6 जब हम आपके सितारे प्रोग्राम कर रहे थे तो कल 11th of August सुनील शेट्टी जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, तो हमारा आपके सितारे प्रोग्राम सुनील शेट्टी पर था, तो गोपी किशन का एक गाना हमने चलाया था। तो ये अगला गाना गोपी किशन का ज्योति जी आपके नाम जाता है। ज्योति लोबिन जी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। वीरेन कुमारी, ये गाना आपके लिए भी, मिस्टर कुमार हरंगी है, मनोज कुमार है, सरोज जी जो है फ्रांस से हमारा साथ दे रही है। वी हैव विषय, वी हैव अमृता, ऋषि गोपी, भगीरथ जी, उज्ज्वल जी, हर हर महादेव आपको उज्ज्वल जी, प्रवीण जी, जेवीना थैंक यू फॉर लाइकिंग द प्रोग्राम, माधुरी जी, माधुरी जी जैसे ही जुड़ी उन्होंने हमारे इस लाइव को शेयर कर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। शैलिंदर गिल जी, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। और जेवीना जी, आपने जो गाना मांगा इन अ वाइल, हम इसे ज़रूर चलाएंगे।

चले भाऊ आपका मैसेज हमें मिला। ऐसे हर कोई बिजी होता है आजकल, हम सभी ही बिजी होते हैं, फिर भी जब अपनों से मिलने का मौका मिलता है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि अभी के लिए हमारे अपनों से मुलाकात हो रही है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो के ज़रिए, और साथ ही जितने हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव के साथ कनेक्टेड है, आप सभी के साथ के लिए भी शुक्रिया।

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: चलिए प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज है मंडे और हम श्रवण मास में हैं और सावन के महीने का ये दूसरा सोमवार है। ऐसे तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है, हर कोई पूजा प्रार्थना में इस महीने को, इस मास को बिताता है। ऐसे में हर मंडे का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो इस समय गुलशन जी जो है इस समय गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं और कह रहे कि रास्ते में बहुत ही सुंदर सा कांवर भी इन्हें नज़र आया है। तो अगला गाना सभी शिव भक्तों के नाम, खासकर मामा प्रभा के लिए भी, सिस्टर दीक्षिता के लिए, आयशा के लिए, सभी भोला फैमिली के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच गुलशन जी। और इस समय आप हमारे टिकटॉक पर भी लाइव हमारे साथ कनेक्टेड है, सो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही गाना जाएगा प्रेशियस हार्ट यानी कि आयशा आपके लिए भी। युवराज राम गुलाम जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ कनेक्टेड है इसके लिए। एंड देन वी हैव कवि किशन जी, यही तराना आपके लिए भी हम करेंगे। सिमी अपादू जी, अगला गाना आपके लिए जाता है, खासकर दिनेश महतो जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं। नम्या जी, जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में हम इसे चलाने की बिल्कुल कोशिश यहाँ पर करेंगे। कवि किशन जी, आपकी वाइफ का बर्थडे है कल, तो आपकी वाइफ को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से इन एडवांस। और चलिए यहाँ पर इस गाने की ओर बढ़ते हैं। शर्मिला बुधन जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घूंघट फिल्म का ये गाना, चल पड़ा तू ही मेरा शिवा।
2: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: दिलों की आवाज।
1: चले भगवान शिव की कृपा उनके सभी भक्तों पर हमेशा रहे। और मंडे सावन का हमेशा स्पेशल होता है, बहुत ही कुछ अलग सा होता है ना। और सावन का महीना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। बरसात होती है, नेचर में चारों ओर हरियाली होती है और चारों ओर मानो कितनी पॉजिटिविटी होती है। मुझे ये महीना बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए कि सावन का महीना आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए अगला गाना दीप्ति गंडावरी जी आपके लिए। वी हैव मरिया बीबी, स्वीट एंजल, हांस चांद है यहाँ पर, करुणा है, दिनेश गोपी जी है, बेबो जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेविना जी, शायद आपने चांदनी फिल्म का जो गाना है उसकी रिक्वेस्ट की है ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। चलिए यही गाना अभी हाँ बस चलने ही वाला है। और आर यू लेफ्ट हैंडेड, नहीं रानी जी आपका गाना थोड़ी देर में हम ज़रूर चलाएंगे। यस जेविना, अगला गाना आप ही के लिए होगा। सुरजन जी कैसे हैं आप, दिल फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं शर्मिला जी, चलिए थोड़ी देर में हम इसे चलाएंगे। अभिषेक जी कैसे हैं आप, किरण पुरी जी वैंकूवर से हमारा साथ दे रही है, मोहम्मद अली जी उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक है। यस सर्दियों का मौसम है और ऐसे में गरम गरम चाय या कॉफ़ी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मानो, है ना दिल में हो तुम। शर्मिला जी ये कौन सा गाना है और कौन सी फिल्म का है आप हमें बताइए, हमें मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। अभी के लिए ये गाना आप सभी के नाम।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: चलिए दिलों की आवाज के इस सेकंड आवर में आप सभी लवली लिसनर्स का और साथ ही हमारे तमाम फॉलोअर्स का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज। ये प्रोग्राम रात के 9 बजे तक चलेगा और आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए आपके डेडिकेशंस के लिए शुक्रिया। और चलिए बरसाती मौसम है तो बहुत से लोगों को चाय और कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है शायद इस समय क्योंकि आपके मैसेजेस से हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलिए एंजॉय कीजिए गानों को चाय के साथ। वी हैव नंदा अपादू जी, राजा बिपन जी, माला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हेलो एम एन। एंड अगला गाना अनीता जी आपके नाम हम करते हैं। कयामत फिल्म का ये जो गाना है जाएगा आपके पूरी फैमिली के लिए जिस समय फ्लिक ऑफ लक से हमारे साथ कनेक्टेड है। आपकी ओर से गाना रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए थैंक यू सो सो मच। विमी जी हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद विमी जी आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और ये अगला तराना चल पड़ा।
2: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
3: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
2: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है
3: तो भुगतो।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए आपको भी शायद किसी की याद आ रही होगी इन गानों को सुनकर, तो किसी के नाम कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। और अगला गाना सत्यमेव जयते फिल्म का तराना होगा, दिल में हो तुम आंखों में तुम, किरण पुरी जी, गाना खास कर आपके लिए। गुलशन जी, इस समय जो है आज सावन का सोमवार है तो गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं, कह रहे कि उस ओर काफ़ी ठंड है, काफ़ी बारिश हो रही है, तो जितने भी भक्त उस ओर जा रहे हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि सभी भक्त जो है कुछ गर्म कपड़े अपने साथ रख ले, अपने साथ छाता भी रखे, और आप सबकी जो पूजाएं हैं वो संपन्न हो, आप सभी की जितनी भी विशेज़ है वो पूरी हो। चलिए गुलशन जी, आपकी ये जो यात्रा है ये भी सफल हो, ऐसी कामना हम करते हैं। प्रिया जी, अगला रोमांटिक सा तराना आपके हस्बैंड के लिए, ऐसे हस्बैंड का नाम आपने नहीं बताया चलिए कोई बात नहीं। अब्दुल रिशाद जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ए जे, थैंक यू, हमारे साथ आप कनेक्टेड है। अगला गाना आपके नाम और अंजू के लिए, ठीक है। उषा जी, आपकी बहन, ना एंजल जी, आपकी बहन उषा का बर्थडे है, सो एंजल जी की ओर से उषा को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। संजय यादव जी, गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला तराना आपके नाम जाता है जोरीदा जी, जोरीदा करीम बकस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? और किरण पुरी जी, अगला गाना आपके लिए प्रिया जी, आपके हस्बैंड का नाम है नितिन, तो चलिए अगला गाना प्रिया और नितिन आप दोनों के नाम, तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। ऑलराइट सनी, मौका मिला तो इस गाने को हम जरूर चलाएंगे। 3 रेडियो मन

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए ऐसा होता है ना कि जब हमारे लिसनर्स हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि कब प्रोग्राम शुरू हुआ और कब जो है देखते ही देखते एक घंटा ख़त्म हो गया, दूसरे घंटे में हम आ गए और इतनी सारी बातें, इतने सारे गाने, इतने सारे डेडिकेशंस, थैंक यू सो मच। हर कोई आजकल बहुत ही बिज़ी होता है, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी जो है हम बिज़ी है, बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। इस बीच आप समय निकाल कर टाइम निकाल कर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। माधुरी जी अगला गाना आपके लिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। यही गाना आयशा आपके लिए भी।

और ये जो गाना है इसकी फरमाइश आई थी रानी जी आपकी ओर से, तो चलिए गाना बस चलने ही वाला है आपकी ओर से सभी ज्यूसरी फैमिली के लिए। राधिका जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेशमा जी की ओर से गाना जाता है संजय के नाम। वी हैव सरोज, वी हैव याया, विकास, नाज अब्दुल जी जो इस समय फिजी से हमारे साथ कनेक्टेड है, इश्ना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो थैंक यू सो मच। वी हैव पूर्णिमा मोनिक जी जो इटली से हमारे साथ कनेक्टेड है, थैंक यू। थैंक यू किरण पुरी जी हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। ऐसे रेडियो के ज़रिए तो हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है ही, साथ ही इस समय टिकटॉक पर हमारे साथ हमारे जो फॉलोअर्स है वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सो रेडियो मनोरंजन के हमारे इस टिकटॉक पेज को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ऐसे जब भी यहाँ पर कोई लाइव होगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, ऐसे आसानी से आप हमारे साथ फिर जुड़ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन गोज टू राजेश एंड माया, आप दोनों के नाम बड़े ही प्यार से एक दूजे के लिए फिल्म का ये तराना आप सभी के लिए।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: चले होते हैं कुछ बंधन ऐसे, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बस अचानक से जुड़ जाते हैं। ऐसे रिश्ते जिन्हें हम कभी ढूंढ नहीं रहे होते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है, बस अचानक से कुछ लोग ऐसे हमारे साथ मिल जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए बदल कर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन उनकी बातें उनकी यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय से होते हैं, लेकिन वो कनेक्शन हम फील नहीं कर पाते हैं। चलिए, आपके भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा स्पेशल रिश्ता ज़रूर होगा जो हमेशा आपके साथ होते हैं। लाइफ में हमें शायद बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, बस थोड़ा सा किसी का साथ, कोई ऐसा जो हमें समझे, कोई बिना कहे हमारी बातों को समझ जाए, या जस जो कहे कि हाँ मैं हूँ, है ना। मानो आधी से ज़्यादा परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है, है ना। तो चलिए, ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और अगला तराना जो है यहाँ पर आशा जानू जी आपके नाम हम करते हैं, कुथित से हमारा साथ दे रही हैं, और गाना जाता है खासकर आपके मामा कुमारी के लिए। देन वी हैव नेफ्यू शुभम, ऋषभ, दीदी आरती है, जीजू राज है, सभी जानू फैमिली के नाम, NBC रेडियो की पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच आशा जी। और इस समय मरिया बीबी हमारे साथ जुड़ी है, एंजल संजना हमारा साथ दे रही है, वी हैव विमी, वी हैव एंजल, वी हैव विशाल, श्वेता की ओर से गाना जाएगा राजीव के लिए, प्रभा जी की ओर से गाना जाएगा आपके हस्बैंड के लिए, निर्मला जी हमारा साथ दे रही है, रोशन टेलर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वी हैव विजय कुमार, संगीता, साहिल, सभी बड़े प्यार से हमें सुन रहे हैं, हमारे इस टिकटॉक के ज़रिए हमारे साथ कनेक्टेड है।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: चले यहाँ पर हम भी आपके लिए हैं इन सभी खूबसूरत प्रोग्रामों को लेकर आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके मनोरंजन के लिए एंड देखते ही देखते रात के 8:32 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज काफ़ी ठंड है, बारिश भी हो रही है, तो ऐसे मौसम में आप अपना ध्यान रखिए और इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाना जाएगा रॉबी आपके नाम, सुरीनाम से हमारे साथ कनेक्टेड है। वी हैव ऋषि गोपी, राजीव गंगाराम जी, उषा जी, गाना आपकी ओर से रिया के नाम जाता है। हांसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यही गाना जाएगा बेटियों के लिए, बेटी करिश्मा और बेटी त्रिशा के लिए। दया हमारे साथ जुड़े हुए

0: है अगला गाना मंजुला जी आपके नाम और आपके हस्बैंड संदीप के लिए सभी कॉलेज और फैमिली के नाम सुनीता जी हाय सुनी कैसी है आप द नेक्स्ट वन गोज टू चंदा एंड सूरज आप दोनों के नाम नाइस हाँ चंदा भी है और सूरज भी है लवली सोनम सानवी जी थैंक यू फॉर लाइकिंग द सॉन्ग लाइकिंग द सिलेक्शन उषा जी अगला गाना आपकी बेटी रिया के नाम ऑलरेडी हम कर चुके हैं दीनू मोहिनी जी कैसी है आप ठीक है थैंक यू आते ही हमारे इस लाइव को आपने शेयर कर दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमानी जी एक गाना डाल देना प्लीज़ दुश्मन न करे दोस्त ने और इस गाने को हम चलाने की कोशिश करेंगे मौका मिला तो ज़रूर चलाएंगे शैला जी अगला गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड के नाम और ख़ासकर आपकी बेटी येशिका के लिए लाइफ इज़ अ स्टेज हाय अगला गाना आपके लिए भी एंड यही तराना हम रजनी जी आपके लिए भी करते हैं और सनी ये गाना आपके लिए भी हमराज फिल्म का तराना तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी
1: You're listening to RM3 Radio

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज। चलिए, आपके भी लाइफ में कोई होगा जिसके आने से आपकी जिंदगी बदल गई होगी, है ना। और चलिए अभी के लिए अगले तराने की ओर बढ़ते हैं। तरकीब फिल्म का ये जो अगला नगमा कहेंगे इसे हम, जगजीत सिंह जी और अलका जी की आवाज़ों में, किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख। ये खूबसूरत सा तराना जी आपके नाम जाता है, अफसाना जी आपके लिए खासकर आपके हस्बैंड की ओर से। 1 2 3 4 5 आप भी एक गज़ल सुनना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। और चलिए, जितने भी गज़ल के शौकीन हैं ये तराना उन सब के नाम हम करते हैं।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: चलिए कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर मानो हम एक अलग ही हमारा जैसे मूड बदल जाता है ना। ये गाना कुछ ऐसा ही था, कच्चे धागे फिल्म से लिया गया है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढूंढना। और चलिए इस समय फिनिक्स से रिहाना हमारा साथ दे रही है, कह रही कि ठंड इतनी है कि ब्लैंकेट के नीचे नीचे घुसकर रेडियो को सुन रही है। चलिए अगला जो गाना है सैनिक फिल्म का तराना होगा, खासकर आपके नाम करते हैं रिहाना जी। और इसी गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात जो है ये भी ख़त्म होने को चली। जी हाँ, जाते जाते ये आखिरी गाना हमारे तमाम सुनने वालों के नाम जिन्होंने आज भी इतने प्यार से हमारा साथ दिया दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में, और साथ ही हमारे उन सभी फॉलोअर्स के लिए

0: जो हमारे टिकटॉक लाइव से जुड़े आपके मैसेजेस के लिए आपके डेडिकेशंस के लिए आपके कमेंट्स के लिए चलिए आपका प्यार हमेशा यूं ही बरसता रहे ऐसी उम्मीद हम करते हैं और इसी गाने के साथ हम आपसे विदा लेंगे 9 बजे जो है आप सुन पाएंगे यहां पर रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रसारण और जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी यानी कि कल हम आपसे मिलने आएंगे दोबारा सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही रेडियो मनोरंजन से जुड़े रहिएगा हमारा साथ देते रहिएगा बट बाय बाय गुड नाइट आप सभी को अपना ख्याल रखिए
1: You're listening to RM3 Radio Man

0: रात के 9 बज के 1 मिनट होता है दूसरा तो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक

0: the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा

सब संगतियों के नमस्ते यह तो है मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी के दुगो रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस एएम मोड पर 819 पर और रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर 94.95 और 98.2 एफएम पर सबके के स्वागत बा हम है तो संगतियां प्रता और जी प्रताप सिंह और आज है लेंदी की रात लेंदी 10 अगस्त 2026 अभी से लेके रात के 11 बजे रे भोजपुरी तेर का नाच गाना धूम धरा का तो लोग के संगे संगे और हमने के लाइव प्रसारण चला था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर और ऑनलाइन पर भी हमने के सकत हुआ सुने साथ में हमने सकत हुआ देखे भी रेडियो मोशन के टिकटॉक पेज पर नो पर्सनल क्वेश्चन ऑन टिकटॉक पेज केवल गीत मांगे के प्रोग्राम गीत मांगे इधर उधर के कॉमेंट नहीं करिए वरना जानेला कि कैसे कम वॉच चलेगा ऑलराइट अभी तक गमत के रात बा और पानी तक खूब बरसता चला अच्छी बात बा पानी बरसता काल से खूब पानी बरसल दक्षिण में धे माना जगह में तो आशा करे जा कि हमने की जलाशय गते गते भर ले जाए कहे कि पानी की बहुत जरूरत बा हमने की हाँ कि नहीं तो चला शुरू करे जाए धमाकेदार प्रोग्राम के एगो धमाकेदार गीत के साथ और गीतवा गैले हवन शोभा रामचंद्र फकीर दुल्हन की दादी अब दुल्हन की दादी क्या बोलता है चल एक साथ सुन अब जाओ

हम तो नचते गए तैयार हैं और नचाओ अब सत लोग रात के 11 बजे रे टिकटॉक पेज पर भी जे को इनके संगे नाचता रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर भी संगत यारों कितना सप्ते हमने बोले आवत थे और आज भी बोले थे सर कि हमने के जलाशय में पानी की मात्रा कम हो ले जाता है दूसर बगल मोटा पानी बरसे के नाम नहीं करता स्थिति बड़ी चिंताजनक बा एक खातिर सीडी बलिए जनता से करजोर मांग करता कि पानी जाया नहीं करे के पानी गास्पिए नहीं करे के और आज लेन जी 10 अगस्त से नया नया जो नियम लागू हो बा हमने के देश में पानी के लेके तो बोलल जाता कि है जो नियम लागू है रिस्ट्रिक्शन आज लेंदी 10 अगस्त से नवंबर के महीना ले नियम रही ध्यान से सुनिए कौन कौन नियम लागू करल बा आज से धुआं नहीं रही रोबिने के पानी से गाड़ी धोए के पिसिन में धुआं नहीं रही पानी डाले के और धुआं नहीं बा कौचर से बरा बरा बाचिमो पावे या सीमा धोए के और इस सब नियम के अगर तू उल्लंघन कर बा तो थोड़ा परी सैकड़ों मील से देशों में लामान पे करे के और साथ में थोड़ा परी देशों फ्रीजों जाए के और ला पुलिस सीजन पुलिस जो है तो पुलिस विभाग करीबी से नजर रखा था कोनो भी व्यक्ति अगर इस सब नियम के पालन नहीं करता कोई वीडियो निकाल के फोटो निकाल के व्हाट्सएप पर विदा कर देला और तू पकड़ा गई ला तो हर खैर नहीं बा नहीं बोलिया नहीं बोली रही से नहीं बोलिया कि नहीं जाना था रात से लालवा जो है रेस्ट्रिक्शन आलवा कहे कि जैसे बोली सा कि पानी की मात्रा कम थी होता गजे बहुत सुखल जाता वो खातिर तो बोल दिया फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कौन कौन लालवा और बात से हाई लालवा चली नवाम के महीना ली ठीक बा आज से धुआनी बा रोबिने के पानी से गाड़ी बीस ये सब धो के पिसिन में धुआं नहीं बा पानी डाले के और धुआं नहीं बा कौचे से बड़ा बड़ा बाचिमो पावे या सीमा धोई के अगर तो ऐसा कर ला तो थोड़ा परी जुर्माना लामान पे करके और देजों फ्रीजों तो ऐसा काम नहीं करिए जिनसे प्रॉब्लम हुई है हमने की काम तो लड़के समझाए के अब समझदार के इशारा काफ़ी बा और भोजपुरी दरगाह प्रोग्राम में हमने ढेर कुछ अनले ढेर सेगमेंट बा खाना खजाना छोटी सी कहानी बॉलीवुड न्यूज़ और ढेर कुछ अन्य सा इस प्रोग्राम में तो लोग तो कि ढेर कुछ मिनट सीखे के भी और बेशक सक बजा टेलीफोन करे काट जाओ देवे जाओ वे स्नैक पर या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर सक बजा सेवेंस करके गीत मांगे अगला गीत कुना हीरा के गीत है मार ताली मार और है गीत वा चलावत ऐसा ये सब संग जा लोग खातिर जो हमने के साथ देवत हो जा और ढेर मना संग जा लोग बा चल बोलब जा मीधा जानतू गणेश वरुण किंग कंटुना उर्मिला हेमंत हुबोल निशा उचित उर्मिला फिर शर्मिला बुधन अनु शोभा साई केदू क्वीन ललिता पुनीत अभिरामी कैना बीना नूरान मनीषा और फिर है कि चली धनेश रामफल के नाम विजय नवजदी लवली रहमत

राजू दसजाद मिनेव फिर प्रियंका हवन फरजाना शेरपा सत्यो एंजल जस्बी बटरफ्लाई हरीश बिबास कोलिन शैलेंद्र साम दया आश भविष्टा रोजिदा कासाम हाइदा सबरीना अनसोफी संदीप फौदराम और हयोगी चलावप्स मंजू यादव बिकेश रोत चिवास किंग एंजल रोज कवि कविता मती जूलियन करिश्मा नारायण साहब हमने के साथ देवोथवन बहुत बहुत प्यार से और वीना वनाशा जीना है गीत और नाम श्वेता अभी राजेश जय माला कृष्णा कृतिशा देवन नदी वाला कैसे बात देवन नदी वाला एकदम गमट होता माला भी साधुवन आयुषी साधना चौतन फिर यूजर कैट यश प्रणाम बोलता लिवरपूल इंग्लैंड से हेलो यश नाजिया मारिलिन शौद जिब्रान शीला प्रिंसेस दिया बानु सुखिया और हयुगी चलावत ईसा वर्षा मोहेश कामाक्षी और हयुगी चलावत ईसा एगो संगठिया के सुकर्मा इंद्राणी सिबोरन खातिर सब सिबोरन परिवार कोच मिलते से ज्योति लोबीन है गीत हो नाम और फातम के साथ जो है और जितना कोई रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन सुनता है गीत लोग के नाम भी कुना हिराल के मार तारी मार से एक साथ सुने

Et quoi, mais qu'est-ce qu'il y a ici, ça qu'il a dit? 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, il y a Sobadis. Ziada, c'est Ziada, Sobadis, et quoi, mais ce qu'il a dit? Agar toi, soit ça tchade, hit, sagba, Sobadis, et dit, pas soit ce tchane, hit, onksiman, s'il n'est pas là, qui canne, s'il n'est pas là, qui caille, n'est pas là, pète, mais problème, bah, d'arrête, bah. तो कैसे को व्यक्ति सके जिए तो कोई नहीं सकला जाने कि कोई कितना साल जी पर जब ले जी अब से अगर अच्छा आहार एगो बैलेंस डाइट फॉलो करब से एक्सरसाइज करब से योग साधना करब से पूजा पाठ करब से शाकाहारी भोजन करब से तो सकेला सौ बरिस से सकब से जिए और हमने के धर्म ग्रंथ में वेद पुराण उपनिषद में लिखा गया बा एगो व्यक्ति के चेला सौ बरिस ले जिए के और अगला गाना आवा आवा दी बाबा और ये गीत खासम खास निचलावते इस संगत यारों खातिर और चाची ललित कुशल वंथयोले से चाचा आत्माराम चाची प्रभाव तीन वेल फ्रांसे रेहाना हसन अली जीवन फेनिक्स से जरी राजियाद बैन साइदा कोहिसा और सब हसन अली परिवार जीवन फेनिक्स से उनचा और बेशक कल मंगलवार 11 अगस्त के परिसितालु पंचम दिन मनावता तो बधाई और प्यार महारानी पापा साइलन नाना राजन मौसा मान मौसा युदेश मौसी करुणा चिकू मौसी कविता और सब मोहित परिवार और शिव परिवार अनमोल परिवार सितालु परिवार और दुरावा परिवार की ओर से परी सितालु के ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बा और है कि तो हमने चलाओ थे इस सब संग तैयारों खातिर जो हमने के दिखा था अभी टिकटॉक पर इंदिरा इंदिरा लावतन जी यह गीत त्यौहार खातिर राजेश शुगर खातिर खनल प्रकाश संगीता संगीता शिवदत्त है गीत और नाम और फिर अनिता लाल जी उनके साथ देवोत्थान बानु सुखिया तो हर बेटा के जन्मदिन बा ई दिमास के तधे मना प्यार आशीर्वाद देवेन नदीवाला गीतोरो नाम सकीना जफर अली है गीतोरो नाम टीना एसारी है गीतोरो खातिर ज्योति लोबिन भी हमने के साथ देवोत्थान बहुत बहुत धन्यवाद हमने के देखे खातिर और हमने के सुने खातिर भी और खनल प्रकाश हमने के साथ देवोत्थान और जितना कोई रेडियो मोशन से रेडियो मनोरंजन पर हमने के सुना था और टिकटॉक पेज और रेडियो मोशन पर हमने के देखा था तब बेशक अगला गीत धौर खातिर आवा आवा दी बाबा है गीतों के बाद हमने एगो गसा देव से तो लोग खाना खजाना सेक्शन में तेगो पेन एगो कलम एगो कलम या एगो पेन और एगो पेज एगो पास संभाल के रखे एगो जुली गसा देव से आजकल श्रावण मास से रहता ढेर कोई विजिटॉय खा के खाता तो शाकाहारी भोजन हमने गो जुली गसा देव से है गीतों के बाद

दरकार प्रोग्राम चले रहा रोज के लेंदी से लेकर जिमा से रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर एमबीसी रेडियो के दोनों चैनल पर एगो आएम पर चलेला एगो एफएम पर तो साइमल्टेनियसली दोनों पर चलता भी कार्यक्रम भोजपुरी दरकार और अब खाना खजाना सेक्शन में अनलाइन सर एगो रिसेट यानी कि व्यंजन आजकल श्रावण मास चलता पावन महीना बा पूजा पाठ हुआ था यज्ञ हवन हुआ था तो आज वो शाकाहारी भोजन ने सब भोजन हुआ है वियोलेट के चटनी तभी के आगे पुरानिया लोग वियोलेट बुई करके खाते लन सर आज वो चटनी बताओ अब सर तो तीन गो व्यक्ति खातिर वियोलेट की चटनी सामग्री है तीन निबर वियोलेट पाँच गो सूखा पीमा चार गो पुल डामुन एगो बड़ा प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट हरी धनिया के पत्ता करी पत्ता और तेल और नमक स्वाद अनुसार अब विधि की ओर जब व्योलेटवा के सफा से धो के टेम्पो में के भूई कर दिया दुगु जैसे सुफले करी तब ओके उतार दिया ओका लापू निकाल छील दिया फिर ओके को बोल में मिस दिया जोड़ी से बन हाथ से व्योलेटवा के मिस दिया तब बोलवा इनको ते डाल दिया अब उससे कढ़ाई में तसुन तेल डाल दिया गर्म हो के जब तेलवा गर्म हो जाए तब पीमा सेक डालिया प्याज लहसुन और अदरक के पेस्ट पोलदामुन अब लोके पकैया निमन से तो भाई पोलदामुन निमन से पक जाए कर प्याज लहसुन सब जोड़ी से तब ओकर में हाई वियोलेट के जो जैसे मिसले हवा ओकर में डलिया खूब मिलांजे करिया मिलांजे करके लाहो से करी पत्ता काहे पुले हरी धनिया के पत्ता निमन से आवाजे कर दिया और नमक स्वाद अनुसार डलिया तो सैंक मिनट ने पके दिया निमन से ढोंप दिया ओकर कुबेचिया से और 5 मिनट के बाद तोर वियोलेट के चटनी तैयार हो गए इस शकबर तू फाता से खाए नान से खाए रोटी से खाए या भात से खाए ये आलू के चटनी निखा लग रहा पर बड़े ही मज़ेदार बहुत स्वादिष्ट है तो याद रखिए वियोलेट की चटनी बहुत आसान है जैसे बोली है तो ज़रूर ट्राई करके बोलिया जाए हमने कि ऐसे तो कैसे बुझार आजकल श्रावण मास चला था पूजा पाठ हुआ था तो ढेर कोई बोला था कौन सी पकी भाई कौन सी पका आपसे लड़का लोग हों सक दाल भाजी का कहते कही बार दाल भाजी नहीं बा वियोलेट के चटनी यू सकबा बना दे आलू के चटनी लालू मसाला में

ढेर मान तकारी बा विजिटर यहाँ के है में पनीर डाल दी बा या बनान में मुटा दाल के चोरी से दाल भाजे बका दे ढेर माना शाकाहारी भोजन बोल बता भैया लिस्ट इतना लंबा बा कि काबल लिस्ट का वो समाप्त नहीं हुई तो अगला गीत चला अवसर जल्द सा गीता का जहा दहर की तो अगे ले वन और गीत चला था इस सत्संग हथियार के नाम प्रताप के उत्सव कर बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम रहेलन मिडलैंड संजय संदेश लोंग चिबुक राजा स्टीव माना नानो श्याम मंगल संजीव और सब मन्ना परिवार के नाम उदेश जसवा अगी तुहर महाराज कुमारी उदय धनी राम और सब परिवार राधा सी बालक बीता प्रशांत बेटी शिल्पा और दामाद देवी का राम गति अगीत तोहरो नाम चली बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई टिकटॉक पर हमने देखा था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने सुना था अगीत लोगों के नाम भी का जगोदेव बुद्ध हो सैंक पर टेलीफोनिंग करती रही रात के 11 बजे भी सुनम चाहे गीत गीता का जाधर की जुबानी जलसा

और हम प्रताप सिंह जबायला था जलसा था होवेला नाच गाना धूम धारा का भी होवेला रात की 9:40 ढेर कोई बोला था बड़ी ठंडा करता दक्षिण में कहा कर भैया अगर ढेर ठंडा करता तो गर्मा गर्म चाय या कॉफी पी लिया या गर्मा गर्म दूध बना

कि पी लिया। आजकल माइक्रोवेव है भैया, खाली को गिलास लिया, एक गिलास या पानी डालिया, दूध डालिया, मिलाउज करके दो मिनट में तोहर कॉफ़ी या चाय बन गल। और बेशक आजकल लड़का लोग स्कूल की छुट्टी में बात ढेर माँ बाप की सरदर्द बन गल वाले क्या लोग। हाँ तो माँ बाप लोग बता लड़का लोग सरदर्द बन गल, बता सरदर्द नहीं बने लड़का लोग के। MBC TV पर रोज के जोड़ी जोड़ी प्रोग्राम चलता है लड़का लोग खातिर, जोड़ी जोड़ी डिसानी में जैसे कॉटन में ऐसा फिल्म के वही ऐसा MBC TV पर रोज के आवेल है तो लड़का लोग सके MBC TV के आगे बैठ के डिसानी में देखे। अभी और एक सप्ताह बाद गमन करे के धमाल करे के बाद लेंदी से लिहान ले जिससे उच्च से लेकुल वापस है ठीक बा, यानी कि हाई एंड सेमेंट रगल बा। तब ऐसे मिनट के बाद लैंड जी लिज से ताए तो उस दिन उस तारीख के पहले लिखो जाए कभी और एक सेमेंट बैग गमट कर ला। तो MBC TV पर अच्छा अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है कालो खातिर, बॉन्ड सिने और है जो चेहरे तेरी बिजी रह रहा जिन्हें लोग खातिर है सब बा। और विषय कभी रात के 9:40 हो रहा था अगला गीत तोरा सुना वो जा चंद्रदेव जी बुधन के आवाज में करक करक बोली नहीं छा बोले के। और एक गीतवा चलाओ इस गाँवे के रतन निहाल खातिर, ओकर पत्नी करुणा, पापा विजय, सब निहाल परिवार के नाम, चाचा साइलेंट के ओर से बेटा जान माधव खातिर। और ये माधव और चाचा और भतीजा के जो रिश्ता है, माधव और साइलेंट जो है चाचा भतीजा एक दूसरे से बेहद बेहद प्यार करेगा। और माधव बोले रहा चाचा जान कब आओगे चाचा जान मेरे साथ खेलने के लिए, तो चाचा जान की जब समय तो जरूर जाए पर नेफ्यू जान लगे। अरे गीत चलाते इस मिस्टर अपाया, मिस्टर ओसाई, मिस्टर साजू, मिस्टर धर्म गंगू, वीरापन जी, टीना जीना, प्रतिमा, केट और सेंट SSS के सब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के रेक्टर ने के नाम। खड़क बोली ना बोलिया तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, करा बोली नहीं बोलिया, करा बोली बोलबा तो कोई के दिल तोड़ देला तो वो अच्छी बात नहीं है। निमन से बचिए या प्यार से बचिए, दो दिन के जिए के बाद काहे से थे कोई घगोट के बचाला। अरे प्यार से बचिए भैया है, कोई प्यार से बचिया तू भी प्यार से बचिए। नाचे गावो झूम हमने के संगे संगे रेडियो मॉर्चस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी का प्रोग्राम और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे लिए

और माधुरी दिल तोड़ दे रहे हैं, तो माधुरी के मतलब दिल नहीं तोड़िया हो दिल चोरिया। अब माधुरी के का दिल तोड़ दे लग बेचारा रोआ था, बोले माधुरी दिल तोड़ दिले। वो नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, माधुरी चल गल तो जाए दे, माधुरी चल गल तो दूसर को चलाई। रात के 9:54 रात के 9:55 होता तुम तो भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह सीतालू के साथ। और अब हमने तो लोग को कहानी सुना हो, अब सर कहानी में जोली सीख बा। कहानी के शीर्षक है जादुई मछली। तो बहुत समय पहले की बात है, समुंदर के किनारे एगो छोटा सन गांव रहल, और गांव में एगो ईमानदार मछुआ रहल, ओकर नाम रहल मोहन। मोहन रोज फजीर के उठ के समुंदर में जाता मच्छी मारे, और मच्छी मार के अपन परिवार के पालन पोषण करत हल। एक दिन जब मोहन गल मच्छी मारे तो ओकर जाल में, ओकर जाली में खाली एक एगो मच्छी आल। वो मच्छी जादुई सोना के रंग के रहल, और वो मच्छी बतियात हल। मच्छिया ओकर से बोलक, ए मछुआ बाबू तुमके वापस समुंदर में डाल दे, अंके नए खाइए, हम तो सब सपना पूरा कर दे। तू खाली बोला कौन चीज चाहत हुआ, हम थोड़ा सब कुछ देवा, पर तू हमके हमर समुंदर में वापस डाल दे। ईमानदार मछुआ मोहन मच्छी से बोलक, हमके कुछ नहीं चहला मच्छी, हम तो के फिर से वापस समुंदर में जात है, जा जा अपन परिवार लगे। मोहन वो जादुई मच्छी के समुंदर के पानी में वापस छोड़ दिलक, और जब वापस सांझ के वो घर लौटल तो देखत है ओकर घर झोंपड़ी नहीं बा, ओकर घर एगो आलिशान बंगला बन गल बा, एगो महल बन गल बा। घर में नौकर चाकर बा, ओकर पत्नी जरूरी से आबिये होल बा, घर में अच्छा अच्छा पकवान बनता, और बड़ा बड़ा बर्तन में पैसा सोना और चांदी। बस मोहन समझ गए कि सब उ जादुई मछली के कृपा और आशीर्वाद के कारण है। मन ही मन में उ जादुई मछली के धन्यवाद दिलक। उस दिन से मोहन के जिंदगी बदल गल, उस दिन से उस सबसे बड़ा रईस बन गल, सबसे बड़ा मिलियनेयर बन गल। तो संगतिया लोग कहानी के यही सीख है कि जिन व्यक्ति सच्चा ईमानदार और मेहनत से काम करेला, ओकर सीमा हमेशा खुलल रहेला, और भगवान कोनो न कोनो रूप में ओकर मदद करेला। अगला गीत जो रिसेंट गीत है मन करेला, रेवन कुमार और मीरा जी ने गीत गाए। रेवन पूर्णिमा फकीरा है गीत तोहर खातिर खास हम खास। एक वायो से हवन मोन, हेलो मोन कैसे समाचार, है गीत तोहरों खातिर चलावत ऐसा बहुत बहुत प्यार के साथ। और है गीत चली इंदिरा चिंताराम के नाम, ओकर सब लड़का सब परिवार खातिर। रंभा हवन स्विट्जरलैंड से, ओकर तीन गो बेटी, ओकर घरोला और सब परिवार के नाम। जानकी परिवार गुडलैंड से हवन। और है गीत चलावत ऐसा विमला के ओर से अशोक खातिर, और डॉक्टर अंजू उनके साथ देवन। हाय डॉक्टर, गीत तोहर खातिर तोहर फ्यांस के नाम। डॉक्टर पूनम भी उनके साथ देवत हवन, और जितना कोई की नींद नहीं लगाता था गीत तोहरो नाम। गीतवा गई लेवन रेवन कुमार और मीरा दीनू मन करेला।

हर कोई की जिंदगी में दुख सुख कहते जाते रहेला और जब दुख आवेला तो अपनी भगवान के चरण में जाएला सर तो अगर तू चाहत हो तो हर जीवन में दुख पीड़ा और कठिनाई सब दूर हो तो तू रोज सांझ फजर के वेद मंत्र के उच्चारण करिए वेद पाठ करिए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद गायत्री मंत्र पढ़िए जानल गायत्री मंत्र कौन छे ना ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि जो ना प्रचुदयात और वेद मंत्र के साथ साथ थोड़ा दान पुण्य के काम करिए अब दान पुण्य कौन सी है तू दिखाते हो गरीब व्यक्ति बा तू सकते हो एगो कपड़ा खरीद के दे या थोड़ा सुन खाना या कुछ भी अगर फाइनेंशियली सकते हो करे या कोनो भी रूप में एगो गरीब व्यक्ति के एगो बीमार व्यक्ति के सकते हो ऐदे करे तो ऐदे करिए ओके पुण्य कहाला तो जब तू पुण्य के काम करब वेद पाठ करब वेद मंत्र के उच्चारण करब फजी शान भगवान के ध्यान करब तो देखब तोहर जीवन में जितना ग्रह बा जितना प्रॉब्लम बा वो धीरे धीरे जाए तुरंत नहीं जाला सब प्रॉब्लम एक साथ नहीं जाए पर भगवान के अगर तू ध्यान करब तो देखब धीरे धीरे जुन है सब प्रॉब्लम दूर हो ले जाए और आजकल जैसे हम बोली श्रावण मास चलता श्रावण मास में वेद मंत्र के वेद मंत्र होला पूजा पाठ करी जा सर और एक तरफ शिव भगवान के भी पूजा होता और शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाई ला सर शिवलिंग के अभिषेक करी जा सर साथ में दूसर बगल जिन हमने वेद यज्ञ हवन कर दी सर घर में और यज्ञ हवन कला से घर और जुन पर्यावरण सब पवित्र होला चहला पूजा पाठ करके रोज के पूजा पाठ करके और लेका लोग कौन से में बात लेका लोग के सिखा या कैसे वेद मंत्र के उच्चारण कर जरा वेद मंत्र के ओकर मीनिंग कौन सी है वो सब चाहे लेका लोग के सिखाए के तो पूजा पाठ करते रहिए अभी

वन मास चलता तो चला जितना कोई व्रत धारण कर लगभग अभी देर कोई शाकाहारी भोजन करता पूजा पाठ में हुआ यज्ञ हवन करते हुए मिजिताश्रम में हवन योग साधना करते हुए तो जितना भक्त भक्त लोग श्रावण मास फॉलो करता अभी है एगो भजन तो लोग के नाम प्रस्तुत करते जा सब भक्त लोग खातिर ओम ओम रहे भजन हुआ तू सुन बजा कंचन और कंचन कुमार की आवाज़ में चले एक साथ सुनम जा ओम ओम और भगवान के दूसरा नाम है ओम

0: हरीश जी सकुजा कालका जी निवासी के सहयोग से आप तक आया, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद।
1: Continuous music,
2: RM3. 819 kilohertz, 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा

94.2 FM पर यह रेडियो मनोरंजन और 819 किलोहर्ट्ज पर यह रेडियो मॉरिशस दोनों चैनल पर सबके स्वागत करते जा और जी प्रताप सिंह के साथ भोजपुरी का प्रोग्राम रात के 10:08 हुआ था और गमटवा चलते रही रात के 11 बजे ले और हमने के रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सकबा जाए हमने के फॉलो करें और बेशक अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत मांगे और ये अगला गीत जो है मोनिका माय डॉलिंग ये हम नहीं बोला था नीरज गुप मधु बोला था और है गीत चलावते इस गीता के नाम हाय गीता नीता तोरा फिर निर्मल तोहालू बाबा तोहालू सब तोहालू परिवार के नाम तयाना है गीत और नाम मामून है गीत और खातिर वसीम पीर बोकस है गीत और नाम फातमा अवन न्यू ग्रोव से रोजीदा हाईलैंड से और मैं जबीन प्लेनवेट से

साथ में एक गीत चली आफेज के नाम लाविनिया सैंपिया से वंजा। हाय मनीषा, मनीषा नमस्ते, कैसी समाचार? रजा पठान गीत और नाम और एक गीत क्रिस्टिना खातिर एंजल सामिया रेखा ताका गीत और नाम और घासीलाल बैरवा है गीत और खातिर और टिकटॉक पेज पर देखो इनके साथ होता गीता दत्तू हेलो हरू अकमेद है गीत और नाम और गीता है मोनिका माय डॉलिंग अकमेद हरू भी उनके साथ होतवन और भाई आबू होन बाकवा से कर घरोली कर लेका और सब आबू परिवार के नाम और बेशक रजा पठान बोलता कई हाल हा कई कौन हाल बा हाल तो बहुत अच्छा बा भैया चला नाचे गावे हमने के संगे कमरवा डुलावे मोनिका माय डॉलिंग अब मोनिका माय डॉलिंग के बोलता ओके मोनिका माय डॉलिंग चले एक साथ सुने।

हम एक बात के मौके कर लें जब हमने के जिन पुरनिया दादी नानी लोग जिनके काफ़ी उम्र हो गल बा जब बोल के नमस्ते या प्रणाम बोल बा तो लोग बोले से जिया जिया के मतलब है जीते रहो एगो आशीर्वाद है तो हमने के चेहला अपन बड़ा आदमी लोग के प्रणाम करे के मान सम्मान करे के आशीर्वाद लेके है जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा चीज़ है कबो कबो ऐसे ने को परिस्थिति चलावेला जहाँ पर कोनो सीमा नहीं रख के ला पर जब बड़ा आदमी का आशीर्वाद रहेला वही हमने की बेज में से निकाले रहा तो हमेशा अपन बड़ा आदमी के राम सलाम करते रहिए और उनके आशीर्वाद पर लेते रहिए आखिरी जैसा छोकरी बाप रे बाप किस तू सुभाष के गावल गे तरगी चाहते से लकी वुमन की ओर से कर सब दूरार परि दूरा परिवार के नाम रहे नाल माटे लकी वुमन है गीत जयराज रानी अंतीश अंकुश स्नेहा खातिर भी सजील खान है गीतों नाम नीलेश अठल है गीतों खातिर साकुन सुभाष कटवल मारियो रोशन देवीना रामजग जयबाल है गीतों खातिर लकी गर्ल दिनेश हरी मांटी कुसुम वीवी आलिया सुरेश अजहर अशरफ और साथ में है गीत जुनहा एक्टिजेशन छोकरी है गीत चलावत है इस रजनी खातिर रजनी बहुत प्यार से हमने सुना था वन और हमने साथ देवत हवन बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जोगी नमस्ते है गीत तोहरो नाम एक्ट्रेस जयसन छोकरी पूर्णिमा फुकीरा है गीत तोहरो नाम

संगतियालों की दुनिया में कोई से कोई उम्मीद नहीं रखी है। दुनिया में कोई नहीं बा भगवान के छोरा की, जगह से उम्मीद रख बा वही धोखा दे वीरा। कहा कर बा भैया इंसान अकेले बा दुनिया से अकेले जाए। और हमने यहाँ यहाँ पर यार से अपन भूमिका निभाए, अपन भूमिका निभा दे वापस। जब हमने के गोल हमने के उद्देश्य पूरा हो जाए तब भगवान हमने के अपन पास बुला ली। हई जीवन के कठु सत्य है हों कि नहीं। तो ढेर को एक्सपेक्ट करेगा कि हम कोई खातिर कौन चीज़ करते हैं तो क्रोच हमारे खातिर कौन चीज़ करे कि ये ज़रूरी नहीं है। तू देखा तो तू सकत हो कोई खातिर कौन चीज़ करे तो दिल खोल के ज़रूर करिए। भगवान तोरा आगे तू बहुत कुछ दे। और अगला गीत आई लव यू बोलेला। हाँ मधु नीरज गुप मधु गीत गई हवन आई लव यू बोलेला। और एक गीत चलाते सर मुकेश कुमार खातिर रोशनी भुवनिया। हाय रोशनी हाय गीत और नाम रविराज बिचुक हवन लालमाटी से कर पत्नी स्वयं प्रभा कर बेटा प्रत्यक्ष कर माता जी और सब बिचुक परिवार के नाम मिस्टर गोली कैसे बस समाचार मिस्टर गोली। और एक गीत थोड़ो नाम अनु जय साई। और है गीत रजनी की ओर से डेजी के नाम मेरे होश के सबकर परिवार बा शिव बुदत परिवार कालीचरण परिवार। और फिर राज साहब के नाम जस्टिन गीत और नाम। और आकाश डांसर गीत और नाम सजीर खान गीत और नाम। और लकी वुमन की ओर से गीचरी जयराज रानी अंती शंकुश और स्नेहा खतेर। और हई गाना रवि दिनु साहब होन मोहताबा से कर पत्नी कर लड़का कर माता पिता और सब दिनु परिवार खतिर अगला गीत आई लव यू बोलेला दिनु देखिए अभी भौजी बिलना रखी थोर खातिर हैं कहीं के आई लव यू बोलते हो। रवि दिनु है गीत और पत्नी पूजा खातिर खासम खास। और रवि अपन पत्नी पूजा से बहुत प्यार करेरा भौजी। रवि बोलता कि और तुहर खातिर चांद तारा तोड़ के लाए और तुहर खातिर उसके अपन जान भी दे दे। तो भौजी रवि भैया के हमेशा सुखी रखिया और गर्मा गर्म फराता पकड़े ओकर खातिर। हाय लोबना गीत हो खातिर। और स्मिता उनके साथ वन बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहब हो ने गीतों का घर ली और कर दुगले का खातिर। और है गीत अच्छा अवधि से सब रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन के संगत यालों के नाम जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर दिखाता था गीत लोग के नाम आई लव यू बोलेला।

एगो कहावत है संगत कर जान के पानी पिया छान के दर्जनिया के घर से संगत करे तो जैसे संगत कर बा उसे ही प्रभाव पड़ेगा तोहर पर हाँ कि नहीं और यहाँ पर ही हमने है सत्य लोग के साथ देवा था इस रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर रात की 10 बज के आता हुआ था अगला गीत हम पहली सिंदूर सजन देखे दूर से सुम्बावती दुमन गीत वगैरह वंचित्रा और ज्ञान विश्राम खाती रहे मोदल बे मोहता बाकी कमला जी खातिर कुछ चीज़ ऑफ आरोही खातिर है गीत छी करीता हमने के साथ दे उठन मिलियोने हमने के साथ दे उठन मालिनी विश्राम हेलो और मिलियोने बोलते शादी से पहले तक कितना मीठी मीठी बोली बोला जला अरे मर गाते अरे मर खाजा अरे मर शेरी शादी के बाद ही सब मुँह कहीं कहाँ उड़िया जला खोची पड़ते जला कि कहाँ उड़िया जला शादी के बाद खाई झगड़ा ना छोटा छोटा बात में झगड़ा तो पति खाली शिकायत कैला तकारी में नमक दस्ती बा तकारी जरगल बा तो ढेर तेल जल दे हुए तो पत्नी बोलेला तू देरी से आवेला को चक्कर बा तुहर बाहर में बाप रे बाप शादी से पहले इतना गाते इतना प्यार शादी के बाद इतना झगड़ा काहे शादी कर लहू बोले तो शादी नहीं छान करेगी ना शादी के लड्डू जो खाला वो भी पछताला जो ना भी खाला वो भी पछताला और मिनियो ने तो बड़ा जोर हंसता बुझाता हुई सबसे गुस्सल बा का कर बहो महिला लोग के नीचे हर शक करे के जब पति देर से आए तो किफे ओपान फॉर्म पोटा किफे ओपान फॉर्म कॉल है मुझ पर सुनू मुनावी मिसाज में मिसाज कहीं नहीं रिपोर्ट कर ली अब पति बोली है तकारी पकड़ दे वे तकारी जरा दे

वे इतकारी में इतना नहीं मकबा। अगला गीत हम फिर सिंदूर रीता की ओर से गीत चली कर सब परिवार के नाम बहुत बहुत प्यार से, और है गीत हनी चलावत इस अंजनी के नाम इंदिरा लौटन शोभा पॉम्बले मुसेवन शोभा वाकवा से प्रेमिना काठबोन से, और हमने के साथ ढेर कोई देवता संध्या हवन जा साकुन भी बहुत जोर से हंसा था वो जाना था हम का बचा था। रोशन भाई वो भी बड़ा जोर हंसा था। असलम चिबस गीत हो रो खातिर अब सजन काहे दूर से दिखा था बलमुआ जब पत्नी सोला सिंगार करा था रागरास के आगे तब कर बलम कर भीरी नहीं बा वो दूर से ताकत है बोला था ये बुढ़िया काहे से जोरी से आबी हो के कहाँ जाता हो कहीं कर कोनो चक्कर तो नहीं बा। चल एक साथ सुने गीतवा हरे गीतवा चाहते कनाडा में जितना मोरिशन दोस्तों बाँ पर ही और भी ढेर कोई मॉरिशस में आलोन सा दीपा तिवारी दुखित तो कर घरोला केबिन ओकर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम तिवारी परिवार अवन साइडिंग रोड निग्रोव से गेट हो खातिर तीना बुदना तोहर पति रोशन तोहर दुग बेटी और तो सब परिवार के नाम शिरीन राम जो ने गीत हो खातिर और राफिक मोहित तयाक से अवन है गीत तोहरो नाम

इतने सब कोई जान जा सके सर्दी के मौसम में छेना विटामिन सी वाला ढेर मना फल खाए के जोन फूल में जैसे विटामिन सी बा वह जोरंज लीमों नींबू और पॉम्प्लेमूस जैसे पोमेलो भी बनी रहा और ऐ जोन पॉम्प्लेमूस है कैसे दवाई भी बनी रहा तो पॉम्प्लेमूस कहे छेना खाए के तो इकर में ढेर मना तत्व तो बैक में विटामिन सी बा और ऐ जोन विटामिन सी है हमने के प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्य में मदद करेगा शरीर में माफ करिए कोलेजन बनाने में मदद करेगा और आयन के आविष्कार भी करेगा और पॉम्प्लेमूस में आहार फाइबर है एक में फाइबर बात आई डाइजेशन में हेल्प करेगा जो व्यक्ति लोग अगर खालन सर के खाए के नियमन से नहीं पचे रहा तब खाली बरात के भोजन कर लेबा तैगो पिथी भूत पॉम्प्लेमूस खैया तो मदद करी खैवा के पचाई के फिर कर में कार्बोहाइड्रेट्स और प्राकृतिक शर्करा भी भा और पोटाशियम भी बाय कर में पोटाशियम शरीर के आवश्यक है ये सब मांसपेशी हमने के नस और शरीर के सामान्य द्रव्य संतुलन में मदद करेगा एंटीऑक्सीडेंट बा पॉम्प्लेमूस में और ये हमने के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला और पॉम्प्लेमूस में पानी भी बा तो ये पानी हमने के शरीर के शीतल रखेला और पॉम्प्लेमूस कैसे चना खाएगी सकबा के छील के थोड़ा सा नीमक डाल के सकबा खाए या पॉम्प्लेमूस इसनो सकल जरा खाए या पॉम्प्लेमूस के रस पॉम्प्लेमूस के जी बनेला अगर तो लगे मिक्सर बा तब पॉम्प्लेमूस और जोरंज दोनों डाल के नीमन से ओके मिक्स कर दिया तब को वे में डाल के पिया ये अच्छा है पॉम्प्लेमूस हमने के जितना हमने के लिए कुमें जो घा है कोलेस्टेरोल और फाटसा ओके दूर करेला और हमने के हृदय खातिर हमने के दिल जो ऑर्गन है जो खून पॉम्पी करेला ओके मदद करेला खून पॉम्पी करेगी तो ज़रूर अगर बाजार जेबा जा कबो तो पॉम्प्लेमूस जरूर किन्या या फिर पोमेलो वो अच्छा है स्वास्थ्य खातिर विटामिन से तो और पुआ भी कंट्रोल करेला जो आदमी ओबेस बा मोटा बा उपतरा करेला तो और खून के संचार के भी अच्छा रखेला और ऐसे में चल अगला गीत सुन जा राजकमल चिंतामणि की आवाज़ में हाय रवि बंगारू नमस्ते है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी करुणा तोहर बेटा रायन खातिर अंशिका है गीत तोहर नाम अंजनी बंगारू राजा सुल्तान निसार बिन के साथ देवथन बबीता बुलाकी नमस्ते दीपक देवी दयाल बाबू सोना श्रीन रामचोन और साकुन भी हमके साथ देवथवन बहुत बहुत प्यार के साथ अंजनी बंगारू और फिर जितना कोई नींद नहीं लगता तो बस हमने यहीं से यहाँ पर ही तो लोग के साथ देखा थी रात के 11 बजे रे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम हमारी भोजपुरी प्रोग्राम की ढेर कोई सुनेगा ऑनलाइन बाई लॉगिंग ऑन द वेबसाइट www.mbcradio.tv फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मॉरिशस या फिर रेडियो मनोरंजन प्लीज़ है प्रोग्राम में जो है टिकटॉक पेज पर खाली SMS करके कॉल नहीं करेंगे प्लीज़ हम मांग करते वरना हम के पर टिकटॉक बंद करेंगे रवि भैया प्लीज़ खाली गीत मांगने जाए बहुत बहुत धन्यवाद समझदारी खातिर और चल अभी अगला गीत जैसन लामू के खातिर चलावते सर महेश चौधरी हेलो रक्षिता है गीत और नाम बहुत प्यार के साथ और

जितना कोई अस्पताल में बा क्लिनिक में बा और हमने की सुनता था गीतरो नाम और जितना कोई भी रात के काम करता नाइट शिफ्ट में अस्पताल में क्लिनिक में पुलिस फोर्स में मेट्रो स्टेशन में कॉल सेंटर में जहाँ कहीं भी तू काम करते हो सिक्योरिटी गार्ड्स लोग देखो बुलोंसरी में काम करता भी रात के रात भर गर्मा गर्म रोटी पकड़ से का फजर के सबके पैमेज़ और बागत मिली खाई के उस सब संगत यारों के बोंकुआज और जितना कोई जितना ड्राइवर लोग काम करता फिर हवन बनुमाली भाई हेलो सासी बनुमाली है गीत हो खातिर और जितना कोई रात के काम करता है गीत तो लोग के नाम जोश में आके आगे पीछे राजकुमार चिंतामणि की आवाज़ में रवि बंगारो एक गीत खासकर तो हर खातिर

संगत्यालो घाई गीत के संगे बरकी मसाला पिसेला क्रिश श्रीदोय के गावल गीत के साथ भोजपुरी का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त होता हमने की देखला टिकटॉक पर हमने की रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशन पर सुन ला तो लोग एसएमएस फोन कॉल्स खातिर शुक्रिया रात के 9 बजे से अभी तक हमने के साथ देखा थी शुक्रिया करम मेहरबानी हमने की तलों के मुलाकात हो जब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे ले रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम रही मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना तब तक हमने की इजाजत दे और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते शुभ रात्रि बाय बाय

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। तो दोस्तों, सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं। एक कप चाय, बारिश की बूंदे या बैकग्राउंड में बजता कोई पुराना बॉलीवुड गाने। जी हाँ, आज हम आपको वही सुकून देने आए हैं। तो आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत गीतों का आप मजा ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है लेकिन पुराने गाने कभी अपनी चमक नहीं खोते हैं उनमें वो सादगी है वो जज्बात होते हैं जो सीधा दिल तक पहुंच ही जाते हैं तो आज की ये खूबसूरत रात उन गीतों के नाम जो हमें जीना सिखा देते हैं और अगर कोई खास है आपके दिल में जो आपने बड़े टाइम से याद नहीं किया है तो आज हम आपको मजबूर करेंगे उनकी यादों में खो जाने के लिए तो चलिए जी ये अगला नगमा आपके उन खूबसूरत यादों के नाम

वैसे अगर आप थके हुए हो, उदास हैं या सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहते हो तो सुनहरे पल आपके लिए हैं। पुराने गीतों का ये सिलसिला आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल, पुराने गीत सिर्फ सुर नहीं होते हैं जी, बल्कि जिंदगी के सबक भी होते हैं। तो चलिए आज कुछ अच्छी बातें करते हैं और पुरानी यादों को फिर से जी लेते हैं और उन पुराने दिनों को भी याद तो करवानी है। हो सकता है ये जो अगला नगमा हम पेश कर रहे हैं आपके दिल के कोने में आपने छुपा के रखा है किसी के यादों के साथ। तो चलिए जी, ये गाना आपके लिए।

उम्मीद करते हैं कि हमें सुनते सुनते आपके होंठों पर मुस्कुराहट जरूर आ रही है दोस्त। तो चलिए जी, आई डोंट नो, शायद अगर आप घर पे हो तो हम कहेंगे आराम से बैठ जाइए, बस एंजॉय कर लीजिए ये खूबसूरत पुराने गीतों का सफर। और अगर काम पे हो सो कुआश टू यू। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पुराने यादों को जब याद करते हैं और जुड़ जाते हैं हमारे इस खूबसूरत सुनहरे पल के साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बन जाते हैं सोने पे सुहागा। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए और हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

Well, दोस्त, हमारी ये बात जो है ना, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना आसान नहीं होता है, लेकिन एक प्यारा सा गीत और अपनों की याद दिल को हिम्मत दे देती है। सुनहरे पल में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तो चलिए अगले नगमे के साथ हम भरना चाहेंगे और ये हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो शायद गाड़ी चलाते चलाते हमें सुन रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गाने को।

Well, it's time for Ginisha to say goodbye to you. और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सुनहरे पल दिल से अच्छा लगा जी. तो चलिए जाते जाते एक और नगमा आपके नाम हम जरूर प्ले करना चाहेंगे. So do take care of yourself. शुभ रात्रि. शब्बा खैर.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अच्छा नहीं तो जाओ जाओ, अरे जाओ ना।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे

से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ।